एफएम 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 32 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी।

0: ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरण अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मोहन की कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत है।

0: वचना कार्यक्रम में अभी आपने सुना पंडित जसराज, पंडित भीमसेन जोशी, आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों को। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: विश्वास मानव जीवन की दृढ़ पतवार है, जो उसे लाखों विपरीतताओं, उलझनों में भी गतिशील और सुस्थिर बनाए रखता है। विश्वास की डोर से

0: बंधी हुई जीवन नैया डगमगा नहीं सकती। अनेक उलझन भरी समस्याएं, आंधी तूफान भी उस व्यक्ति को अपने ध्येय पथ से विचलित नहीं कर सकते जो अपने आप में अटूट विश्वास लिए चल रहा हो। जीवन में प्रकाश देने वाले सब बुझ जाएं, किंतु मनुष्य के अंतर में विश्वास की ज्योति जलती रहे तो वह घोर अंधकार में भी अपना पथ स्वयं ढूंढ लेगा। आत्मविश्वास की ज्योति के समक्ष संसार के समस्त अंधकार तिरोहित हो जाते हैं। विश्वास पर्वतों को डिगा देता है, विशाल सागर को लांघ सकता है। विश्वास कोई कोमल पुष्प नहीं जो साधारण वायु के झोंके से ही गिर जाए। वह हिमालय की तरह अडिग रहता है। सीता की खोज में गए वानर भालू समुद्र तट पर आहार कर बैठ गए। स्वयं हनुमान भी इसी चिंता में थे, किंतु जामवंत ने आत्मविश्वास को जागृत करते हुए कहा, हनुमान तुम इस समुद्र को लांघ सकते हो। और आत्मविश्वास के जागृत होते ही हनुमान उस विशाल सागर को खेल की तरह पार कर गए। जहां विश्वास है वहां जीवन के समस्त अभाव, अभिशाप, दीनता, दारिद्र्य, गरीबी निष्प्रभावी हो जाते हैं। ये जीवन के विकास क्रम में बाधक नहीं बनते। संसार के अधिकांश महापुरुषों का जीवन इसी तथ्य का प्रतिपादन करता है। जिन्हें बढ़ने के लिए तनिक भी सहारा नहीं था, उन्होंने आत्मबल के सहारे जीवन की महान सफलताएं अर्जित की। अनेक व्यक्ति असाधारण बन गए अपने विश्वास के आधार पर। आत्मविश्वास कहीं अन्यत्र ढूंढी जाने वाली वस्तु या किसी की कृपा का वरदान नहीं है, यह हमारे अंतर में ही विराजमान सनातन सत्य है। आत्म चेतना का अजर अमर सर्वशक्ति संपन्न दिव्य स्वरूप ही हमारे विश्वास का आधार हो सकता है। इस तरह आत्मदेव का परिचय प्राप्त कर उन्हीं के हाथों जीवन की पतवार सौंप देना, अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा रखकर निर्द्वंद हो जीवन रण में अपना कर्तव्य पालन करते रहना ही विश्वास का अवलंबन लेना है। मनुष्य अपने आप में अक्षय शक्ति और निधियों का स्वामी है। मनुष्य के अंतर में शक्ति, समृद्धि और अजस्र स्रोत हैं। इसका परिचय होने पर दृढ़ विश्वास का अभ्युदय होता है और सफलता का मूल मंत्र बन जाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु में विचार, आत्मविश्वास की प्रबल शक्ति। आलेख पंडित श्रीराम शर्मा का था, वाचन स्वर था पूनम नामदेव का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में पूछे गए पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव उनकी इस शंका को लोक कल्याणकारी बताते हैं। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके श्रवण रंध्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए उनकी आंखें मोर पंख पर बनी आंख की नकली आकृतियों के समान हैं।

जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं, वो प्राणी मृतक के समान है। जिस जिह्वा से श्री राम का गुणगान नहीं हुआ, वो मेढक की जीभ के समान है। वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है, जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता। इन उक्तियों के साथ भगवान शिव ने पार्वती को राम कथा सुनाना आरंभ किया। गिरिराज किशोरी आदरपूर्वक श्रद्धानत हो पति के वचन सुनने लगीं।

अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में तैयार श्री रामचरित मानस गान का आज का संगीतबद्ध प्रसंग, जिसे स्वरों में पिरोया था सुरेश वाडेकर और साथियों ने FM 102.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कुछ देर बाद यानी 6:50 पर कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का विषय रहेगा धान की नर्सरी और वार्ताकार होंगे सुधीर अग्रवाल। जी आप आनंद लेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का। बस 18 मिनट पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से।

कार्यक्रम 30 मिनट का समय रहेगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम कार्यक्रम ब्रजमाधुरी का। ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में हमारे श्रोता आनंद लेंगे भगवान दास आजाद की लिखी नौटंकी पर्यावरण। प्रस्तुति यतीन्द्र चतुर्वेदी की होगी। साथ ही इस कार्यक्रम में आप आनंद लेंगे ब्रजलोक गीत का।

30 मिनट पर हमारे श्रोता आनंद लेंगे चित्रपट संगीत का, और 9 बजे का समय रहेगा स्वास्थ्य कार्यक्रम। आप सुनेंगे भेंट वार्ता, बढ़ती उम्र में हड्डियों एवं जोड़ों की देखभाल विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता से बातचीत करेंगे ओपी सिंह। 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आबोहवा, 9:30 का समय रहेगा गांधी चर्चा का, विषय रहेगा क्षमा, प्रस्तुति सत्यव्रत सिंह की होगी। 45 पर विशेष वार्ता आप सुनेंगे हिंदी साहित्य में पर्यावरण चेतना, वार्ताकार होंगे डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, और 10 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एनसीईआरटी एवं सीआईईटी द्वारा प्रायोजित। 11 बजे हमारे श्रोता आनंद लेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का। 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण, 12 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस पर, और 12:30 का समय रहेगा ब्रजलोकगीत कार्यक्रम का, आज के कलाकार होंगे सुरेश चंद्र। एक 1:15 पर पहनों का कार्यक्रम होगा कार्यक्रम वनिता लोक, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चर्चा विश्व पर्यावरण दिवस, साथ ही नवजात शिशुओं के लिए स्तनपान आवश्यक, और इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी डॉक्टर नीता सिंह से। 2:30 पर सैनिक भाइयों के लिए होगा फिल्म संगीत,

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी।
1: नर्सरी जो हम बोए उस खेत की मेड़े बिल्कुल साफ होनी चाहिए, घास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनपे कीड़े मकोड़े रहने से वो नर्सरी में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद नर्सरी में वहीं से बीमारी हमारी शुरू हो जाती है
2: जी।
1: और जब हम नर्सरी बोए तो नर्सरी में हम एक तो हम जो है संतुलित खाद डालें
2: जी
1: और गोबर की खाद डाल दें, उसके बाद हम उस नर्सरी को बोए
2: जी। संतुलित खाद से
1: संतुलित खाद से कहने का आशय ये मेरा है कि जैसे NPK
2: जी,
1: एक बीघा नर्सरी लगाने के लिए 10 किलो तो NPK डालें उसमें।
2: अच्छा।
1: और उसके बाद 1 किलो उसमें जिंक डालें, 1 किलो फेरस सल्फेट डालें, 1 किलो सल्फर डालें, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है वो उसकी मिट्टी का परीक्षण करा लें, परीक्षण के उपरांत जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी आ रही है वो न्यूट्रिएंट और मिला दें उसमें।
2: अच्छा।
1: जिससे कि हमारी नर्सरी स्वस्थ बने, मजबूत पेड़ बने हमारा। और उसमें जब हम जो लगाए नर्सरी जब हम डाल रहे हैं तो उसका बीज का शोधन अवश्य करें।
2: अच्छा, जैसे कि आप लोगों के यहाँ से जो बीज मिलता है या बीज गोदाम से जो बीज मिलता है तो वो शोधित बीज नहीं होता है?
1: वो शोधित बीज होता है, फिर भी हम एक

0: बार को ये सिफारिश करेंगे कि उसका शोधन हम अवश्य कर लें, क्योंकि अपनी भ्रांति को दूर कर लें, हो सकता है किसी कारण वो शोधित न आ पाया हो
1: जी,
0: किसी कारण कोई कमी रही हो, क्योंकि बीज शोधन में कोई ज्यादा पैसा लगता नहीं है, क्योंकि ये 2 ग्राम 1 किलो में दवा लगनी है
1: जी।
0: और शोधन करने के लिए एक सबसे बड़ी तरकीब एक नई वैज्ञानिकों ने बताई है कि हम 10 किलो पानी में 100 ग्राम नमक डालें।
1: अच्छा, 10 किलो पानी 100 ग्राम नमक
0: घोल लें और उसमें 10 किलो बीज डाल दें
1: जी,
0: और उसमें क्या होगा कि जो बीज जनित रोग होंगे वो कंडुआ के से ग्रसित जो बीज होंगे वो सब ऊपर तैर के ऊपर आ जाएंगे
1: जी,
0: उनको हम बाहर फेंक दें और 3 बार उसको पानी में साफ कर लें। साफ पानी
1: फिर उसको निकाल करके
0: नमक का असर खत्म करने के लिए 3 बार साफ कर लें
1: जी।
0: फिर उस बीज को 10 किलो पानी में हम जो है 20 ग्राम बावस्टीन डाल के, 2 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन डाल के 24 घंटे के लिए भिगो दें।
1: अच्छा, 24 घंटे तक फिर रखना है उसको।
0: फिर उसको पानी में रखना है 24 घंटे के लिए।
1: बावस्टीन 20 ग्राम और स्टेप्टोसाइक्लिन
0: 2-3 ग्राम जो है
1: 2-3 ग्राम 10 लीटर पानी में 10 किलो ही बीज
0: 10 किलो बीज के लिए
1: जी,
0: उतना मात्रा में उसको भिगो के रख दें 24 घंटे बाद। उसको निकाल लें, निकालने के बाद बोरे में बंद करके छाये में रख दें उसको
1: जी।
0: 48 घंटे में उसमें अंकुरण शुरू हो जाएगा
1: जी।
0: जब अंकुरण शुरू हो जाए तो उसके बाद जो हमने खेत में तैयारी की है उस खेत में क्या कहते हैं, खेत को तैयार करके पानी भर के और उस खेत में उस 10 किलो बीज को छिटक दें
1: जी,
0: जो अपनी क्यारी बनाई है हमने, और उसके बाद उसको ये काम शाम के टाइम करें, दोपहर में न करें, क्योंकि दोपहर में पानी गर्म हो जाएगा तो अंकुरित हुआ हमारा धान का बीज उबल जाएगा, उसमें जर्मिनेशन कम होगा।
1: तो उस खेत में पानी भरा रहना चाहिए,
0: उस खेत में इतना पानी भरें कि रात भर में पानी सूख जाए।
1: अच्छा,
0: और फिर उसके बाद तीसरे दिन जब ओट आ जाएगा खेत तो फिर उसको हरा बनाने के लिए फिर हल्का हल्का पानी लगा दें
1: जी।
0: अगर पानी नहीं लगाएंगे तो पपड़ा मार के हमारी पौध खराब हो जाएगी
1: जी।
0: और उसके बाद जब हमारी पौध जो है 10 दिन की हो जाए तो उसमें हम एक कीटनाशक का स्प्रे जरूर कर दें कि जिससे कि कोई भयंकर कीट आया हो तो उससे कि हमारी पौध जो है सुरक्षित बनी रहे। और इसी तरह से एक जो है दवाई आई है गर्दन तोड़ को रोकने के लिए, धान की बीमारी होती है एक
1: जी,
0: उसको रोकने के लिए मेंसरोन नाम की एक दवाई आई है, उस दवाई के हम 2 स्प्रे अपनी नर्सरी में 22 दिन तक कर दें।
1: 22 दिन तक कर देने 2 स्प्रे
0: मेंसरोन की।
1: ये इसकी मात्रा क्या रहेगी अग्रवाल साहब?
0: वो जो है 1 लीटर पानी में 2 ml दवाई मिलाई जाएगी।
1: अच्छा,
0: और जितने एरिया में वो दवाई छिड़क जाए, जैसे एक टंकी उस 10 किलो के लिए पर्याप्त होगी, 30 ml मेंसरोन उसमें घोल लें और 30 ग्राम मेंसरोन घोलने के बाद उसका स्प्रे कर दें हम अपनी क्यारी में, और उससे जो है गर्दन तोड़ की बीमारी फिर नहीं आएगी।
1: 2 बार इसका स्प्रे करना है 22 दिन के अंदर पे।
0: 22 दिन के बाद हम पौधे लगाना शुरू कर दें, 25 दिन तक हमको पौधे लगा देनी है।
1: 25 दिन के अंदर पौधे लगा देनी
0: जी,
1: है 22 दिन से लेकर के
0: 25 दिन तक।
2: अभी आप कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, विषय था धान की नर्सरी और वार्ताकार थे सुधीर अग्रवाल। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं भोले बिस्तरे गीत का ये पहला नगमा।

किशोर कुमार को अभी आपने सुना फिल्म अंदाज में, और आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी को, फिल्म का नाम है द ट्रेन।

0: सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PAC, SDRF और UPSSF के साथ आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और भावी कार्य योजनाओं सहित कई बिंदुओं को लेकर की समीक्षा बैठक। सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक व्यावहारिक व तकनीक आधारित बनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल।

संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली। अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में कल से दो दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया

0: ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है।
1: तो बैठक में जो मेन मुद्दे हैं कि कहाँ पे जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो हमारे आर्टिसंस हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनको कैसे हम आपस में कोलैबोरेट करा के जो हमारे मेंबर कंट्रीज की अर्थव्यवस्था है उसमें उनका योगदान बढ़ा सकते हैं। जो नए चैलेंजेस हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, उसको कैसे हम सबको मिलके उस पर काम करना है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रांतीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी पीएसी, एसडीआरएफ और उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार, प्रशिक्षण और संरचना विकास एवं भावी कार्ययोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पीएसी, एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया जाए और सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक व तकनीक आधारित बनाया जाए। श्री योगी ने महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से पीएसी की महिला बटालियनों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर स्थित महिला पीएसी बटालियन परिसरों में क्रमशः वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना उदा देवी और वीरांगना झलकारी बाई की अश्वरोही प्रतिमा स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आगामी मानसून के दृष्टिगत बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही एसडीआरएफ को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से खोज एवं बचाव कार्यों के लिए ह्यूमन लिफ्टिंग ड्रोन की उपयोगिता पर विचार करने को कहा। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में पर्यटन विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की।
3: समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा और ज्ञान विरासत का प्रदेश है। बैठक में भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण से जुड़े ज्ञान भारतम मिशन की भी समीक्षा की गई। श्री योगी ने कहा कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियां हमारी सभ्यता, दर्शन, विज्ञान और सांस्कृतिक चेतना की अमूल्य धरोहर हैं। पर्यटन नीति 2022 में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को निवेश, नवाचार और अनुभव आधारित पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाया जाए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में पौधारोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश के 17 नगर निगमों, 825 विकास खंडों, 762 नगर निकायों समेत सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान पूरे दिन चलेगा। वन विभाग के साथ ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, उद्यान आदि विभागों के सहयोग से अमृत सरोवरों, तालाबों, सड़कों, एक्सप्रेसवे, नदियों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों की भी सहभागिता होगी। पौधरोपण अभियान के तहत लखनऊ मंडल में 62 लाख, वहीं बरेली और प्रयागराज में करीब 32 लाख पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। दौरे के पहले दिन वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज लखनऊ में बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ करेंगे। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है।
5: रक्षा मंत्री आज पूर्वाहन 11:05 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अपराहन 12:15 विश्व पर्यावरण दिवस पर कैंट स्थित कस्तूरबा पार्क में एक पेड़ माँ के नाम रोपित करेंगे। अपराहन 12:40 पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के आवास पहुंचकर उनके पति के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। शाम को 4:00 दिलकुशा लॉन में आयोजित बायो युग ग्रीन कमांड कार्यक्रम में

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रतिभाग करेंगे। 6 और 7 जून को भी श्री सिंह लखनऊ में विभिन्न लोगों से मुलाकात करेंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करने के साथ प्रबुद्ध नागरिकों से भी मिलेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। इस प्रणाली के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया हो। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
2: 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें ऐसी छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएसी, एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ के साथ आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और भावी कार्ययोजनाओं सहित कई बिंदुओं को लेकर की समीक्षा बैठक। सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक व्यवहारिक व तकनीक आधारित बनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
4: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं,

0: प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

माधुरी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोतान को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आए जुड़े सब ब्रज के वासी, डेरा परे लाख चौरासी, मंगलम मंगलम ब्रज भूमि मंगलम, वंदे ब्रज वसुंधराम। ब्रज की या पावन धरा को नमन करें, वंदन करें। आज अपने श्रोतान को सत्य पहले सुनवा में भगवान दास आजाद की लिखी नौटंकी पर्यावरण प्रस्तुत करता है यतीन्द्र चतुर्वेदी। तो भैया लो या को आनंद।

0: बहनों,
1: हाँ भाई,
0: आपको मैं एक बात और बताऊं यदि आपको पतो ना हो तो।
1: बताओ भैया, कौन सी बात है?
0: पीपल में जो पीपल को वृक्ष है।
1: हाँ।

0: बोलटा क्षेत्र की जय।
1: तो भैया अभी अपना आनंद लियो, भगवान दास आजाद की लिखी नौटंकी पर्यावरण को यज्ञ प्रस्तुत करता है यतीन्द्र चतुर्वेदी। यही के संग आज को ब्रजबहादुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। सबन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18

0: एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता

0: ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
1: खुदरा मुद्रास्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2 से 6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
0: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
1: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under 18 Asia Cup hockey tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।

समय हमारे श्रोता कार्यक्रम गीतांजलि चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

लता मंगेशकर और मुकेश को भी आपने सुना फिल्म फर्ज में, और आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर को, फिल्म का नाम है हमराज।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म बहारों के सपने में, और आइए सुनते हैं किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है कटी पतंग।

0: आशा भोसले के गाए फिल्म कश्मीर की कली के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीतांजलि चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम। विषय है बढ़ती उम्र में हड्डियों एवं जोड़ों की देखभाल। इस भेंट वार्ता में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता और आपसे बातचीत कर रहे हैं OP सिंह।
1: रेडियो डॉक्टर के सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, जब भी उम्र बढ़ती है तो निश्चित तौर पर शारीरिक परेशानियां, स्वास्थ्य की परेशानियां होती ही हैं। बढ़ती हुई उम्र में जोड़ों की समस्या, उसकी देखभाल कैसे हो सकती है, अपने बढ़ती उम्र के जो अपने जो परेशानियां क्या हो सकती है, तो ये आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता साहब। आप मथुरा के वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार।
2: धन्यवाद जी, धन्यवाद, और श्रोताओं को भी धन्यवाद जी, उन्होंने आज
1: आपकी बात सुन रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं। जी जी जी। तो अब इसमें समस्या यही रहेगी कि बढ़ती उम्र में जो हड्डी संबंधी, जोड़ों संबंधी जो सामान्य समस्याएं रहती हैं, पहले उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें।
2: बढ़ती उम्र में मुख्य रूप से घुटने की, गर्दन की और कमर की परेशानियां ज्यादातर होती हैं। जोड़ों की समस्याओं के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो बुजुर्ग आदमी है उनको पूरे कपड़े पहनने चाहिए।
1: तो ये है, मतलब एक तो उम्र तो बढ़ी रही है जी, लेकिन बदलता हुआ मौसम भी उसमें,
2: यदि ये थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो ये समस्याएं कम होंगी।
1: अब इसमें जैसे उम्र तो बढ़ी रही है, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन आदमी का जो एक कार्यशैली होती है, व्यवहार होता है, अपना कार्य व्यापार होता है, तो उसमें लगा रहता है, उसको कई बार ये भानी नहीं होता कि जो चीज मैंने 25-30 साल पे शुरू की थी और आज मैं 55-60 पे पहुंच गया करते करते, तो उसको उसी रूप में करता रहता है। तो करते रहने के दौरान जो चीजें उम्र के बढ़ने के साथ साथ सहूलियतें होनी चाहिए, उन पर वो ध्यान नहीं रहता है, चाहे उसके उठने बैठने का तरीका हो, चाहे उसके काम करने का तरीका हो, तो इनमें कुछ बदलाव समय समय पर होते रहने चाहिए।
2: इन चीजों में थोड़ा सा बदलाव ये करना चाहिए कि अपन को अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए, चाहे 15 मिनट निकालें सुबह उठ के, अपन जो है कुछ भी शरीर की कसरत करें।

0: गर्दन में तकलीफ है तो गर्दन की नीचे ऊपर करने का काम करें, कमर में है तो कमर की, और घुटनों में परेशानी है तो साइकिल चलाने की कोशिश करें। साइकिल यदि अपने पास में नहीं है और बाहर चलने में अपन को थोड़ा भयभीत रहते हैं तो बिस्तर पे ही लेट के और साइकिल चलाने का मिमिक करें, और एक बार में मुश्किल से 1 मिनट करनी है। ज्यादा करेंगे तो दर्द एकदम बढ़ जाएगा और आप ये कहेंगे कि डॉक्टर भी क्या करा दिया आपने,
1: जी जी
0: मेरे तो दर्द बढ़ गया पहले से।
1: तो समय का जरूर ध्यान रखें।
0: यदि आप कसरत करते आ रहे हैं पहले से तो उसको कंटिन्यू रखें, उसे थोड़ी बहुत मात्रा में बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि कसरत नहीं कर रहे हैं, जैसे आजकल की जीवन शैली हो रही है, यदि कसरत नहीं कर रहे हैं तो शुरुआत करें। पहला दिन कभी भी हो सकता है, पर शुरुआत हमेशा हल्के से करें, धीरे धीरे उसको हर 15 दिन में थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें।
1: कंप्यूटर जनित हो गए, IT के लोग हैं उसमें, तो एक टेबल पे बैठने का ही काम ज्यादा होता है, कुछ लोग झुक करके काम करते हैं, जो लोग मजदूरी पेशा लोग हैं उनके अपने शारीरिक काम वैसे ज्यादा होते हैं। तो उसमें कुछ बीमारियां विशेष भी हो जाती हैं उसमें, कुछ लोगों को सर्वाइकल हो गया।
0: खास तौर से कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं, वो यंग बच्चे आज की तारीख में बहुत ज्यादा ग्रसित हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस।
1: जी,
0: वो गर्दन को आगे झुका के बैठे रहने से होती है बराबर।
1: जी,
0: लंबे समय तक आप बैठे हुए हैं और देख रहे हैं अपना मोबाइल,
1: आपको ध्यान ही नहीं है कि आपके गर्दन का
0: ध्यान ही नहीं है, गर्दन का पोस्चर खराब हो गया और वो लंबे समय तक हो रहा है। तो उसमें 2 प्रिकॉशन कर सकते हैं अपन। एक तो हर आधे घंटे बाद में 1 मिनट का ब्रेक ले लें। ऐसा नहीं कि लगातार 3 घंटे तक अपन नीचे बैठे हुए देखते
1: उसी
0: रहे
1: लगे
0: और
1: हुए।
0: काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। दूसरा जो है, अपन कंप्यूटर का मॉनिटर जो है वो हेड की लेवल पे रखें। आई अपना जो है वो कंप्यूटर के मॉनिटर की लेवल पे होना चाहिए,
1: तो ताकि स्ट्रेट हम देखें,
0: स्ट्रेट
1: तो
0: हम देखें, गर्दन झुकेगी नहीं। और तीसरा एक प्रिकॉशन ये कि यदि हो सके तो कुछ टाइपिंग की आदत डाल लें, जिससे हमें बिना अक्षर देखे हुए टाइप कर सकें। ABCD कहाँ है वो हमें हमारी उंगलियों को पता होनी चाहिए, और उसी तरह से डायल करेंगे अपन, टाइप करेंगे
1: तो उससे भी वो गर्दन का जो
0: बार बार झुकाना नहीं पड़ेगा, ये यहाँ है आप दबाओ, आर यहाँ है आप दबाओ।
1: अच्छा, कई बार कुर्सी पे हम बैठे रहते हैं, ध्यान नहीं देते, कुर्सी पे बैठने का भी अपना एक पोस्चर बना लेते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। हम जब भी कुर्सी पे बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं,
0: जब भी कुर्सी पे बैठे तो कुर्सी पे पीठ लगा के टिका के बैठे। कुर्सी का जो पीछे का हैंडल है, पीछे की जो सपोर्ट होती है बैक, उस पे कमर को टिका के बैठे हैं, और यदि वो दूर पड़ रही है आपके काम के क्षेत्र से तो कुर्सी को और पास खसका लें, बिल्कुल मेज के पास रहेगी तो कमर अपनी सीधी रहेगी तो तकलीफ कम से कम होगी।
1: अच्छा, अब डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि जो भाई बहन मजदूरी करते हैं, श्रमिक है, श्रम उनका एक धंधा है, पैसा है, तो उनको कई बार लगता है कि हमें व्यायाम की क्या जरूरत है, क्योंकि हम तो पूरे दिन काम ही करते हैं। लेकिन व्यायाम अलग है, श्रम और अपना वर्क अलग है उसमें,
0: बिल्कुल अलग।
1: तो ऐसे लोगों को भी क्या थोड़ा सा अपने जीवनचर्या पे
0: सुबह सुबह थोड़ा सा टहल लें, आधा घंटा के लिए
1: वर्कआउट करें,
0: तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लें या योगा वगैरह कर लें, कुछ ना कुछ अपने शरीर को दें। और जो ये मजदूर वर्ग के हैं वो तो जंक फूड वगैरह खाते नहीं है, तो देसी चीज अपने जो
1: मट्ठा छाछ जो है
0: वो लें ज्यादा से ज्यादा, जिससे शरीर में ताकत भी आए, और वो धूप में काम करते ही हैं, कोशिश ये करें कि जमीन पे बैठ के काम नहीं करना पड़े और उकड़ू बैठ के काम नहीं करना पड़े।
1: अब उसमें उकड़ू की बात आपने की, यहीं से मैं जानना चाह रहा हूँ कि गांव के लेवल पे जो सुबह शाम हज जाने की वो होती है, हम दिनचर्या में उसमें शामिल ही है, तो हम अभी भी देसी सिस्टम का ही उपयोग करते हैं और उसको कम्फर्टेबल भी मांगते हैं, तो कई बार जब बढ़ती उम्र में जोड़ों के दर्द की बात होती है, घुटनों के दर्द की बात होती है, तो वहां आप लोग सजेशन करते हैं कि नहीं भाई इंग्लिश प्लेटफॉर्म आप यूज करिए, इंग्लिश सीट आप यूज करिए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? लोग कहते नहीं हमें तो,
0: जिसके घुटने ज्यादा घिस गए हैं, कोशिश ये करनी चाहिए घुटने घिसे ही ना, अपन पहले से ही कुछ ना कुछ कसरत करते रहें और अपनी स्ट्रेचिंग करते रहें घुटने की, तो घुटने उतनी आसानी से नहीं घिसेंगे।
1: जी,
0: लेकिन यदि घुटने

0: नहीं घिस गए हैं और तकलीफ बरकरार रहती है, तो उसमें तो ये प्रिकॉशन करनी ही पड़ेगी कि अपन घुटने को और लोड ना करें। घुटना डैमेज्ड है उसको पूरा अपन उकड़ू बैठने के लिए पूरा मोड़ेंगे तो वो डैमेज और ज्यादा होगा। जो काम 5 साल बाद में होना चाहिए था वो आपका 3 महीने बाद ही हो जाएगा।
1: तो मतलब
0: वो नौबत ना आए कि अपने को घुटने बदलवाने पड़े और कुछ करना पड़े, उसके लिए प्रिकॉशन करने के लिए अपन कोशिश करते हैं कि उकड़ू ना बैठा जाए।
1: जी जी, बहुत से लोगों का काम भी होता है, बहुत से लोगों को आदत होती है पालती लगा के ही बैठते हैं उसमें, इन सब चीजों पे ही थोड़ा सा ध्यान।
0: यदि पालती लगा के बैठते हैं और पुराने समय से काफी समय से बैठते आ रहे हैं तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत उन्हीं को होती है जो दिन भर कुर्सी पे बैठे रहते हैं, शारीरिक श्रम नहीं करते हैं।
1: हाँ, जीवन शैली ऐसी हो जाती
0: जी
1: है।
0: हाँ, जीवन शैली जो ऐसी हो गई है, आजकल का युवा वर्ग जो है नेचुरल चीजें नहीं कर रहा है, वो हमेशा जंक फूड के पीछे भागा रहता है। शाम को कोई काम हुआ, चलो खाना नहीं बना रहे, पत्नी बनाने नहीं चाहती है, पति देव भी वहीं से आ रहे हैं, पिज्जा आ गया, बर्गर आ गया, बाकी सब चीजें आ गई वो खाते हैं, नेचुरल चीजें कम से कम खाते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हम भारत में पैदा हुए
1: जी जी,
0: और हमें हर तरह की सब्जी है,
1: हर मौसम हर समय जी
0: वो मिल रहा है।
1: कुछ एलर्जी उसमें भी रहता है क्या उसमें?
0: हाँ, यदि किसी को एलर्जी की तकलीफ रहती है तो उसको जुकाम खांसी बहुत जल्दी हो जाता है। कुछ एलर्जेंस जो है वो इस समय इस मौसम में बाहर निकलते हैं, धुआं और धुंध जो है वो काफी होता है, वो भी एक तरह का पर्यावरण प्रदूषण करता है और उससे सांस संबंधित रोग जो है नजला जुकाम खांसी वो बढ़ जाते हैं।
1: जिस तरह से जोड़ों में समस्या रहती है उस तरह से
0: उसमें एलर्जी भी रहती है,
1: तो उनसे भी बचना है उसमें। तो क्या कहेंगे कि मतलब भाई परेशानी है तो दवा और डॉक्टर की आवश्यकता है, लेकिन शुरुआत एक अच्छे स्वास्थ्य की, हमारी जीवन शैली, हमारे व्यवहार, उठने बैठने के क्रम, खाने पीने के क्रम, जो हमारे पुरानी जो चीजें थी उनको
0: वापस याद कर रहे हैं और उन्हें अपने बुजुर्गों को तवज्जो दें, वो जो आपको बात बताएं वो जरूर करें। गेहूं का आटा जो है आज की तारीख में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ये अच्छी तरह से वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित हो गया है कि आप बाजरा खाएंगे, मक्का खाएंगे और दूसरी चीजें जो मोटे अनाज कहे जाते हैं वो ज्यादा फायदेमंद होते हैं शरीर को, उनमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो जो आजकल बीमारियां फैल रही हैं बहुत ज्यादा की, शुगर की बीमारी लगभग हर आदमी को है, 100 में से 80 मरीजों को
1: उधर की तरफ जा रहे हैं,
0: उधर की तरफ जा रहे हैं,
1: शुगर की बीमारियां
0: होने वाले हैं,
1: उसमें
0: ब्लड प्रेशर की, शुगर की ये बीमारी बहुत कॉमन हो गई हैं। और ये सब बीमारियां जो हैं वो स्वास्थ्य के वजह से हैं, अपने अच्छे खान पीन को रखेंगे
1: जी
0: तो इनसे दूर रहेंगे। अब अन्न जो है वो 3 तरह के होते हैं अनाज, एक न्यूट्रल फॉर्म में होता है, एक जो है बेसिक है जिसे अपन ज्यादातर यूज करते हैं, 80-90% भारतीय यूज कर रहे हैं, गेहूं और चावल, ये दोनों जो है नुकसानदायक अन्न है। न्यूट्रल अन्न में जो है बाजरा है, मक्का है, ये है, और फायदेमंद अन्न जो है वो कुछ एक ही है जो बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं,
1: लेकिन जो रागी अपने जो
0: रागी और ये समा के चावल जो अपन व्रत में खाया करते थे वो बहुत अच्छे होते हैं, वो खाने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं।
1: तो कुल मिलाकर के हमें अपनी परंपरागत जो जानकारी
0: पे जाना चाहिए
1: उनको इस्तेमाल करना चाहिए उसमें। तो श्रोताओ, बातें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के कहने का मतलब यही है कि बढ़ती अगर उम्र है तो निश्चित तौर पर देखभाल के तरीके भी बदल जाते हैं, व्यवहार पे भी हमें ध्यान रखना है, खान पान की तो बात है ही, लेकिन देखभाल भी अगर हम रखेंगे तो शायद चीजों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब आप आए और जानकारी दी, हमारे श्रोताओं से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे श्रोता जानकारी प्राप्त कर रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम में, विषय था बढ़ती उम्र में हड्डियों एवं जोड़ों की देखभाल। इस भेंटवार्ता में हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता और आपसे बातचीत कर रहे थे ओपी सिंह। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का।
1: राम मंदिर परिसर स्थित नवनिर्मित मां भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंबरा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच धन ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ ही मात्र शक्ति भी मौजूद रहीं। दोनों साध्वियों ने इसे राम मंदिर आंदोलन के लंबे संघर्ष, त्याग और सनातन स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा का प्रतीक बताया। ध्वजारोहण के साथ पूरा परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। रामनगरी अयोध्या को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी सौगात दी है। जिले के मौशीवाला क्षेत्र में 17.72 करोड़ रुपए की लागत से लौकुश पार्क विकसित किया जाएगा। कचरे से कला थीम पर बनने वाले इस पार्क में स्क्रैप सामग्री से रामायण के प्रमुख प्रसंगों को 3D इंस्टॉलेशन के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। आधुनिक साउंड लाइट शो, डिजिटल तकनीक और इंटरएक्टिव मॉडल के जरिए श्रद्धालु रामायण काल के विभिन्न प्रसंगों से साक्षात कर सकेंगे। पार्क में आकर्षक उद्यान, वॉकवे, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि
2: अयोध्या नगर निगम के द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी अंतर्गत 17.72 करोड़ का लकुश पार्क वेस्ट वंडर पार्क स्वीकृत हुआ है।
1: अयोध्या में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। सिविल लाइन ईदगाह सहित सभी मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज सकुशल संपन्न हुई। DM शशांक त्रिपाठी और SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने स्वयं व्यवस्थाओं की निगरानी की। सुरक्षा व्यवस्था के तहत ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई और पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। नमाज के दौरान देश दुनिया में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी गई। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने अयोध्या में विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और नकल विहीन बताया। मंत्री ने कहा कि करीब 54 लाख विद्यार्थियों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में हिस्सा लिया और पूरे प्रदेश में कहीं भी पेपर लीक जैसी घटना सामने नहीं आई। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित

0: भव्य पासिंग आउट परेड के सातवें बैच के 835 अग्निवीरों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना में कदम रखा। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण अवधि में जवानों को आधुनिक युद्ध कौशल, शारीरिक दक्षता और सैन्य मूल्यों का प्रशिक्षण दिया गया। परेड की समीक्षा ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने की और जवानों के उज्ज्वल भविष्य की कामना। ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने कहा,
1: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में ज्वाइन करेंगे।
0: अयोध्या नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। राम की पैड़ी और नया घाट से अभियान का शुभारंभ हुआ। नगर निगम क्षेत्र के लगभग 400 स्थानों पर एक साथ सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें हजारों सफाई कर्मियों सभी वार्डों के पार्षद शामिल हुए। नगर निगम ने शहर वासियों से भी स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने आह्वान किया कि निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में इक्ष्वाकु वंश की विशेष हाईटेक गैलरी बनाई जाएगी। डिजिटल तकनीक के माध्यम से भगवान श्री राम की 63 पीढ़ियों का इतिहास दर्शाया जाएगा। दर्शक डिजिटल प्रतिकृतियों के जरिए राजाओं के शासनकाल, धार्मिक महत्व और वंश परंपरा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह गैलरी नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। राम मंदिर निर्माण के बाद अब अयोध्या में निवेश का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। अमिताभ बच्चन के बाद अब अभिनेता रणबीर कपूर ने भी विगत दिन तिहरा मांझा क्षेत्र में 2.42 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। बताया जा रहा है कि यह भूखंड राम मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है। इससे अयोध्या में रियल इस्टेट और निवेश गतिविधियों को और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गंगा दशहरा और बड़े मंगल के अवसर पर अयोध्या के सरयू घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान कर पूजा अर्चना और दान पुण्य किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के दिन स्नान और पूजा करने से पापों का नाश होता है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। पर्व को लेकर घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी करता रहा। अयोध्या में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। श्रद्धालुओं और आम लोगों की सुविधा के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर जल प्याऊ और ORS वितरण के केंद्र स्थापित किए गए हैं।
2: अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग लाइंग ने गौतम बुद्ध नगर के NTPC लिमिटेड की अनुसंधान एवं विकास इकाई NTPC एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस का दौरा किया, जिसमें म्यांमार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। इस मौके पर NTPC लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह तथा NTPC नेट्रा के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति एवं प्रतिनिधि मंडल को NTPC की विकास यात्रा, म्यांमार में कंपनी की पूर्व गतिविधियों तथा वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन देने वाली अनुसंधान, नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी से जुड़ी पहलों के बारे में जानकारी दी गई। प्रतिनिधिमंडल ने नेट्रा की अत्याधुनिक इन हाउस पायलट सुविधाओं का भी अवलोकन किया, जिसमें बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ग्रीन हाइड्रोजन हब तथा कृषि एवं नगर ठोस अपशिष्ट गैसीकरण से विद्युत संयंत्र शामिल था। राष्ट्रपति ने NTPC की स्वच्छ ऊर्जा पहलों में विशेष रुचि दिखाई। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा स्थित बैटरी पुनर्चक्रण एवं महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षेत्र की कंपनी लोहम के आधुनिक संयंत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी की तकनीकी क्षमताओं, बैटरी रिसाइकलिंग प्रक्रियाओं और भारत में हरित ऊर्जा एवं सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की सराहना की। दौरे के दौरान मंत्री ने लिथियम आयन बैटरी के पुनर्चक्रण, महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी तथा ऊर्जा भंडारण समाधानों से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें अत्याधुनिक तकनीकों, उत्पाद क्षमता और भविष्य की विस्तार योजनाओं की जानकारी दी। श्री बैसरों ने कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बैटरी रिसाइकलिंग और महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति देश की आत्मनिर्भरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की नवाचार आधारित कंपनियां भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। दौरे में मंत्रालय और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, बैटरी आपूर्ति श्रृंखला तथा उभरती प्रौद्योगिकी के विकास पर भी चर्चा हुई। गर्मी की छुट्टियों में जनपद गौतम बुद्ध नगर में बच्चों में शिक्षा के साथ खेल प्रतिभा को निखारने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी

मेधा रूपम ने शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन कर युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। जिलाधिकारी ने प्रतिभागी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि शतरंज मानसिक विकास, धैर्य, एकाग्रता एवं रणनीतिक सोच को विकसित करने वाला महत्वपूर्ण खेल है। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न विद्यालयों एवं संस्थानों से खिलाड़ी शामिल हो रहे।

0: संस्थानों से खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी दिनों में अलग अलग स्थानों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
1: इस गर्मियों की छुट्टियों में विभिन्न हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट द्वारा अरेंज किए जा रहे हैं एंड सभी बच्चे आमंत्रित हैं। पूरे गौतम बुद्ध नगर के सभी बच्चों के लिए काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स हैं एंड पार्टिसिपेट करें एंड इसमें गर्मी का भी विशेष रूप से हम लोगों ने ध्यान रखा है।
0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एफ काम होल्डिंग लिमिटेड और एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज के साथ त्रिपक्षीय साझेदारी हुई। इस समझौते के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर कार्गो संचालन को विकसित और विस्तारित किया जाएगा, जिससे उत्तर भारत में एयर कार्गो कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस साझेदारी के तहत एएफ काम अपने मालवाहक विमानों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बेस करेगा और यहां से फ्रेटर सेवाओं का संचालन करेगा। इससे एयरपोर्ट को उत्तर भारत के प्रमुख लॉजिस्टिक और कार्गो हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। समझौते के दायरे में तीनों संस्थाएं मिलकर संभावित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की पहचान करेंगी और कार्गो मांग एवं फ्लो के आधार पर मजबूत नेटवर्क प्लान तैयार करेंगी। साथ ही परिचालन और इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं के समन्वय के साथ संयुक्त मार्केटिंग रणनीति भी बनाएंगी, ताकि एयर कार्गो संचालन को दीर्घकालिक मजबूती और स्थिरता मिल सके। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मुख्य परिचालन अधिकारी किरण जैन ने कहा कि यह साझेदारी एयरपोर्ट पर मजबूत एयर कार्गो इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि समर्पित फ्रेटर संचालन और उद्योग भागीदारों के सहयोग से क्षेत्र की कार्गो क्षमता को बढ़ावा मिलेगा तथा उत्तर भारत की वैश्विक कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
2: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आबो हवा।
4: पर्यावरण प्रदूषण आज का एक ज्वलंत सवाल है। इस सवाल के जवाबों की लंबी श्रृंखला हर किसी पर्यावरण प्रेमी नागरिक बुद्धिजीवी और जन साधारण की जुबान पर उपलब्ध मिल जाएगी, लेकिन इस समस्या के समाधान हेतु किए जाने वाले व्यावहारिक प्रकल्पों में किसकी कितनी भागीदारी है, ये तथ्य हम अपने अंतस्थल को टटोल कर देखें तो वास्तविकता का एहसास स्वतः ही हो जाएगा। पहले आप अपने परिवेश को ही पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखिए। क्या जिस वातावरण में आप सांस ले रहे हैं वह शुद्ध है? क्या आपके द्वारा पिया जाने वाला पानी पूर्ण शुद्ध है? क्या आपके आसपास का वातावरण प्रदूषण रहित है? क्या आप कोलाहल और ध्वनि प्रदूषण की समस्या से परेशान नहीं हैं? क्या किसी भी सार्वजनिक स्थान, सभा समारोह तथा सड़क पर आवागमन के वक्त मिलने वाली बेतहाशा भीड़, उसके दम घुटू वातावरण से आपको बेचैनी नहीं होती? इस पर आपका उत्तर होगा जी हाँ। निस्संदेह जल, थल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी इन सभी समस्याओं से हम भली प्रकार वाकिफ ही नहीं, परेशान भी हैं। अतः इनके निराकरण के प्रति हमें सावचेत रहकर तन, मन, धन एवं आत्मिक सहयोग करना होगा। पर्यावरण का हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। विभिन्न प्रकार की महामारियों, शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों के मूल में जो कारण होते हैं वे पर्यावरणीय ही होते हैं। यहाँ तक कि गर्भस्थ शिशु भी इनसे बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। दिल्ली के एक अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मधु राय के अनुसार कुछ दूषित तत्व भ्रूण की संरचना को ही चौपट कर देते हैं, जिससे या तो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है या पैदा होते ही मर जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि प्रदूषित वातावरण में उपस्थित रहने वाले तत्व लेड व केडियम पुरुषों की प्रजनन क्षमता पर भी बुरा असर डालते हैं। जापान में 10 वर्षों तक एक क्षेत्र विशेष में 6% बच्चे सेरिब्रल पाल्सी का शिकार होते रहे, जिसका मुख्य कारण था मिथाइल मरकरी का प्रदूषण, जिसने एक महामारी का रूप ले लिया था। प्रदूषण की इस विनाशकारी समस्या से जूझने और बचने के लिए विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 5 जून 1997 के दिन को प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया और दुनिया का ध्यान इस विश्वव्यापी समस्या की ओर आकर्षित किया था। सन 1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में 160 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पर्यावरण प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके विकास और संवर्धन को इस शताब्दी के महत्वपूर्ण कार्य की संज्ञा दी थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के निदेशक एलिजाबेथ डाइस बेल ने अपने संदेश में विश्व समुदाय का आह्वान करते हुए कहा था कि पर्यावरण की सुरक्षा

विश्व की सुरक्षा है। अतः विश्व के हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि वह इस ओर कटिबद्ध हो। राष्ट्रकुल के पूर्व महासचिव श्री दत्त रामफल ने वर्तमान पर्यावरण संकट को अति गंभीर बताते हुए स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण ही आज का युग धर्म है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों, सम्मेलनों, चेतावनियों के बावजूद पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्धन का सवाल ज्यों का त्यों खड़ा है। इस समस्या की विकरालता घटने का नाम ही नहीं ले रही। इसका मुख्य कारण है अभी तक हमारी जन भावनाओं को जागृत नहीं कर पाए, प्रकृति के साथ मनुष्य के भावनात्मक संबंधों का मर्म नहीं समझ पाए। वर्तमान पीढ़ी को हम ये समझा नहीं पाए कि प्रकृति के साथ उसके रिश्ते वैसे ही हैं जैसे सगे संबंधियों के साथ होते हैं। भौतिक आवश्यकताओं की बढ़ती मांग ने भी हमें प्राकृतिक उपादानों के प्रति असंवेदनशील बना दिया है। जरा सोचें, अंतर मन से सोचें और तन मन धन एवं आत्मा से जुड़ जाएं पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों में, तभी हम जल थल एवं वायु का संरक्षण एवं संतुलन बनाए रखने, जैव विविधता को सुरक्षित रखने में कामयाब हो सकेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। विषय था कैसे बचाएं पर्यावरण को। वाचन स्वर था घनश्याम वर्मा का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं गांधी चर्चा।

आता है, तो इस सिद्धांत के बारे में आपका क्या विचार है? गांधी जी ने कहा कि यह वास्तव में बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बहुत पुराना सवाल है और हर पापी के मन में स्वभावतः है उठता है और मानता है कि चूंकि मैंने अपने लिए जिसे मैं सामान्य मानता उससे कहीं ज़्यादा बार पाप किया है, निश्चय ही मैंने पाप करना कभी नहीं चाहा है, इसलिए मैं जानता हूं कि क्षमा करने को कितना कुछ पड़ा है। मैंने जो गंभीर पाप किए हैं एक बार नहीं अनेक बार, इतनी बार कि कोई भी व्यक्ति अपने आप पर लज्जित हो उठे, उन पापों की मेरी आत्मस्वीकृति शायद आप लोगों से कुछ ने पढ़ी हो। अतः स्वयं अपने संतोष के लिए भी मैंने इस सवाल की जांच की है। हो सकता है हिंदू विचारधारा में पालित पोषित होने के कारण, अथवा हो सकता है कि कुछ जैन मित्रों के साथ अपने घनिष्ठ संपर्क के कारण, यानी कि जिस हद तक जैन धर्म को हिंदू धर्म से अलग समझा जा सकता है, जो भी वजह हो, मैं इस निष्कर्ष पर आया हूँ, मैं समझता हूँ कि अपनी इस उम्र में यही शब्द इस्तेमाल करना सबसे सुरक्षित है। हालांकि सुधार तो कभी भी किया जा सकता है कि ईश्वर की ओर से क्षमा जैसी कोई चीज नहीं होती, यानी उस प्रकार की क्षमा जिसे हम लौकिक व्यवहार में देखते समझते हैं। उदाहरणार्थ, जिस प्रकार कोई राजा अपनी प्रजा के अपराधों को क्षमा करता है, मैं ईश्वर के नियम को शाश्वत और अपरिवर्तनीय मानता हूँ। जहाँ तक कि ईश्वर के उद्देश्य को समझ सका हूँ, ईश्वर और उसके नियमों में वैसा कोई भेद नहीं किया जा सकता जैसा कि हम राजाओं, भूतल के राजाओं और उनके बनाए नियमों में भेद कर सकते हैं और करते हैं। फिर भी कुछ है अवश्य जिसे क्षमा नाम दिया जा सकता है, और जो किसी अत्यंत क्षमाशील राजा द्वारा प्रदान की जा सकने वाली किसी भी क्षमा से कहीं अधिक सुनिश्चित और श्रेष्ठ है। और यह क्षमा और कुछ नहीं, एक नया हृदय है। यह ईश्वर द्वारा प्रदान की गई निश्चित आशा है जिसे कोई भी स्त्री पुरुष तनिक भी इच्छा होने पर स्वयं परख सकता है। और जहाँ तक मैं देख सका हूँ, हृदय परिवर्तन की यह प्रक्रिया कुछ इस प्रकार घटित होती है। यदि किसी व्यक्ति को अपने अपराध का ज्ञान हो जाए और वह अपने उस अपराध को धो डालना चाहे, तो वह प्रार्थना और ईश्वर से विनती करके उसे धोने की शुरुआत करता है। प्रार्थना और विनती, इन शब्दों के जो लौकिक अर्थ समझे जाते हैं, उससे उनका अर्थ कहीं अधिक व्यापक है। और यदि हम अपने अंदर उस सुनिश्चित परिवर्तन की आवश्यक कसौटी को पूरा करें, तो हमें अपने अंदर विराजमान ईश्वर की ज़्यादा निश्चित अनुभूति होगी, और वह परिवर्तन आ जाने के बाद पाप करने वालों को अपने अंदर ऐसा महसूस होगा कि जैसे उसके लिए एक सुरक्षा की दीवार खड़ी होती जा रही है। और इसके बावजूद वह अपनी किसी विशेषता के कारण नहीं, बल्कि उस जीवंत सुरक्षा दीवार के कारण सुरक्षा महसूस करेगा, जिसे वह अपने सामने, अपने चारों ओर, अपने नीचे और अपने ऊपर बनती देखेगा, और इस दीवार के कारण वह पाप और अपराध से परे हो जाएगा। यह एक धीरे धीरे घटित होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन हमारे सामने वह चमत्कार की भांति सहसा घटित होती प्रतीत होती है, और इसलिए हम उसके लिए कृपा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं इस शब्द का खुलकर इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि हिंदू धर्म में भी इसके लिए एक समानार्थी शब्द है। यह शब्द ईसाई धर्म के उपदेशों से ज्यों का त्यों नहीं लिया गया है, यह तो हिंदू पुरोहितों की ही नहीं, हिंदू शास्त्रकारों की सभी पुस्तकों में सामान्य रूप से पाया जाता है। उन्होंने अपने अनुभव लिपिबद्ध कर दिए थे और उन्होंने अपने अनुभव का वर्णन इसी तरह किया है। मुझे इस प्रक्रिया का ज्ञान कैसे हुआ मैं नहीं जानता, इसकी मुझे चिंता भी नहीं है। यदि मैं ईसाइयों के साथ अपने घनिष्ठ संपर्क के जरिए इस प्रक्रिया तक पहुंचता हूं, तो मुझे इसकी खुशी होगी, और यदि मैं हिंदू संस्कारों में पला पसा होने के कारण उस नतीजे पर पहुंचता हूं, तो भी मुझे खुशी होगी। मेरा उद्देश्य तो ये पता चलाना है कि मैं अपने पापों से बच सकता हूं अथवा नहीं। उस पापमयता के जबरदस्त बोझ से कोई छुटकारा है कि नहीं, और इसलिए मुझे लगता है

कि यह एक धीमी प्रक्रिया है जो तब तक चलती रहती है जब तक कि वह इतनी विकसित नहीं हो जाती कि हम इसे महसूस करने लगें, और तब हम कह सकते हैं कि यह एक परिवर्तन सहसा हुआ है। लेकिन व्यक्तिगत रूप में मैं सहसा परिवर्तन में विश्वास नहीं करता। ईश्वर के ब्रह्मांड में चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो सुनिश्चित और अपरिवर्तनीय नियमों के अनुसार चालित है, लेकिन चूंकि हम इन तमाम नियमों को समझते नहीं हैं और चूंकि ईश्वर के कार्य इतने रहस्यपूर्ण और हमारी समझ के बाहर हैं कि हमारे लिए धीरज धारण करना जरूरी है, और तभी हमारा इसे चमत्कार कहना उचित होगा। लेकिन सारी प्रक्रियाओं को ठंडे दिमाग से देखते हुए मैं नहीं सोचता कि ईश्वर चमत्कारों के जरिए काम करता है। और यदि मेरी यह बात सही है कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन की है, तब दो चीजें हैं जो स्वयं हमारे अंदर घटती रहती हैं। एक तो है प्रतिक्षण एक निश्चित प्रयास, अविरत प्रक्रिया की प्रयास क्रिया, और दूसरी है हमें नवजीवन प्रदान करने वाली उस नवजीवनदायी शक्ति की, जिसे मैं ईश्वर कहूँगा। सहायता के बिना अपनी निपट असहायता की निश्चित प्रतीत। इस प्रकार एक ओर तो यह सहायता है जिसे हम ईश्वर की कृपा समझते हैं, दूसरी ओर मनुष्य का प्रयत्न। फिर वह प्रयत्न कितना ही तुच्छ क्यों न हो, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ ही चलती रहती हैं। इसी प्रकार से गांधी जी से श्रद्धा के मामले में समझौते की स्थिति है कि नहीं, इस पर बापू ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, जिस मित्र ने ये आलोचना की है कि मैं उनकी निश्चय ही सराहना करता हूँ, लेकिन यह विश्वास करे कि मेरे लिए समझौता का कोई सवाल नहीं हो सकता। मेरे लिए तो यह कहा गया है कि मैं जो कुछ करता हूँ पूरी तरह करता हूँ और उस पर इतना जोर देता हूँ कि लोगों को यह चीज़ खटकती है। मैं जानता हूँ कि जब मैं अपने को सनातनी हिंदू बताता हूँ तो मित्र लोग गड़बड़ी में पड़ जाते हैं, क्योंकि सनातनी कहे जाने वाले व्यक्ति के आम तौर पर जो लक्षण होते हैं उन्हें वे मुझ में नहीं देखते। लेकिन इसका कारण ये है कि मुझ में जो कट्टर हिंदू होने के लक्षण हैं, इसके बावजूद मैं अपने विश्वासों में ईसाई धर्म, इस्लाम और जरूर की शिक्षाओं के लिए गुंजाइश पाता हूँ, और इसलिए मेरा हिंदू धर्म कुछ लोगों को कई चीज़ों की खिचड़ी जैसा प्रतीत होता है। और कुछ ने तो मुझे धर्म के मामले में विभिन्न स्रोतों से अपनी पसंद के अनुसार कुछ कुछ ले लेने वाला और सार संग्रही व्यक्ति तक करार दिया है। किसी व्यक्ति को सार संग्रही कहने के मतलब हैं कि उस व्यक्ति का कोई विश्वास या धर्म नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास तो बहुत व्यापक है जो ईसाइयों का विरोध नहीं करता, यहाँ तक के प्लिमथ ब्रदर जैसे लोगों का भी नहीं, यहाँ तक के बड़े से बड़े धर्मांध मुसलमान का भी विरोध नहीं करता। मेरा यह धर्म अत्यंत व्यापक सहिष्णुता पर आधारित है। मैं किसी व्यक्ति को उसके धर्मांध कृत्यों के लिए बुरा भला कहने से इनकार करता हूँ, क्योंकि मैं उसके कृत्यों को उसके दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता हूँ। यह व्यापक विश्वास ही है जो मुझे सहारा देता है और बल देता है। यह स्थिति थोड़ी अटपटी है, यह मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए नहीं, औरों के लिए।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं विशेष वार्ता, हिंदी साहित्य में पर्यावरण चेतना। वार्ताकार हैं डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा।
1: पर्यावरण शब्द आवरण में पर्य उपसर्ग के संयोग से निष्पन्न है। परि का तात्पर्य हमारे चारों ओर का, आवरण का तात्पर्य ढकना है, अर्थात हम सभी तथा हमारा यह संसार, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि तथा वन, वृक्ष, नदी, पहाड़, समुद्र एवं पशु पक्षी आदि से आवृत है। उपर्युक्त समस्त कारकों एवं पदार्थों का समग्र रूप ही पर्यावरण है। पर्यावरण शब्द एवं उसका अर्थ अत्यधिक व्यापक है, जिसमें संपूर्ण चराचर जगत समाहित है। समस्त जड़ चेतन, वनस्पति, प्राणी इसी में पैदा होते हैं, जीवित रहते हैं, पुष्पित एवं पल्लवित होते हैं एवं समस्त क्रियाकलाप भी पर्यावरण में समाहित हैं। हमारे इस भौतिक नश्वर शरीर की संरचना भी प्रकृति के इन्हीं पंच तत्वों से निर्मित है। हिंदी साहित्याकाश के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंतर्गत उल्लेख किया है कि मानव का शरीर प्रकृति के पांच तत्वों से मिलकर बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचत अति अधम शरीरा। हिंदी साहित्य एवं भारतीय दर्शन स्वयं संपूर्ण रूप से पर्यावरण केंद्रित रहे हैं। पर्यावरण भारतीय जीवन दर्शन एवं साहित्य में आदिकालीन चेतना है। वैदिक वाङ्मय के अध्ययन से विदित होता है कि तत्युगीन सभ्यता के व्यक्ति प्रकृति की पूजा किया करते थे। उनके लिए पृथ्वी उनकी माता थी, जिसकी रक्षा के लिए वे अपने समस्त कर्तव्यों का पालन किया करते थे। माता भूमि है, पुत्रोहम पृथिव्याः। इस प्रकार हमारा संपूर्ण जीवन पर्यावरण चेतना से ही अनुप्राणित है। वैदिक युग से आज तक हमारे जीवन में तुलसी, बरगद, पीपल आदि वृक्षों का बड़ा सम्मान किया जाता है तथा इनकी पूजा भी की जाती है। इन वृक्षों में हमारे जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी औषधीय गुण समाहित हैं एवं उनके प्रकृति के मध्य

माता पुत्र का संबंध था, जिसका उल्लेख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुटज नामक निबंध में भी प्राप्त होता है। यह धरती मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ, इसीलिए मैं इसका सम्मान करता हूँ और मैं धरती माता के प्रति नतमस्तक हूँ। हिंदी साहित्य आदिकाल से ही पर्यावरण से प्रभावित रहा है। प्रकृति के प्रति प्रेम, संरक्षण, आत्मानुभूति तथा किसी को भी हानि न पहुंचाने का भाव, चाहे वह मनुष्य हो या पर्यावरण, हिंदी साहित्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। आदिकाल से हिंदी साहित्य में प्रकृति के अनावश्यक दोहन अथवा शोषण का विरोध प्राप्त होता है। हिंदी के कवियों यथा कबीर, रविदास, गुरु नानक व अन्य साहित्यकार यथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि ने प्राकृतिक अनावश्यक शोषण अथवा दोहन के विरुद्ध स्वर गुंजायमान कर मानव को आत्मानुभूति के प्रति प्रेरित किया। आदिकालीन हिंदी साहित्य में रासो काव्य में प्रकृति का आलंबन व उद्दीपन प्रचुर उपलब्ध होता है। मिथिला के कोकिल कवि विद्यापति विरचित पदावली प्रकृति चित्रण की दृष्टि से अद्वितीय है। ऋतुराज वसंत का स्वागत किसी राजा के आगमन पर उल्लसित वातावरण के समान चित्रित किया गया है। यह प्रकृति के प्रति ममत्व का आत्मानुभूतिपूर्ण निदर्शन है। आयल ऋतुपति राज बसंत धाओल अतिकुल माधव पंथ दिनकर किरण भेल पौगंड केसर कुसुम धैल हेम दंड नृप आसन नव पीठत पात कांचन कुसुम छत्र धरुमात मौल रसाल मुकुल भेल ताब समुखहि कोकिल पंचम गाय। ये तदुपरांत जब हम भक्तिकालीन हिंदी काव्य साहित्य कवियों की साधना में आध्यात्मिक तन्मयता एवं एक निष्ठता के भेव का दर्शन भाव का दर्शन करते हैं। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी की रचनाओं में अनेकानेक स्थानों पर प्रकृति का रहस्यात्मक वर्णन प्राप्त होता है। यत्र तत्र पर्वत, वन, पशु पक्षी, नदी, उद्यान, उपवन का नैसर्गिक एवं उल्लास से ओतप्रोत भंगिमाओं के दर्शन प्राप्त होते हैं। पर्यावरण संवर्धन हेतु गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस में लक्ष्मण एवं सीता को वृक्षारोपित करते हुए दर्शाया है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगाए। भक्तिकालीन सूर के काव्य में प्रकृति की रूप माधुरी का सुरम्य चित्रण प्राप्त होता है। सूर के काव्य में प्रकृति की षड ऋतुओं का रूप सौंदर्य दर्शनीय है। बसंत ऋतु का मादक चित्रण उसमें सुलभ होता है। ऐसे ही शरद ऋतु की मनोहर छटा का वर्णन करते हुए सूरदास जी व्यक्त करते हैं कि सरोवर में नव कमल विकसित हो चुके हैं, शीतल चांदनी से संपूर्ण वन प्रदेश ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि स्नान कर रहा हो, आकाश निर्मल हो गया है, कुंजों में प्रसून सुगंध विकीर्ण होने लगी है, शीतल मंद सुगंधित वायु रोम रोम को रोमांचित कर रही है। आज निश शोभित सरद सुहाई शीतल मंद सुगंध पवन बहे रोम रोम सुखदाई। अथवा सरद चांदनी रजनी सोहे वृंदावन श्री कुंज प्रफुल्लित सुमन विविध रंग जहां तहां कूजत कोकिल पुंज। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य अप्रतिम होता है। समस्त धराधाम हरितिमा पूर्ण हो जाती है, सरोवर जल से आप्लावित हो उठते हैं, दादुर मोर चातक कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। ऐसी वर्षा ऋतु को विरहिणी अपने प्रियतम के विरह में कैसे काट सकती है। कैसे कह भरी हैं दिन सावन के हरित भूमि भरे सलिल सरोवर मिटे मग मोहन आवन के दादुर मोर सोर चातक पिक सूनी

निशा सिरावन की, गरज चहूं घन घुमण दामिनी, मदन धनुष धर धावन की। आधुनिक हिंदी काव्य का सृजन यूरोप के औद्योगिकीकरण के समानांतर होता है, जहां प्रकृति मात्र सौंदर्य का उपादान रहकर क्रूर दृष्टि का शिकार होना आरंभ हो जाती है। कश्मीर सुषमा में श्रीधर पाठक प्रकृति की मनोहारी छटा बिखेरते हैं, तो हरिओध रचित प्रिय प्रवास में राधिका की हृदय व्यथा में प्रकृति के उपादानों में व्यंजित होती है, तो कृष्ण भी अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति में प्राकृतिक प्रतीकों का आश्रय लेते हैं। उत्कंठा के विवश नभ को, भूमि को, पादपों को, ताराओं को, मनुज मुख को प्रायशः देखता हूँ। प्यारी ऐसी न ध्वनि मुझको है कहीं भी सुनाती, जो चिंता से चलित चित्त की शांति का हेतु हो। मैं प्रकृति की छटा का सुंदर चित्रण मैथिली शरण गुप्त के साकेत, पंचवटी, यशोधरा, सिद्धराज आदि काव्यों में सुंदर स्वरूप में चित्रित हुआ है। चंद्र ज्योत्सना में रात्रिकालीन वेला की प्राकृतिक छटा का मन भावन वर्णन दर्शनीय है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनि और अंबर तल में। प्रकृति की भव्यता पंत प्रसाद और निराला के काव्य में यत्र तत्र दृष्टिगोचर होती है। ये कवि पर्यावरण की रमणीयता में इतने मुग्ध हो जाते हैं कि प्रेयसी का प्यार भी इन्हें तुच्छ लगता है। पंत का पर्यावरण प्रेम दर्शनीय है।

0: ओचन। इसी प्रकार सांध्यकालीन छटा निराला को सुंदरी के रूप में आभासित होती है। दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। कामायनी आधुनिक काल का उत्कृष्ट महाकाव्य है, जिसके आरंभ में प्रकृति के भयानक रूप का वर्णन है, जिसमें जल प्रलय के पश्चात सर्वस्व विनष्ट हो जाता है। संभवतः प्रसाद जी का यह संकेत उद्दाम लालसाओं से ग्रसित उन लोगों के लिए भी है जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। परिणाम स्पष्ट है, हिमगिर के उत्तंग शिखर पर बैठ शिलासी भीतल छांह, एक पुरुष भीगे नयनों में देख रहा था प्रलय प्रवाह। साहित्यकार मन प्रकृति के शोषण से भी व्यथित है। भोगवादी दृष्टि के साथ वैज्ञानिक प्रयोगों ने भी प्रकृति को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया है। युद्धों की विभीषिका में जब परमाणु त्रासदी के पश्चात मनुष्य नहीं बच पाते हैं, तो बेचारी प्रकृति की क्या दशा होगी। अज्ञेय जी ने कहा, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया। उसी पृष्ठभूमि में दिनकर जी ने लिखा, बुद्ध के पवमान में उड़ता हुआ असहाय, जा रहा तू किस दिशा की ओर को निरुपाय। लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, क्या अर्थ, यह नहीं ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में आदिकाल से आधुनिक काल तक पर्यावरण चेतना के प्रचुर दर्शन विद्यमान हैं। कवि साहित्यकार पर्यावरण के प्रति इतने आबद्ध हैं कि वे उसके वर्तमान शोषण एवं दोहन से अत्यधिक व्यथित भी दिखाई पड़ते हैं। उनका मानना है कि यदि पर्यावरण अर्थात प्राकृतिक उपादानों का इसी प्रकार दोहन होता रहा तो मानव जीवन भी असंभव हो जाएगा। इससे साहित्यकार जनता को सचेत भी कर रहे हैं। वे अपनी रचना धर्मिता से मानवता को संरक्षित करने का स्तुत्य प्रयास भी कर रहे हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे विशेष वार्ता, हिंदी साहित्य में पर्यावरण चेतना। वार्ताकार थे डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन के

FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी दोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
3: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी

0: बादलों को रोक लेता है। इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
1: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
0: जी,
1: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
0: जी,
1: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
0: जी,
1: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
0: श्रोताओं, जहां तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है। मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
1: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
0: क्या बात है।
1: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
0: क्या बात है। श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
1: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
0: जी।
1: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं, ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
0: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
1: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है। यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
0: जी,
1: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
0: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
1: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है। नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।

0: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
1: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए,
0: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर,
1: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
0: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
2: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
0: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
3: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
4: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
0: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
4: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
5: जी महाराज, बहुत कृपा।
6: महाराज की जय हो,
7: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
0: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
4: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
0: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
1: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
0: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
1: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे।
0: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
1: धन्यवाद महाराज।
4: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
1: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ?
0: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
1: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ ले महाराज।
0: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
1: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली है महाराज।
0: क्या? और कोई शंका?
1: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों

0: किया महाराज?
1: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
2: महाराज की
3: जय!
2: महाराज की
3: जय!
2: महाराज की
3: जय!
1: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
6: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चलू।

0: प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं, वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है, इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है, तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या।

0: लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।
4: तेरा शहर बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त।
5: लाले क्या बताऊं यार।

ऋषभ भोसले को भी आपने सुना फिल्म घातक में। और आइए सुनते हैं कुमार सानू पूर्णिमा को, फिल्म का नाम है साजन चले ससुराल।

कविता कृष्णमूर्ति और साथियों के गाए फिल्म जीत के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फरवाईसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति रश्मि शर्मा की है।

तो आखिर आप भी आ ही गए। तो जनाब, जब हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा ही दी हैं, तो फिर सोचना कैसा।

0: अरे अरे घबराइए मत, मैं बीमार नहीं आपका इलाज करने आई हूँ, क्योंकि अब आपका इलाज होगा आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ और हमारे साथ की गई प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन श्रोता हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं।
1: हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाशवाणी, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते
2: जी, बोल रहे हैं।
1: कैसे हैं आप?
2: अच्छे हैं।
1: और क्या चल रहा है आजकल?
2: आजकल यही खेती किसानी चल रहा है, धान नर्सरी वर्सरी डालने के लिए तैयारी भी करते हैं कंप्लीशन लेवल का।
1: तो अभी आगामी फसल किसकी बोई जानी है?
2: धान की।
1: धान की, ओके।
2: धान भी होता है, मूंगफली भी होता है हमारे यहाँ।
1: धान और मूंगफली, तो चलिए आज पसंद क्या रहेगी आपकी?
2: नदिया के पार्क का कोई भी गीत बजा
1: दीजिए। नदिया के पार का कोई भी गीत।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: रामेश्वर चौधरी बोल रहा हूँ, जरौली सासनी हाथरस से।
0: स्वागत है कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं। और सभी लोग कैसे हैं आप सभी लोग?
0: बिल्कुल, सभी बढ़िया हैं और आनंदित हैं, प्रसन्न चित्त हैं और उम्मीद करते हैं हमारे सभी श्रोता भी इसी हाल में होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मस्त अच्छे हैं सभी।
0: जी जी जी जी, तो आज क्या पसंद रहेगी आपकी?
1: लव स्टोरी फिल्म का नाम है
0: जी। कौन सा गीत सुनेंगे?
1: तेरी याद आ रही है, याद आ रही है, यही वाला गाना सुन।
0: ठीक है, किसकी याद आ रही है आपको? बताइए। नहीं,
1: गाना
0: चलिए चलिए, जिसकी भी याद में सुनना चाहें बस गाना सुनिए, एंजॉय करिए। चलिए,
1: नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी
1: मैडम जी को मेरा सादर नमस्कार।
0: सादर प्रणाम, कैसे हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं मैडम जी, मस्त है, स्वस्थ है।
0: बिल्कुल
1: आप बताइए,
0: बिल्कुल,
1: आप और आपकी आकाशवाणी टीम कैसे है मैडम जी?
0: हम भी मस्त हैं, स्वस्थ हैं, आनंदित हैं। और आप जैसे श्रोता कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं तो बस एनर्जी लेवल जो है ना वो बहुत हाई हो जाता है।
1: मैडम जी, जब आप बोलते हैं और श्रोताओं से बात करते हैं ना,
0: हाँ
1: एनर्जी तो वैसे ही भरपूर आ जाती है।

0: जी
1: आप इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हैं, हम श्रोताओं की पसंद को समझती हैं, इसके लिए आपको मेरा हृदय से धन्यवाद।
0: जी जी जी बहुत बहुत आभार इतना प्यार देने के लिए। आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: जी मैं आज सुनना चाहूंगा, फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे, और
0: कौन सा
1: गाने
0: गीत?
1: गाने के बोले तू इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। बहुत ही प्यारा गीत है, मुझे भी बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद है, तो चलिए मिलकर सुनते हैं गीत।
1: जी ये गीत मेरे एक खास मित्र के नाम है, और वो मित्र है मेरे चौधरी महेंद्र सिंह, और एक मेरे मित्र है याद राम जी उस पार से।
0: जी
1: और
0: चलिए।
1: अभी अभी हेलो काशवाड़ी में आगमन हुआ है एक नन्हे मुन्ने का, मास्टर कृष्णा का,
0: अच्छा
1: उसको भी हम श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत प्यार।
0: जी, चलिए सुनिए पसंद का ये गीत।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: आदरणीय दीदी सारा नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: आदरणीय दीदी, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा की मथुरा उत्तर प्रदेश से आदरणीय दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से। दीदी आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, आनंदित हूँ। और आप कैसे हैं?
1: आपसे वार्तालाप हो जाती है, बहुत ही खुशी प्रसन्नता होती है। मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, आकाशवाद कृपा है और घर परिवार में भी सब लोग मंगल है। और कई दिनों के पश्चात आपसे पुनः एक बार अवसर प्राप्त हुआ है बातचीत करने का।
0: जी, काफी अंतराल के बाद में आपसे बातें हो रही हैं और निश्चित रूप से ये एक सुखद अनुभूति होती है जब हमारे नियमित श्रोता जो हमें लगातार कार्यक्रम में फोन करते ही रहते हैं और उनके फोन कॉल्स आते हैं और हमारी बात होती है।
1: जी जी बिल्कुल
0: जी, तो आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: दीदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है नसीब,
0: जी
1: जिंदगी इम्तिहान लेती है।
0: बहुत खूबसूरत संगीत है, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: आदरणीय जी को सादर प्रेमचंद द्वारा नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: दीदी मैं कस्बा खंडौली से आपका ब्रज रेडियो सुशामित राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं राजू जी?
1: बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी हेलो आकाशवाणी टीम, हमारी दीदी कैसी हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया, आकाशवाणी की पूरी टीम बढ़िया और आपकी दीदी भी बढ़िया।
1: लेकिन बीते कुछ दिनों से काफी राहत है गर्मी में भी, लेकिन दुख इस बात का है कि जो प्राकृतिक प्रकोप इस साल हमें दिखाई दे रहा है उसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों की करतूतें हैं वो उनके परिणाम अब हमारे सामने आने लगे हैं।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और हमारे ही कर्मों का प्रतिफल अब सामने आ रहा है। और अब आज आपकी पसंद क्या रहेगी राजू जी?
1: तेरा मेरा प्यार अमर फिर के मुझको लगता है डर।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति रश्मि शर्मा की थी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, अपराह्न 12 बजे कार्यक्रम गीत बात और SMS में आज हम आपसे बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पर। तो श्रोताओं, आप भी तैयार रहिएगा और हमें बताइएगा कि हम पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं अपने संदेशों के माध्यम से। और आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ में अभी आपने सुना ये भक्ति गीत। फिल्म का नाम था लगान। कार्यक्रम का अगला गीत आइए लेते हैं फिल्म अंकुश से। इस गीत को स्वर दिए हैं पुष्पा पगधरे और सुषमा श्रेष्ठ ने।

अभी आपने सुना सत्यम शिवम सुंदरम का ये गीत। इस गीत को गाया था लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। और आइए अब सुनते हैं ये भक्ति परक रचना फिल्म अवतार से। स्वर आशा भोसले, नरेंद्र चंचल और साथियों के हैं।

का नाम था लगान। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत दिया था एआर रहमान ने। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और SMS। कार्यक्रम गीत बात और SMS में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम आपसे बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पर। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वही पर्यावरण कहलाता है, और इस पर्यावरण का जो संरक्षण है वो हम सब, आपको और हमको मिलकर ही करना है। और प्रकृति की रक्षा करने के लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है, अहम है। और इसी विषय पर हमारे सभी श्रोताओं ने भी बहुत सारे संदेश हमें भेजे हैं। पहला संदेश हमारे पास आया है जिला खरगोन से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, राजकुमार वोडाना और इनके सभी परिवारजन। अगला संदेश हमारे पास आया है जवाहर नगर दुर्ग से RC कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी, विपुल कांबड़े का। और ये संदेश हमें लिख भेजा है महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने, PS गवानकर, तुषार कंगले ने। इन्होंने लिखा है आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि धरती हमारी माँ है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जी हाँ श्रोताओं, इस धरती के पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हमें पेड़ पौधे, नदियाँ, हवा, जीव जंतु सब मिलकर जीवन का जो संतुलन है उसे बनाए रखते हैं। प्लास्टिक का उपयोग श्रोताओं कम करें, पेड़ लगाएं, पानी की बचत करें, बिजली की भी बचत करें, और हर छोटा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। प्रदूषण मुक्त, हरियाली से भरपूर धरती ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। इसीलिए श्रोताओं, आइए प्रण लेते हैं कि हमें धरती बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हम अगर सुधरेंगे तो जग भी सुधरेगा। और ये अगला संदेश हमारे पास आया है छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता गुणवंत श्रीवास, करुणा, आयुष विवेक और आयुषी श्रीवास। और ये अगली जो फरमाइश आई है वो आई है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतलमाना सुरलकर और इनके सभी संगीत साथियों की। इन्होंने भी लिखा है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक, पॉलीथीन का उपयोग बंद करें, बिजली और पानी की बर्बादी को रोकें, ऐसी चीज़ों का चुनाव करें जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कपड़े के थैले, कांच की बोतलें और पुराने डब्बे। कचरे को सूखा और गीला करके अलग अलग डालें। जी हाँ श्रोताओं, रिसाइकिलिंग के जरिए कचरे को हम नई उपयोगी वस्तुओं में बदल सकते हैं। इसीलिए जो है गीले और सूखे कचरे को हमें अलग अलग डब्बों में डालना चाहिए, और हर बरसात के मौसम में कम से कम 5 पेड़ अवश्य लगाएं और उनकी देखभाल भी एक नवजात शिशु की तरह करें। ये संदेश हमें लिख भेजा है रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, मुकेश और इनके सभी संगीत साथियों ने, लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से। ये फरमाइश हमारे पास आई है रोहिदास चौक पंडरपुर शहर से। लिखने वाले श्रोता सुनीता शिंदे, यशराज प्रशांत, ऋषि, कृष्णा घोड़के और इनके सभी संगीत साथी।

ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता राजस्थान से शमुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और पूजा खटक। ये फरमाइश लिखने वाले हमारे श्रोता सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री और इनके सभी परिवारीजन। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं सेक्टर 66 से मोहाली, चंडीगढ़ से डीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा और इनके सभी संगीत साथी। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से लिखने वाले श्रोता इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा

आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। फिल्म का नाम है लोफर।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। श्रोताओं, आज हम आपसे बात कर रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर, और ये संदेश हमारे पास आया है वन बघेरा जिला राजानंदगांव छत्तीसगढ़ से, योगेश सरवा, आशा सरवा, नीरज, नीलेश, अंजनी और रोशनी का। और ये संदेश हमें लिख भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा का पेल ईशान पूजा परिहार ने। और ये फरमाइश हमारे पास आई है तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान, समीरा, अजमीन और इनके सभी संगीत साथियों की। श्रोताओं, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर, तो श्रोताओं, हमें छोटी छोटी सी चीज़ों का, छोटी छोटी सी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि यदि हम कमरे में नहीं हैं तो हम कमरे का जो लाइट का बल्ब है उसे हम बंद करके कमरे से बाहर निकलें। पंखे को बेहद बिना मतलब के जो है खुला ना छोड़ें। और बरसात में हम हमेशा पेड़ पौधे लगाएं, उनका संरक्षण करें, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। अगर हम बाज़ार जा रहे हैं कोई सामान लेने तो अपने साथ कपड़े का थैला लेकर अवश्य निकलें। और ये संदेश अब हमें लिख भेजा है छत्तीसगढ़ से लिखने वाले हमारे श्रोता प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूतु, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू ने। अगला संदेश हमारे पास आया है नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओंकार और साईं गायकवाड़ का। और ये अगला संदेश हमारे पास छत्रपति संभाजी नगर से लिखने वाले हमारे श्रोता राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। इन्होंने लिखा है अपने संदेश में कि पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण के वास्तविकता को बनाए रखना होगा। हमें पूरे ब्रह्मांड में बस पृथ्वी पर ही जीवन है। वर्षों से प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाते हैं। इसीलिए इसे स्वच्छ रखना, सुरक्षित रखना हमारा सभी का कर्तव्य है। बुरी आदतों को हमें छोड़ना चाहिए, अच्छी आदतों को हमें शामिल करना चाहिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम सबको मिलकर एक मुहिम चलानी चाहिए। बिल्कुल श्रोताओं, और ये संदेश हमारे पास अगला लिख भेजा है बलकरण वर्मा, इंजीनी ज्योति, प्रहलाद, राजेश वर्मा, उमेश और प्रमिला बंछोर ने। इन्होंने लिखा है वातावरण को सुरक्षित रखना हम सब की जिम्मेदारी है। बरसात के मौसम में पेड़ अवश्य लगाएं। और ये अगला संदेश हमारे पास आया है पीहरा बाजार झुमरी तलैया से लिखने वाले हमारे श्रोता हैं शिवानी कुमारी साहू, प्रियंका कुमारी साहू, गुड्डू कुमार गुप्ता, रिम्मी, रिया, आयुषी, अनिरुद्ध, शिव मंदिर चौक, दमदम, अर्जुनपुर से बसंतलाल साहब, मुन्नी देवी और इनके सभी संगीत साथी। इन्होंने भी अपने संदेश में हमें लिखा है कि प्लास्टिक वाले चीज़ बंद करके कपड़े का बैग अपनाएं, पर्यावरण शुद्धि के लिए पेड़ अवश्य लगाएं। और श्रोताओं, तो सुनिए आपकी पसंद पर ये गीत। इस गीत को स्वर दिया है मुकेश ने, फिल्म का नाम है बूंद जो बन गई मोती।

श्रोताओं, कचरे को हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और अपने घर और बगीचे में कम से कम केमिकल वाले कीटनाशकों का प्रयोग करें। इससे मिट्टी और जल प्रदूषण कम होता है। श्रोताओं, इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर उगाई गई सब्जियों और जैविक उत्पादों को ही खरीदना चाहिए, क्योंकि दूर से आने वाले सामानों के परिवहन में अधिक ईंधन खर्च होता है। इसीलिए कोशिश करें कि जो हमारे घर के आसपास सब्जियां फल का जो उत्पादन होता है, हम वहीं से खरीदें, क्योंकि वो जो है ताज़ा भी होते हैं और उससे ईंधन की भी बचत हो जाती है। और जो संदेश अब हमारे पास आया है

वो आया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। लिखने वाले श्रोता तुलसी, मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य राजा, राहुल खुराना रचित और रिधान खुराना। और ये संदेश हमें लिख भेजा है जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सभी, अना सोरेहान ने। इन्होंने अपने संदेश में लिखा है कि एक पेड़ 100 पुत्र के समान होता है। धरती का जो रखवाली है, जो रक्षा करनी होती है, वो हम सबको मिलकर करनी होती है। धरती का हमें ध्यान रखना होता है, धरती माँ का हमें मान रखना होता है। हरियाली से जीवन महकता है और यही प्रकृति का सच्चा सम्मान है। जी हाँ श्रोताओं, आपने बहुत ही अच्छा संदेश लिखा है। और ये अगली फरमाइश हमारे पास आई है अम्बाला हरियाणा से। रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुर कीरत और गुर शब्द की। ये संदेश हमारे पास वारसी क्लब सिंधौली, मीरगंज, बरेली से जीशान वारसी, अयूब खान और इमरान खान का। इन्होंने लिखा है कि आइए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि प्रकृति की रक्षा करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, जल का संरक्षण करेंगे और अपने आसपास का जो वातावरण है उसे हम स्वच्छ एवं हरित बनाए रखेंगे। स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार होता है। आने वाली पीढ़ियों को एक सुंदर, सुरक्षित और हरा भरा संसार देना श्रोताओं हम सभी की जिम्मेदारी है। इसीलिए पेड़ों की छाव से जीवन महकता है, नदियों का जल हर दिन को बहकता है। आओ मिलकर प्रकृति का हम मान बढ़ाएं, हरियाली से धरती का हम श्रृंगार सजाएं। और ये संदेश हमारे पास लिख भेजा है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सतना एमपी से लिखने वाले श्रोता उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक। ये संदेश हमारे पास आया है उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वकतरिया, भोला, प्रवीण, रियांश, प्रतीक और इनके सभी संगीत साथियों का। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार का गाया हुआ ये गीत। फिल्म का नाम है गुरु।

और ये संदेश हमें लिख भेजा है दरियापुर भावली महाराष्ट्र से। लिखने वाले श्रोता गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, सुशील, अरुणा, बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर। इन्होंने अपने संदेश में हमें लिख भेजा है, पर्यावरण को बचाने का सरल तरीके कागज, प्लास्टिक और कांच का कम से कम उपयोग करें। उनका पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें। केवल आवश्यक मात्रा में पानी और बिजली का उपयोग करके बचत करें। वायु प्रदूषण कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें या साइकिल चलाएं। एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को ना कहें और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का अपनाएं। और ये संदेश हमें लिख भेजा है जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से। इन्होंने लिखा है, एक पेड़ सौ पुत्र समान धरती माँ का रखे मान। और ये संदेश हमारे पास आया है वगैरह दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव का। इन्होंने अपने संदेश में लिखा है, हरियाली है तो खुशहाली है, पौधे लगाओ, पर्यावरण को बचाओ। जी हाँ श्रोताओं, पौधे लगाना बहुत ही आवश्यक है। और ये संदेश हमें लिख भेजा है चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु और इनके सभी संगीत साथियों ने। इन्होंने लिखा है, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, कचरा डस्टबिन में डालें, सफाई का ध्यान रखें और देश को साफ सुथरा बनाए रखें। ये संदेश हमारे पास आया है डीग राजस्थान से बुद्धिराम प्रजापति, नीरज कुमार प्रजापति, देवेश कुमार प्रजापति और इनके सभी दोस्तों का। इन्होंने लिखा है कि आज की सावधानी कल की सुरक्षा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम कुछ उपाय करके उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तालाब एवं पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करें, स्थानीय प्रजाति के अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, प्लास्टिक से हम नाता तोड़ें और ऊर्जा और पानी की बचत को जीवन शैली में अपनाएं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और SMS। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय था विश्व पर्यावरण दिवस। आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार हैं सुरेश चंद्र।

शरीर कदम पे चढ़ गए ओ लेकर चीर कदम पे चढ़ गए।

कानाट कैरी अरी मैया तेरो री मैया तेरो लाला री मोते अट

लाज शरम जाए रही ना तनक भी, लाज शरम जाए रही ना तनक भी। बैया पकर मेरी झटके री मैया, बैया पकर मेरी झटके।

0: अभी आप सुन रहे थे ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार थे सुरेश चंद्र। आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में BSF के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसलकर 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़ककर 23,300

74 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रूपक, आलेख डॉक्टर चंद्रकिशोर पाठक का होगा, ब्रज संस्कृति और पर्यावरण, प्रस्तुति श्री कृष्ण शरद की होगी। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राग वागेश्वरी में ख्याल गायन। कलाकार होंगे अजीत सिंह पेंटल, तबले पर संगत करेंगे तोताराम, सारंगी पर संगत करेंगे हरिबाबू कौशिक।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा वनिता लोक। इसमें वार्ता प्रसारित की जाएगी पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी विषय पर। जानकारी देंगी डॉक्टर नीता सिंह। संध्या 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें आज आप सुनेंगे रूपक विश्व पर्यावरण दिवस पर भारतीय चिंतन में पर्यावरण संरक्षण। आलेख एवं वाचन अरविंद कुमार का होगा।

संध्या 6:15 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता बाजरा ज्वार मक्का में उन्नत प्रजातियां तथा बुवाई के विषय पर। जानकारी देंगे डॉक्टर खजान सिंह। एक और वार्ता आप सुनेंगे खारे पानी के साथ फसल प्रबंधन। जानकारी देंगे डॉक्टर वाई के शर्मा। इनसे बातचीत करेंगे दीपक गोस्वामी। ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे ब्रज नव कथा भली बनी बतासो प्रधान। वार्ताकार होंगे अजय कुमार शर्मा संतोष। समय रहेगा 7:05। संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्याम सुहानी।

और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से

0: इंडिया की ओरिजिनल आवाज
1: अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर

0: सीमारेखा के बाहर
1: मन की बात के संवाद तक
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक।

कुछ रिश्ते लहजों से नहीं खामोशियों से बनते हैं, कुछ एहसास शब्दों में नहीं नज़रों से पनपते हैं। कुछ लोग जिंदगी में यूं आते हैं जैसे सूखी धरती पर बारिश, न वादा न इरादा न कोई शर्त, फिर भी दिल से दिल तक पहुंचते हैं। वक्त के साथ अगर साथ ना भी रहे, यादों में हमेशा महकते हैं। कुछ रिश्ते किस्मत से नहीं मिलते, दिल की दुआओं से मिलते हैं। वनितालोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज मैं हूँ आपके साथ खुशबू। जी हाँ बहनों, कुछ ऐसा ही रिश्ता हमारा और आपका है। भले ही हम ना मिले, लेकिन आपसे हर रोज़ मिलने का मन करता है। तो बहनों, आज हमारी चर्चा का विषय है विश्व पर्यावरण दिवस। जी हाँ, पेड़ों की छाँव में जीवन मुस्कुराता है, हरियाली से ही धरती का श्रृंगार नजर आता है। आओ मिलकर ऐसा संकल्प उठाएं, पर्यावरण बचाकर भविष्य को सुंदर बनाएं। बहनों, बढ़ता प्रदूषण, कटते जंगल और जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। ऐसे में हम सभी का कर्तव्य है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जल की बचत करें और प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दें। आज की हमारी चर्चा का विषय भी यही है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। पर्यावरण केवल पेड़ पौधे, नदियां और पहाड़ ही नहीं है, बल्कि ये हमारी सांसें, हमारा स्वास्थ्य और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। यदि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तभी मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य बहनों सिर्फ इतना है कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और प्रकृति के महत्व को समझाना है। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ वायु, शुद्ध जल, उपजाऊ भूमि और हरियाली हमें प्रकृति से ही प्राप्त होती है।

0: विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में हुई थी। बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी अनेक समस्याओं के कारण पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता महसूस होने लगी। ये दिवस हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करवाता है। एक ओर वृक्षों को हम पूजते हैं, दूसरी तरफ हम इनको काटते हैं। एक तरफ हम नदियों की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ हम इनको गंदा करते हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि अधिक मास चल रहा है तो सभी श्रद्धालु पुण्य कमा रहे हैं, जगह जगह भंडारे प्रसाद वितरण हो रहा है, लेकिन उसको खाने के बाद जो दोने पत्तल होते हैं उन्हें कूड़ेदान में न डालकर इधर उधर सड़कों पर ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ये सभी हमारी ही तो जिम्मेदारी है कि हम अपने नगर को, मोहल्ले को साफ रखें, पेड़ पौधे लगाएं। बहनों, जब हम थक जाते हैं तो हम प्रकृति की सुंदरता को निहारते हैं तो दिल को बड़ा ही सुकून देता है। ये इस वातावरण को देख करके हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम कितने सुरक्षित हैं, और ये हमारा ही दायित्व है। तो आज से ही हम ये संकल्प लें कि हम उसे साफ सुथरा रखें। और बहनों, इसी विषय पर आज हम आपको एक वार्ता सुनवाते हैं। विषय है पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर नीता सिंह।
1: पर्यावरण का आशय है पशु जगत, पक्षी जगत, वनस्पति जगत, जल जगत एवं वायु, नदी, पहाड़, खनिज संपदा जो प्रकृति की देन है। पर्यावरण इन जैविक तथा अजैविक घटकों का समूह है जो परस्पर प्रक्रिया द्वारा मानव तथा जीव जंतुओं के जीवन को प्रभावित करता है। इतना सब होने पर भी प्रकृति के विभिन्न घटकों में संतुलन बिगड़ जाने से संपूर्ण पर्यावरण तंत्र अस्थिर हो जाता है। इस अस्थिरता को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। इसके विपरीत यदि प्रकृति के सभी घटकों में संतुलन बना रहता है तो उसे पर्यावरण संरक्षण कहते हैं। मनुष्य का दायित्व है कि वह प्राकृतिक संसाधनों में संतुलित चक्र के रूप को बनाए रखते हुए स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना अपना पुनीत कर्तव्य समझे। शास्त्र साक्षी है कि मानव जीवन का अस्तित्व मुख्यतः 5 महाभूतों पर अवलंबित है। ये महाभूत हैं आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि। इन्हीं के संयोग से समस्त चराचर का निर्माण हुआ है तथा इन्हीं के आच्छादन का दूसरा नाम पर्यावरण है। हमारे ऋषि मुनियों ने सर्वथा इनके आराधना, अर्चना एवं प्रार्थना शांत पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए की है, क्योंकि आकाश में दैदीप्यमान सूर्य, चंद्र, तारागण हमें शुद्ध प्रकाश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में विभूति योग में वृक्षों की महिमा का उल्लेख किया है। हमारी संस्कृति कृतज्ञ की भावना के उज्ज्वल आदर्श को प्रस्तुत करती है। पेड़ों को संरक्षित करने में सिर्फ पुरुषों का ही नहीं वरन महिलाओं का भी पूर्ण योगदान है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनसे महिलाओं की जागरूकता भी सामने आती है। जैसे खेजरली में सैकड़ों औरतों ने वृक्षों की रक्षा हेतु अपनी प्राण नौछावर कर दिए। इसका एक अन्य उदाहरण भी हमारे सामने है, चिपको आंदोलन में रानी और तारा की अहम भूमिका को हम झुठला नहीं सकते। पर्यावरण संरक्षण में आज महिलाओं की भूमिका ज्यादा देखने को मिल रही है, और यदि किसी कार्य को पूर्ण रूप से सफल बनाना है तो उसमें महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। हम प्राचीन काल से ये सुनते आ रहे हैं कि बालक की पहली शिक्षिका उसकी माता होती है। माँ ही अपने बच्चे को स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जागरूक करती है, परंतु एक बड़े स्तर पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों, संगठनों, योजनाओं जैसे NCC, NSS के तहत जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से महिलाओं में पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाना प्रारंभ किया है। वे भी अब पर्यावरण संरक्षण के लिए गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही हैं। जैसे हमारे देश की निरंतर वृद्धि करती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अहम कदम उठाने के लिए विभिन्न संगठनों का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रही हैं। आज से एक दशक पहले तक महिलाएं शब्द की महिमा को नहीं जानती थीं। उन्हें संतान ईश्वर की कृपा

लगती थी। उन्हें जनसंख्या वृद्धि के परिणाम दूर दूर तक नहीं पता थे, परंतु आज महिलाएं इतनी जागरूक हो चुकी हैं कि वे स्वयं ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी इसके बुरे परिणामों से अवगत कराती नजर आती हैं। वे सरकार द्वारा लगभग 20 वर्ष पहले चलाए गए अभियान हम दो हमारे दो को भली भांति जान चुकी हैं। आज महिलाएं पर्यावरण संरक्षण हेतु आगे आई तो हैं,

0: प्रकृति ईश्वर का दिया गया एक अनमोल उपहार है, जिसे संभाल कर उपयोग करते हुए भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। हमें बायो प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए तथा प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्ण रूप से रोक लगानी चाहिए। हमें वृक्षारोपण करना चाहिए और आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए। हमें ऐसे उत्पाद प्रयोगों में लाने चाहिए जिनसे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। उनका मानना है कि आज हमें पुरुषों व महिलाओं को पर्यावरण के प्रति शिक्षित करने की जरूरत है, जिससे कि पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण का महत्व व पर्यावरण प्रदूषण की हानियों को समझ सकें। हमें अपने जीवन का कुछ समय पर्यावरण संरक्षण में अवश्य ही देना चाहिए। इसी प्रकार एक लेखिका निर्मल जी ने अपनी पुस्तक में प्रकाश डालते हुए लिखा है कि महिला संगठनों को जीवन और आर्थिक विकास से ज्यादा पर्यावरण संरक्षण को महत्व देना चाहिए। वहीं महिला नेताओं के संगठनों को टूरिज्म प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना चाहिए, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव वनों पर पड़ता है। अर्थात उनका मानना है कि छोटे स्तर से बड़े स्तर पर महिलाओं की पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी होनी चाहिए। इसके अलावा भारत की ही पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने के बारे में भी कहा जाता है कि वे पुलिस अधीक्षक होने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष सलाहकार भी हैं। वे पुलिस अधीक्षक बतौर अपनी जेल में कैदियों को तथा जेल के बाहर समाज के लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष सलाहकार होने के नाते उन्होंने मानव हित कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि मानव द्वारा ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग ही पर्यावरण को बिगाड़ देता है, इसीलिए ऊर्जा का कम से कम उपयोग किए जाने पर जोर देना चाहिए। हम अपने शहर मथुरा का उदाहरण ही लें तो हमें पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भागीदारिता साफ नजर आती है। यहाँ के जिला अध्यक्ष महोदया को भी हमने समय समय पर वृक्षारोपण समारोह में भाग लेते हुए देखा है। बालिका विद्यालयों में प्रतिवर्ष पर्यावरण सप्ताह मनाया जाता है, जिनमें बहनों द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले शुरू हुए टाइगर प्रोजेक्ट वन विभाग द्वारा बाघों के संरक्षण हेतु शुरू किया गया। इस संरक्षण कार्यक्रम में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। पर्यावरण संरक्षण हेतु महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के अनौपचारिक यंत्रों जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस आदि विकल्पों को काम में लाने के लिए आगे आना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि जिस तरह समाज का निर्माण पुरुषों व महिलाओं दोनों से होता है, उसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण में भी दोनों की सहभागिता आवश्यक है, क्योंकि यदि किसी ने भी पर्यावरण संरक्षण में लापरवाही बरती तो उसके दुष्परिणाम हमारे साथ साथ हमारी भावी पीढ़ी को भी भुगतने पड़ेंगे।
1: तो बहनों, अभी आपने वार्ता सुनी, विषय था पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी। जानकारी दे रही थी डॉक्टर नीता सिंह। धरती की पुकार है, हरियाली का श्रृंगार है, पर्यावरण को जो बचाएगा वही सच्चा जिम्मेदार नागरिक कहलाएगा। आइए सुनते हैं ये गीत।

कुछ अधूरा सा लिखना था, खामोशी से ज़्यादा क्या लिखूं? कुछ कीमती सा लिखना था, यादों से ज़्यादा क्या लिखूं? कुछ मुसाफिर सा लिखना था, रास्तों से ज़्यादा क्या लिखूं? सुनो, अब इबादत लिखनी है, अपने बच्चों से ज़्यादा क्या लिखूं? क्योंकि दुनिया की हर दौलत से बढ़कर मेरे लिए उनकी मुस्कान है। मेरी हर दुआ की वजह भी वही है, मेरी हर खुशी की पहचान भी वही है। सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी भी वही है। बहनों, माँ के आंचल की छाँव में मिलता जीवन का मान।

स्वस्थ रहे हर नन्हा बचपन जब मिले माँ का दूध महान। जी हाँ बहनों, नवजात शिशु के लिए माँ का दूध प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। जन्म के तुरंत बाद दिया जाने वाला पहला पीला गाढ़ा दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, बच्चे के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। इसमें ऐसे पोषक तत्व और रोग प्रतिरोधक गुण भी होते हैं जो बच्चे को कई बीमारियों से बचाते हैं। स्तनपान से शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। ये बच्चे को आवश्यक पोषण, ऊर्जा और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। साथ ही माँ और शिशु के बीच प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव भी मजबूत करता है। हम सभी बहनों को स्तनपान के महत्व को समझना चाहिए। अपने शिशुओं के स्वस्थ और उज्जवल भविष्य के लिए इसे प्रोत्साहित जरूर करना चाहिए। बहनों, ये तो हम सभी महिलाएं जानती हैं कि माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र और अनमोल रिश्ता होता है। ये एक ऐसा बंधन है जहाँ ममता, सुरक्षा और निस्वार्थ प्रेम का सागर समाया होता है।

हजारों गम हो फिर भी मुस्कुराना सिखा देती है। माँ की ममता हर मुश्किल को आसान बना देती है। बहनों, कुछ दिन पहले अभी आसमान की ओर देखा तो पाया दूधिया रोशनी से भरे पूर्णिमा के चांद को घने काले बादलों ने घेर रखा था। उसे देखकर ये समझ आया कि जीवन में हर चमकती हुई चीज को कभी न कभी अंधेरों से होकर गुजरना पड़ता है। बादल चाहे जितने घने हो, वे चांद का अस्तित्व नहीं मिटा सकते, बस कुछ देर के लिए उसे नजरों से ओझल कर सकते हैं। शायद इंसान भी ऐसा ही है, बुरे दिन उसकी पहचान नहीं छीनते, वो केवल उसकी रोशनी को थोड़ी देर के लिए ढक लेते हैं।

तो इसी के साथ वनिता लोक कार्यक्रम संपन्न करने की हमें दें इजाजत, और जाते जाते बस इतना ही कहेंगे, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, इस धरती को हरा भरा बनाएं, खुली हवा में ले सांसें और बीमारी को दूर भगाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। तो आज से ही ये संकल्प लीजिए कि आपको एक वृक्ष जरूर लगाना है। खुद को स्वस्थ रखें और सुरक्षित रखें। नमस्कार।

अभी बहना सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.0।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वरों में अभी आपने सुना यह गीत। फिल्म का नाम था आशा। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: गुड आफ्टरनून, This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to dedicate and lay foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Gujarat today. Center grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains.

0: कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे।

0: नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2,00,00,000 से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
4: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमरीका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण

0: को मजबूत करती है।
1: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं, लोकल फॉर वोकल है, दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र

0: वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना फिल्म आपकी कसम का ये गाना, और इस गाने को गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीत लिखा ना आनंद बख्शी ने, संगीत आरडी वर्मन का था। और आइए अब सुनते हैं मुकेश के सुर में फिल्म मधुमती का ये गाना। बोल शैलेंद्र के हैं, संगीत शैल चौधरी का है।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में भी आपने सुना फिल्म छोटी बहू का ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म जीत से। इस गीत को स्वर दिए हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

मुकेश और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म उपहार का ये गीत, और इस गीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने सात साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गांव के निवासी हैं और ये छात्र हैं, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहाँ से प्रेरणा मिली आपको?
3: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचरा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वही लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं? तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान

0: शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
1: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसी प्रेरणा आपको आई कहाँ से, और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
0: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे, और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
1: आप जब उस समय नदी की स्थिति या उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
0: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग आकर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
1: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
0: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने, और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस उसमें डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया, और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
1: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
0: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
1: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
0: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया, जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
1: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
0: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
1: आपको अभी क्या लगता है, इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
0: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
1: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
0: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
1: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
0: हाँ, जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिख रही हैं क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया है कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
1: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: हम यही कहना चाहेंगे जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
1: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है। वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
0: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए। धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था

0: तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे। हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगी।
1: क्या ये आपको उपकरण से जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
0: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए। और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
1: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
0: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
1: आप जिस तरह यह कार्य करके यह साबित किए बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
0: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन ये सब पेड़ बैठाएंगे।
1: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं? क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
0: निश्चित सी बात है सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का अभी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद का पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है। और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं। क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
1: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित कर रहे थे, प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

इस गीत को लिया हमने फिल्म सफर से। गीत इंदिवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और आवाज़ दे रहे हैं इस गीत को मन्ना डे और साथी।

इंदीवर के गीत को संगीत दिया कल्याण जी, आनंद जी ने, और सफ़र के इस गीत को आवाज़ दे रहे थे मन्ना डे और साथी। और आइए सुनते हैं फिल्म संगीत में अगला नगमा, फिल्म सरगम से आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर को फिल्म सरगम में गीत, आनंद बख्शी का संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और लीजिए सुनिए कार्यक्रम युव वाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज का दिन कुछ खास है। जी हाँ, आज है विश्व पर्यावरण दिवस। ये दिन हम, जैसा कि आज की तारीख है 5 जून, हर साल इसी दिन मनाते हैं 5 जून को। और पर्यावरण दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद 1973 में ये हुई थी, और पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। तो बात पर्यावरण की, जो इसकी जो अहमियत है, क्यों ये महत्वपूर्ण बन जाता है, या हम कह सकते हैं कि पर्यावरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर हमें गंभीर होना होगा, हमें चिंतन करना होगा कि किस तरह से हम, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या जो भी पर्यावरण में जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, इसके पीछे के मूलभूत कारण क्या हैं। अब समय है इस बात पर चिंतन करने का, गंभीरता से बात करने का कि जो स्थिति है वो पहले से, अब अक्सर आपने सुना होगा, लोग बातचीत करते हैं, अपनी बातचीतों के माध्यम में कहते हैं कि पहले जो पानी था उसमें एक मिठास थी, या जो जल का जो स्रोत था वो काफ़ी पहले ही हमको पानी मिल जाता था। या कहते हैं कि पानी में जो इस तरह का पानी था जिसमें हम फलदार वृक्ष अधिक लगा पाते थे, या हमारी जो खेती थी उसकी स्थिति बहुत बेहतरीन थी, हमारे पेड़ हमारे पास बहुत सारे थे, हमारी जो ज़मीन का जो स्वास्थ्य था, हमारी जो भूमि का जो स्वास्थ्य था वो बहुत बेहतरीन था। क्यों? क्योंकि तब तक हमने जो कीटनाशक, जो अपने हमारे जो रसायन हैं उनका उतना प्रयोग नहीं किया था। या हम तो कुछ मिलाकर बात सिर्फ इतनी कि जिस तरह से धीरे धीरे कर कर आप देखते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है, पॉपुलेशन में जो इजाफा हुआ है, शायद ये भी एक कारण है कि कहीं ना कहीं प्रकृति ने अपना स्वरूप बदला है, और वो जो दिशा है उसकी, पर्यावरण के जो अपने रूप की या उसकी जो परिवर्तन की, वो प्रतिकूल है। अगर वो अच्छी होती तो शायद आज हम इस बात की चर्चा नहीं कर रहे होते। तो बातें सिर्फ इतनी कि हम अपने स्तर पर, सरकार क्या करेगी वो बात बात की है, लेकिन हम अपने स्तर पर, हम जहाँ भी रहते हो, अपने घर में, परिवार में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, हम प्रयास करें कि वहाँ पर पर्यावरण की जो स्थिति है वो अच्छी हो, साफ सफाई वहाँ रहे, हम अपने घर का जो

शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। हमारे घर का जो भी कोई कूड़ा है या ऐसी चीज़ें हैं उसका हम उचित प्रबंध करें। अब आप सुनते होंगे गीत संगीत के माध्यम से भी कि गीले कूड़े को सूखे कूड़े को अलग अलग रंग के डिब्बों में हमको रखना है। साथ ही उस जब हम अपने इस कचरे का प्रबंधन कर लेते हैं तो हमारे जो पेड़ हैं पौधे हैं हमें उनका भी ध्यान रखना होगा। प्रयास करना होगा कि जो बारिश का पानी आता है उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा यानी कि जल संरक्षण पर ध्यान देना होगा ताकि वो पानी हमारे काम आए, हम वर्ष भर उस काम पानी का उपयोग कर पाएँ। क्योंकि दिन पर दिन जो इसको मीठा पानी कहते हैं या जो पानी हमारे पेयजल के रूप में जो हम उपयोग करते हैं उसका जो संसाधन है या उसका जो स्रोत है उसका जो भंडार है वो सीमित है। जी हाँ, आप देखते होंगे कि एक दौर था कि लोगों के पास चीज़ें सहज हुआ करती थी, आज पीने का पानी भी कई जगह पीने के योग्य नहीं है और उसके चलते आप आज आरओ का इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसी पीने के पानी के लिए आप मतलब आज ऐसा नहीं कर सकते आपके आज कहीं भी आप पानी पी लें। आप ध्यान देते हैं कि भाई पानी शुद्ध हो, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो वैसी ही हों, उसमें कोई हानिकारक ऐसा कोई रसायन या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जा रही है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो। तो पहले इन बातों की चर्चाएं नहीं होती थी क्योंकि पर्यावरण की स्थिति बहुत बेहतर थी और आज भी हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी अच्छा है और आप देखते हैं वहाँ के लोगों का जो स्वास्थ्य है वो अपने आप ही प्रकृति रूप से ही वो बहुत अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, क्योंकि वो जो खाते हैं वो आसानी से उनको डाइजेस्ट हो रहा है, पच रहा है और शरीर में वो चीज़ उस तरीके से दिखाई देती है। और जहाँ हम बात करें अपने मथुरा को लेकर या इसके आसपास के एरिया को लेकर, तो पहले तो ये कि जो आम तौर पर जो बारिश का औसतन जो हमारी बारिश है वही हमारे इस क्षेत्र में कम होती है, उसके बावजूद हम जो पानी है उसका हम अनदेखे रूप में कह सकते हैं आप, तो वो कई बार आप देखते हैं एक अच्छा पानी पीने योग्य पानी हमारा कहीं टोटी नहीं है नलों में या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसके कारण वो पानी सीधा सीधा नाली में गिर रहा होता है। या आप देखते हैं कई कॉलोनियों में समरसीवर लगे हुए हैं और लोगों ने अपने घर के ऊपर पानी की जो ये टंकियाँ रखी हुई हैं और वो भर जाती हैं और बहुत बहुत देर तक पानी जो है ओवरफ्लो होता रहता है, फैलता रहता है, लोगों को ध्यान नहीं होता कि टंकी भर गई है, पानी को बंद करें। तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं हमें जिनका ध्यान रखना होगा ताकि हम अपने जल संरक्षण को, अपने भूमि संरक्षण को, अपने पर्यावरण के संरक्षण को हम करें ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी अच्छे पर्यावरण में ज़िंदगी जी सके। ये हमारा सबका प्रयास होना चाहिए आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस पर। और सुनते हैं कार्यक्रम में आज ये रूपक भारतीय चिंतन में पर्यावरण संरक्षण विश्व पर्यावरण दिवस पर। आइए सुनते हैं ये रूपक, वाचन एवं प्रस्तुति अरविंद कुमार की है।

काटने से पहले शाह के पेड़ सोचना जरूर, इस पर बसेरा होगा किसी परिंदे का। बड़ी मेहनत से संजोया आशियाना अपना, रोएगा कोसेगा सोच ये काम है किसी दरिंदे का। आज तो कर देगा अनसुनी उसकी कराही, रंग लाएंगी एक दिन उसकी बदवाएं। न होना हैरान परेशान महरूम जब रिमझिम से हो जाए, दबा के पर्यावरण की आही कल।

फिरती थी कभी वन उपवन में तो कभी लता कुंज में, मेरे स्पर्श से नाचते थे मोर और विहसते थे खेत खलिहान। किंतु इन मानवों ने कर दिया कलुषित मुझे, अब नहीं वसंत बहार और खो गई है मौसम की खुशबू भी।

भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के संरक्षण को बहुत महत्व दिया गया है। यहाँ मानव जीवन को हमेशा मूर्त या अमूर्त रूप में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नदी, वृक्ष एवं पशु पक्षी आदि के साहचर्य में ही देखा गया है। यही कारण है कि भारतीय चिंतन में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना यहाँ मानव जाति का ज्ञात इतिहास है। भारतीय संस्कृति का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि यहाँ पर्यावरण संरक्षण का भाव अति पुराकाल में भी मौजूद था, पर उसका स्वरूप भिन्न था। भारतीय दर्शन ये मानता है कि इस देह की संरचना पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटकों पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से हुई है। श्री कृष्ण की गोवर्धन पूजा की शुरुआत का लौकिक पक्ष यही है कि जन सामान्य मिट्टी, पानी, हवा, पर्वत, वृक्ष और वनस्पति का आदर करना सीखे। भारतीय विचारधारा में जीवन का विभाजन भी प्रकृति पर आधारित था। चार आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में से तीन तो पूरी तरह से प्रकृति के साथ ही व्यतीत होते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम जो गुरुगृह में व्यतीत होता था और गुरुकुल सदैव वन प्रदेश नदी तट पर ही हुआ।

जहाँ व्यक्ति सदैव प्रकृति से जुड़ा रहता था और आश्रम परिसर में ही मौजूद होते थे तरह तरह के पशु पक्षी जो प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगाते थे।

वानप्रस्थ आश्रम में भी व्यक्ति वन प्रदेशों में रहकर आत्मचिंतन एवं जन कल्याण के कार्य करता था और संन्यास आश्रम में तो समग्र उत्तरदायित्व को भावी पीढ़ी को सौंपकर निर्जन वन एवं गिरी कंदराओं में रहकर ही आत्म कल्याण करने का विधान था।

जिस प्रकार राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार संतुलन बनाए रखने हेतु पृथ्वी का 33% भूभाग वनाच्छादित होना चाहिए, ठीक इसी प्रकार प्राचीन काल में जीवन का 1/3 भाग प्राकृतिक संरक्षण के लिए समर्पित था, जिससे कि मानव प्रकृति को भली भांति समझकर उसका समुचित उपयोग कर सके और प्रकृति का संतुलन भी बना रहे। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर पशुओं एवं वृक्षों का अंकन, सम्राटों द्वारा अपने राज चिन्ह के रूप में वृक्षों एवं पशुओं को स्थान देना, गुप्त सम्राटों द्वारा बाज को पूज्य मानना, मार्गों में वृक्ष लगाना, कुएं खुदवाना, दूसरे प्रदेशों से वृक्ष मंगवाना आदि तत्कालीन प्रयास पर्यावरण प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। वैदिक ऋषि प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी, जल, औषधि एवं वनस्पतियां हमारे लिए शांतिप्रद हों, और ये शांतिप्रद तभी हो सकते हैं जब हम इनका सभी स्तरों पर संरक्षण करें। तभी भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण की इस विराट अवधारणा की सार्थक

जीव अपने पर्यावरण में निवास करता है जो अपने ही पर्यावरण का एक हिस्सा होता है। पर्यावरण में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से वो बहुत प्रभावित होता है, इसलिए जरूरी है कि हमारा पर्यावरण साफ सुथरा रहे, पर्यावरण में किसी प्रकार का असंतुलन न उत्पन्न हो जाए। दुर्भाग्यवश कई कारणों से वर्तमान समय में हमारे पर्यावरण में असंतुलन आ गया है। जल, वायु, मिट्टी, वन जैसे प्राकृतिक तत्व प्रदूषित हो रहे हैं। इसका परिणाम है जलवायु में परिवर्तन, जैव विविधता के लिए संकट, बाढ़, सूखा एवं स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं।

मानव अपनी व्युत्पत्ति से लेकर आज तक प्रकृति पर एकाधिकार करने में प्रयासरत है। विज्ञान ने इसमें बहुत सहारा दिया है। वैज्ञानिकों ने काफी चमत्कारी का आविष्कार भी किए हैं, परंतु मानव ने उनका सदुपयोग कम दुरुपयोग ज्यादा किया है। वो प्राकृतिक पर्यावरण को भूल गया है, जिसके परिणाम स्वरूप जल थल नभ पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। वो अपने ही कारनामों से अनेक समस्याओं और बीमारियों को न्योता दे चुका है। प्रकृति पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की जैव विविधता से परिपूर्ण है। मानव के लिए इसे समझना तो दूर रहा, वो इसे पहचान भी नहीं पा रहा है। पशु पक्षी

लकड़ी के लिए काटे गए पेड़ों से जंगल समाप्त हो रहे हैं और जंगलों के समाप्त होने से इसमें रहने वाले जीवों पर संकट छाता जा रहा है। जीवों की कुछ जातियां तो विलुप्त हो गई हैं और कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं। आजकल गांवों में शेर और चीतों के घुसने और वहां रहने वाले मनुष्यों को हानि पहुंचाने की खबरें अखबारों में आम बात है, परंतु गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद इसलिए कि हमने इन प्राणियों से इनका घर छीन लिया है और अब ये प्राणी मजबूर हैं गांवों और शहरों की ओर जाने के लिए और अपने जीवन यापन के लिए मनुष्यों को हानि पहुंचा

पर्यावरण पर हो रहे अत्याचार पर किसी कवि ने अपने उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए हैं। पेड़ काटने वाले काट गए, क्या सोचा था एक पल को, वो किसी परिंदे का घर उजाड़ गए, क्या सोचा था एक पल को, वो धरती की मजबूत पकड़ उखाड़ गए, कितने ही एकड़ को वो बंजर बना गए, मौसम का मंजर एक पल में हिला गए, क्या सोचा था एक पल को।

पर्यावरण प्रदूषण की इस समस्या पर सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम स्वीडन में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 119 देशों ने भाग लिया और पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जन्म हुआ और प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित करके नागरिकों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराने का निर्णय लिया गया।

19 नवंबर सन 1986 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तदनुसार जल, वायु और भूमि इन तीनों से संबंधित कारक एवं मानव, पौधों, सूक्ष्म जीव व अन्य जीव पदार्थ आदि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं: पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाना, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना, पर्यावरण की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत राज्य सरकारों, अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य में समन्वय स्थापित करना, ऐसे क्षेत्रों का परिसीमन करना जहां किसी भी उद्योग की स्थापना अथवा औद्योगिक गतिविधियां संचालित न की जा सकें आदि आदि। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान भी है। सबसे जरूरी बात यह है कि आज हर मनुष्य को अपने स्तर पर पर्यावरण को संतुलित रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या से मुक्त होना किसी एक समूह के बस की बात नहीं है। आवश्यकता है हमें अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने की और अपने चारों ओर की आबो हवा को शुद्ध रखने की। इस समस्या पर काबू किसी नियम या कानून को लागू करके नहीं पाया जा सकता। अगर हर कोई इसके दुष्परिणाम के बारे में सोचे और अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचे तो इस गंभीर समस्या से निजात संभव है।

अभी आप सुन रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में विशेष रूपकात्मक कार्यक्रम भारतीय चिंतन में पर्यावरण संरक्षण। शोध आलेख और स्वर थे अरविंद।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: युवा साथियों, अब दीजिए इजाजत आज के इस युवाणी के अंक को संपन्न करने की। नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम युवाणी FM 102.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद

0: पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 6:15 पर किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे मृदुल पांडे, जिसमें आज चर्चा विश्व पर्यावरण दिवस पर, साथ ही कृषि में युवाओं की भूमिका, इस विषय पर रहेगी आज की बात। सुनेंगे आप वार्ता बाजरा ज्वार मक्का में उन्नत प्रजातियां तथा बुवाई, इस पर वार्ताकार होंगे डॉक्टर खजान सिंह। साथ ही आप सुनेंगे भेंट वार्ता खारे पानी के साथ फसल प्रबंधन, इस विषय पर आज के विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर वाई के शर्मा और आपसे बातचीत करेंगे दीपक गोस्वामी

भक्ति पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन सुना जा सकेगा संध्या 6:45 पर। संध्या 7:05 पर आप सुनेंगे ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अजय कुमार शर्मा संतोष से ब्रजनव कथा भली बनी बतासो प्रधान। संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहाने। जी हाँ, आप भी सुन सकेंगे अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा, करेंगे हमें व्हाट्सएप। हमारा नंबर होगा 94-122-25-575। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर, ये कार्यक्रम सुनेंगे आप। समय रात्रि 8 बजे। श्रोता सुनेंगे अपनी फरमाइश के फिल्मी नगमे एक बार फिर से कार्यक्रम नवरंग में रात्रि 9:15 पर। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे डॉक्टर चंद्रकिशोर पाठक का लिखा रूपक ब्रज संस्कृति और पर्यावरण, प्रस्तुति श्री कृष्ण शरद की रहेगी। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अजीत सिंह पेंटल का ख्याल बागान। जी हाँ, अजीत सिंह पेंटल का ख्याल गायन जो राग भाग्यश्री में निबद्ध रहेगा, और तबले पर संगत करेंगे आपके साथ तोताराम शर्मा, सारंगी पर हरिबाबू कौशिक।

अभी आप सुन रहे थे हमारी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। लापता व्यक्ति, जी हाँ, ये महिला है, नाम रवीना, उम्र 25 वर्ष, कद 5 फुट इंची है, रंग गोरा, बालों का रंग काला है। ये 5 मई से सहार थाना बरसाना क्षेत्र से लापता है। इन्होंने तोतई कलर का सूट पहना हुआ है और आंखों का रंग काला है। शरीर की बनावट सामान्य है। लापता व्यक्ति का नाम राधा, इनके पति बैनो, आयु इनकी 20 वर्ष, कद 5 फुट 4 इंच, बालों का रंग काला, रंग गोरा, शरीर की बनावट सामान्य, आंखों का रंग काला। इन्होंने कॉफी कलर का सूट पहना हुआ है, जो भगवती कॉलोनी थाना रिफाइनरी से लापता हैं। इनके संबंध में जानकारी होने पर कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा में सूचित करें। लापता व्यक्ति का नाम मोहित पुरी, इनकी उम्र 48 वर्ष, कद 5 फुट 8 इंच, बालों का रंग सफेद, शरीर की बनावट सामान्य, रंग गोरा। ये 5 मई 2026 से लापता हैं। इन्होंने गुलाबी टी शर्ट और नीली जीन्स पहनी हुई है। ये मोतीकुंज थाना हाईवे से लापता हैं। इनके मिलने पर कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा में सूचित करें। लापता व्यक्ति का नाम सोनू, उम्र 48 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, बालों का रंग काला, रंग गेहुआ, शरीर की बनावट सामान्य। ये दाढ़ी रखते हैं। इन्होंने लोअर टी शर्ट पहनी हुई है, जो कृष्णापुरी थाना सदर बाजार जिला मथुरा से लापता है। इनके मिलने पर कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा में सूचित करें। लापता व्यक्ति सुषमा, उम्र 34 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, बालों का रंग काला, रंग गेहुआ, शरीर की बनावट ये कह रही। इन्होंने सूट सलवार पहना हुआ है, जो आजनौक थाना बरसाना जिला मथुरा से लापता है। कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा में इस संबंध में इनके मिलने पर सूचित करें। आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में देशगान, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण।

सब भैयान को हमारी राम राम। भैया आज है विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में जी आज के दिना 5 जून को मनाया जाए है। वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाए को जाए मनाए की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने करी हती। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनायो गयो। तभी थे जी समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, टिकाऊ विकास और वन्य जीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दान पे जागरूकता बढ़ावे को एक मंच रहो है। भैया कबो गर्मीन की पहचान आम के बौर, कुआन के पानी और मानसून के इंतजार ते हो गई दोपहरी तपती ही, लेकिन मौसम को अपनो एक स्वभाव और लय हो करे ही। आज वही गर्मी, हीटवेव, जल संकट और मौसम की अनिश्चितता की खबरन के संग आवे है। शहरन में तापमान के नए रिकॉर्ड की खबर आवे है। गामन में जल स्रोत सिकुड़वे लगे हैं। कबू आवे वाली बाढ़, कबू लंबे सूखे तो कबू असामान्य गर्मी की लहर जी याद दिलावे है कि पर्यावरण को संकट कोई दूर को खतरा ना है, बल्कि हमारे वर्तमान की आवश्यकता है। भैया पर्यावरण हमारे जीवन को वो व्यापक तंत्र है जहाँ में हवा, पानी, मिट्टी, नदियाँ, जैव विविधता और जलवायु सब शामिल है। जाही तंत्र पे हमारी खेती, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और भविष्य

0: निर्भर करे है। भैया आज जाके संरक्षण की आवश्यकता है। प्रदूषण को कम करके, वन कटाई को रोक के और पर्यावरण के अनुकूल आदतन को अपनाए के पृथ्वी पे जीवन के संतुलन को बनाए रखो जा सके है। भैया जावाद के बाद अब भैयान को एक ओवी आधारित जानकारी दवा रहे हैं, खारे पानी के साथ फसल प्रबंधन, जहाँ में वाई के शर्मा ते बातचीत कर रहे हैं दीपक गोस्वामी। भैया सुनो।
1: मैं प्रभारी डॉक्टर वाई के शर्मा जी हमारे साथ हैं और डॉक्टर साहब नमस्कार। हम आपसे आज जो जानने के लिए उत्सुक हैं वो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि मथुरा जनपद में एक बहुत बड़ी मुख्य समस्या है खारे पानी की। लगभग सारे किसान इससे परेशान रहते हैं, तो इस खारे पानी की समस्या से जो हमारे किसान पीड़ित हैं वो अपनी खेती की तैयारी कर रहे हैं अगले फसल के लिए, उनके लिए किन किन विशेष चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी उनको रखनी चाहिए जिससे कि उनकी खेती अच्छी हो सके, इस विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे।
2: देखो, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। मथुरा जनपद की जो विशेषता है उसमें प्रमुख विशेषताओं में कृषि के क्षेत्र के माध्यम से या कृषि के आधार पर देखे तो यहाँ का जो जल है जो खेती में उपयोग किया जाता है उसकी गुणवत्ता जो है सांद्रता वाली यानी सेलिनिटी वाली है या उसमें आपके नमकीन है या लवण युक्त है। तो सबसे पहली स्थिति तो ये होती है जो आप खारा पानी कह रहे हैं उसमें लवण जो अधिक मात्रा में आ रहा है, लवणों में सोडियम के लवण हैं, मैग्नीशियम के लवण हैं, इसका अगर वो कहीं टेस्ट करा ले हमारे किसान भाई तो उसको सुधारने में थोड़ी सहूलियत मिलती है। लेकिन अभी मजबूरी है क्योंकि हमारे जनपद का लगभग 3/4 से ज्यादा हिस्सा ऐसा है जहां खारा ही पानी है और किसानों को उसी के साथ खेती करनी पड़ती है। और मैं बधाई देना चाहूंगा अपने जनपद के किसान भाइयों को कि इतनी विषम परिस्थितियों में के बावजूद भी बहुत अच्छी खेती करते हैं। लेकिन अगर किसान भाई कुछ सावधानियां बरत लेंगे तो उनको जो है आगे चल के और सुविधा रहेगी, वरना कालांतर में पानी धीरे धीरे बढ़ते हुए और खारे हो जाएंगे और जमीन भी जो है खारयुक्त होना शुरू हो जाएंगी। तो अभी जैसे किसान भाइयों के पास समय है, गर्मियों में क्योंकि उन्होंने खारा पानी अपनी जमीनों में लगाया है तो जो लवण गए हैं उस समय अधिक गर्मी के कारण वो उनके ऊपर आ गए होंगे मृदा के, तो मृदा के ऊपर आने से उसे रोकने के लिए 2-3 उपाय होते हैं। एक तो सबसे सरल उपाय जो हमारे पूर्वज करते रहे थे, सभी किसान भाइयों को सलाह है कि मिट्टी पलटने वाले हल से अपने खेतों की जुताई करके डाल दें, पहला काम। दूसरा काम है कि अगर उनके पास पानी की उपलब्धता हो, नहर पास में हो, ट्यूबवेल हो, कुछ संसाधन हो या जैसे ही बारिश आने को हो तो किसी न किसी हरी खाद का उपयोग उसमें अवश्य करें। और सर्वोत्तम रहती है आपकी खारी जमीन को खारे पानी के इफेक्ट को या प्रभाव को कम करने में ढेंचा की फसल या सनई की फसल, क्योंकि ढेंचा की जो जड़ होती है वो मूसला जड़ होती है तो उसकी गहराई थोड़ा अधिक तक जाती है तो वो पोरोसिटी बढ़ाती है उस मृदा की, उससे हवा का उसमें आवागमन बढ़ जाता है। दूसरा जो उसका पीएच होता है यानी जो उसका स्वाद होता है कहना चाहे तो वो खट्टा होता है, उसका 4 से 4.5 के बीच में पीएच मान होता है पत्ती का, वो पत्तियां उसमें झड़ती हैं और जब कमर के बराबर हो जाए तो उसको उसमें इनकॉर्पोरेट कर दें यानी मिला दें, तो जमीन में जो लवण बढ़ गए हैं वो उनको जो है कम कर देगी उसके प्रभाव को और आप अपनी फसल कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में अगर आप नहीं कर सकते तो गोबर की खाद का प्रचुर मात्रा में जितनी भी उपलब्ध हो, वैसे तो जो है कम से कम 4 से 5 टन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जितनी आपके पास उपलब्ध हो आप उसका उपयोग करें तो खारापन कम होगा। इसके साथ साथ उन प्रजातियों का चुनाव करें जो खारे पानी में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसके साथ साथ ऐसी प्रजातियों के साथ साथ ऐसी फसलों का भी चुनाव करें जो खारे पानी में बहुत उपयोगी होती हैं। और अगर केमिकल्स का प्रयोग करना चाहते हैं तो किसान भाई आप सभी लोग जानते हैं जिप्सम एक हमारा ऐसा रसायन है जिसका प्रयोग करोगे तो आपका खारापन जमीन में कम होने लगेगा।

0: जीआर वैल्यू यानी जिप्सम रिक्वायरमेंट जो वैल्यू होती है वो आपके लवण की सांद्रता के आधार पर तय की जाती है। सामान्य तौर पे जितना एक टायर होता है साइकिल का, उसके लिए 5 किलोग्राम जिप्सम उस टायर के बराबर हिस्से के लिए आवश्यकता पड़ती है ठीक करने के लिए। ये सरल उपाय है लेकिन इसके इनकॉर्पोरेट करने में समय लगता है, और अगर ज्यादा सुधार की आवश्यकता है तो आप इस रेशो के हिसाब से, इस अनुपात के हिसाब से जिप्सम को प्रयोग करने के लिए पहले अपने खेत की परयूर मेड़बंदी करें, उसमें पानी भर दें, ऊपर से जिप्सम ऐड कर दें और 8 दिन तक इस प्रक्रिया को ऐसे ही रख दें, क्योंकि पानी की भी पोरोसिटी, जब खेत में आपका लवण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी जो पोरोसिटी है या उसका परकोलेशन रेट है वो बहुत स्लो हो जाता है, धीरे धीरे जाता है। तो ये आपके धुलाई का काम करेगा, साबुन का काम करेगा, 4-5 दिन उसे भरा रहने दें। पानी आपका जो है बिल्कुल लाल सा हो जाएगा, गंदा सा हो जाएगा, वो साइड नाली से निकाल के किसी नहर आदि में मिला दें तो पानी बहता हुआ चला जाएगा, आपके खेत का सुधार हो जाएगा। प्रथम कदाप इसमें अगर ऐसी स्थिति से आपको गुजरना है तो पहली फसल इसमें ढेंचा के बाद आप धान की लगाइएगा, और धान को काटने के बाद आप जो है इसमें जौ की खेती कीजिएगा, जिससे लवण को सहने की उसमें क्षमता है और इस समय उत्पादन अच्छा देने वाली प्रजातियां भी उपलब्ध है, और जौ का रेट आज के समय में गेहूं से अधिक है। तो किसान भाई जिनके पास अच्छी जमीनें नहीं है, पानी की जिस तरह का आपने प्रश्न पूछा, अच्छा पानी नहीं है, उसको सुधारने के लिए ये अच्छा है कि आप ऐसी फसल का चुनाव करें। तीसरी बात यह है कि अगर आपको यही फसल में पानी लगाना होता है तो जिप्सम के अगर बैग आपको कहीं मिल जाते हैं तो जहां आपका पानी का सोर्स हो, जहां प्रथम बार पानी गिरता हो, जैसे ट्यूबवेल से हौदी में पानी गिरेगा, वहां आप अपने जिप्सम के बैग लगा दें तो पानी जिप्सम के बैग से छन छन के जाने लगेगा, तो पानी जो है आपका कुछ माइल्ड हो जाएगा, उसकी जो सांद्रता है खराब वो कम हो जाएगी। इमली के कोयला आता है, अगर आपको उपलब्ध हो तो इमली का कोयले के बैग्स में भर करके आप अपनी मेड़ों के बीच में लगा दीजिए, जिससे पानी जाएगा वो छन के जाएगा। ये कुछ इस तरह का दूसरा कंजक्टिव यूज होता है, अगर आपके पास खारा पानी और कहीं से आपके पास मीठे पानी की व्यवस्था हो जाए तो दोनों पानी को मिला के लगाने से भी आपका जो खारा पानी है उसका प्रभाव कम हो जाता है और आप अपना लगा सकते हैं। तीसरा यह है कि आप ऐसी फसलों का चुनाव ही कीजिएगा जिसमें पानी लगाने की आवश्यकता कम से कम पड़े। जैसे अभी हमने आपको जौ का उदाहरण दिया, ऐसे ही जो है आप सरसों लगा सकते हैं। सरसों में पानी बहुत कम लगता है, 1 पानी या अधिकतम 2 पानी लगाने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से आप 1-2 वर्ष तक जो खेती करेंगे तो आपकी खेती में भी सुधार होगा, आपकी पानी की गुणवत्ता भी सुधरेगी और आप अच्छी खेती कर पाएंगे।
1: डॉक्टर साहब आपने जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खारे पानी के साथ फसल प्रबंधन, भैया जा विषय पे ओबी आधारित जानकारी ले रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वाई के शर्मा और इनसे बातचीत कर रहे हैं दीपक गोस्वामी। भैया कृषि क्षेत्र में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे अपनी नई ऊर्जा, नवाचारी सोच और आधुनिक तकनीकी ज्ञान के माध्यम से कृषि को एक लाभदायक व्यवसाय में बदल रहे हैं। युवा पीढ़ी जैविक खेती, कृषि स्टार्टअप और उन्नत तकनीक के प्रयोग से उत्पादन क्षमता को कई गुणों बढ़ा रही है। भैया कृषि के आधुनिकीकरण में युवाओं को बहुत बड़ा योगदान है। युवा किसान मिट्टी की जांच, ड्रोन तकनीक और सटीक सिंचाई को प्रयोग कर पानी और संसाधन की बचत कर रहे हैं। युवा केवल खेती तक सीमित ना है, वे कृषि व्यवसाय और एग्रीटेक स्टार्टअप्स के माध्यम से सप्लाई चेन, पैकेजिंग और मार्केटिंग में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। सरकार द्वारा युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने को कई योजनाएं जैसे एग्री क्लिनिक और राष्ट्रीय पशुधन मिशन चलाई जा रही है, जिनको युवा लाभ उठा रहे हैं। भैया बदलते परिवेश में युवा सुरक्षित और रसायन मुक्त खाद्यान्न के उत्पादन पर जोर दे रहे हैं। जाते रहते कृषि क्षेत्र में युवाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। भैया कार्यक्रम में

0: एक जानकारी और दबा रहे हैं। बाजरा, ज्वार, मक्का में उन्नत प्रजातियों तथा बुवाई विषय पे तो जी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर खजान सिंह भैया, सुनो।
1: खरीफ फसलों में मक्का, ज्वार व बाजरा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गत वर्ष 2016-17 में आपकी मेहनत, सरकार की कृषि कल्याणकारी योजनाओं एवं अच्छा मानसून के चलते मक्का, ज्वार, बाजरा जैसे मोटे दाने वाली फसलों के साथ साथ कुल खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया। फसल उत्पादन में सभी आदानों के योगदान को देखें तो उन्नत किस्म का बीज बोने से 15-20% उपज में इजाफा होता है। मक्का की खेती निश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में की जा सकती है। मक्का की देर से पकने वाली किस्मों में शंकर गंगा

कृषि कल्याणकारी योजनाओं एवं अच्छा मानसून के चलते मक्का, ज्वार, बाजरा जैसे मोटे दाने वाली फसलों के साथ साथ कुल खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया। फसल उत्पादन में सभी आदानों के योगदान को देखें तो उन्नत किस्म का बीज बोने से 15 से 20% उपज में इजाफा होता है। मक्का की खेती निश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में की जा सकती है। मक्का की देर से पकने वाली किस्मों में शंकर गंगा 11 के दाने कठोर पीले नारंगी रंग के 95 से 115 दिन में पककर 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। सिंचित व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए यह उपयुक्त किस्म है। माही धवल सफ़ेद कठोर दानों वाली संकुल किस्म 95 से 100 दिन में पककर 36 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। सिंचित व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। बायो 9681 एकल संकरण द्वारा विकसित पीले दानों वाली किस्म, इसके पौधे की ऊंचाई 175 से 185 सेंटीमीटर होती है। 95 से 100 दिनों में पककर 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। HQPM5 उच्च गुणवत्ता प्रोटीन वाली मक्का एकल संकरण द्वारा विकसित किस्म का दाना नारंगी व गोल होता है। इसमें प्रोटीन 9.8% तथा आवश्यक अमीनो एसिड लाइसिन एवं ट्रिप्टोफैन संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। यह मध्यम देरी से पकने वाली संकर किस्म है। 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। प्रताप मक्का 9 पीले रंग की संकुल किस्म 2016 में नोटिफाइड 81 से 87 दिन में पककर 45 से 47 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। यह बारानी खेती के लिए उपयुक्त किस्म है। प्रताप हाइब्रिड मक्का 3 पीले दाने वाली किस्म 84 से 88 दिन में पककर 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। फसल कटाई के समय चारा हरा बना रहता है। माही कंचल पीले मोटे दानों वाली किस्म 75 से 80 दिन में पककर 32 से 38 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। कम अवधि में पकने के कारण कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी किस्म है। माधुरी संकुल किस्म मीठे दानों वाली है। इसकी काश्त हरे भुट्टे बाजार में बेचने के लिए की जाती है। इसके भुट्टे 55 से 60 दिन में तोड़े जाते हैं। शहरी क्षेत्रों के आसपास भुट्टे के रूप में बेचने हेतु यह उपयुक्त किस्म है। प्रताप कंचन 2 शीघ्र पकने वाली पीले दाने की संकुल किस्म है। बारानी क्षेत्र में बुवाई के लिए उपयुक्त अच्छी उपज देती है। प्रताप मक्का चरी 6 चारे के लिए विकसित किस्म ऊंचाई 220 से 225 सेंटीमीटर 58 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। 350 से 400 क्विंटल हरा चारा तथा 73 से 88 क्विंटल सूखा चारा प्राप्त होता है। PEHM1 एकल संकर किस्म 80 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके दाने मोटे तथा आकर्षक पीले रंग के होते हैं। पौधों की ऊंचाई 185 से 220 सेंटीमीटर तक होती है। तना छेदक के लिए प्रतिरोधी है। इसकी औसत उपज 45 क्विंटल प्रति हेक्टर तक होती है। PEHM2 यह संकर किस्म 80 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके दाने मोटे आकर्षक तथा नारंगी रंग के होते हैं। तना मजबूत भुट्टा लंबा तथा पौधा आकर्षक होता है। सामान्य परिस्थितियों में 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। यह प्रमुख बीमारियों तथा कीटों के लिए प्रतिरोधक है और भूमि में नमी की कमी के लिए सहिष्णु है। मक्का की खेती के लिए खेत के चुनाव के समय जल निकास की व्यवस्था का ध्यान रखें। रेतीली दोमट से चिकनी मिट्टी तक में मक्का की खेती की जा सकती है। भूमि लवणीयता या क्षारीयता से ग्रस्त नहीं होनी चाहिए। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, बाद में कल्टीवेटर से जुताई कर खेत तैयार करें। बुवाई के 20 दिन पूर्व 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर खेत में डालकर मिलाएं। बीज अंकुरण के लिए भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। 3 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार कर बीज बोएं। डाउनी मिल्ड्यू के प्रकोप वाले क्षेत्रों में बीज को रीडोमिल MZ या एप्रॉन 35 SD कवकनाशी से 4 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बुवाई करें। बीज को एजोटोबैक्टर व PSV कल्चर से उपचारित करना लाभदायक रहता है। 20 से

0: 25 किलो प्रति हेक्टेयर मक्का का प्रमाणित बीज बोएं। बुवाई जून के अंत या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक करें। बुवाई सीड ड्रिल द्वारा कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हुए करें। बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा न रखें, इससे अंकुरण में सरलता रहती है और उर्वरक एवं बीजों के संपर्क भी नहीं होता है। पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर 66,000 के लगभग रखें। उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण परिणाम के अनुसार करें। इसके अभाव में सिंचित फसल में 60 से 90 किलो नत्रजन एवं 30 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर देवें। एक तिहाई नत्रजन एवं पूर्ण फास्फोरस बुआई से पूर्व ऊर कर देवें। नत्रजन की शेष मात्रा दो बार में अर्थात दूसरी मात्रा बुआई के 30 दिन बाद तथा तीसरी मात्रा मांजरे निकलने से पूर्व अच्छी तरह से मिट्टी में मिलाकर जड़ों पर मिट्टी चढ़ा देवें। असिंचित क्षेत्रों में 30 से 45 किलो नत्रजन एवं 15 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर देवें। नत्रजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय कतारों में 10 से 15 सेंटीमीटर गहरा ऊर कर देवें। शेष आधी नत्रजन की मात्रा खड़ी फसल में मांजरे निकलने के पूर्व वर्षा को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह मिट्टी मिलाकर जड़ों पर मिट्टी चढ़ाएं। मिट्टी परीक्षण के आधार पर पोटाश देवें। यदि जिंक की कमी हो तो 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर बुवाई के समय उर्वरक के साथ डालें। जस्ते की कमी के कारण मक्के की पुरानी पत्तियों की सिराओं के बीच में पीली या सफ़ेद धारियां नज़र आती हैं। अधिक कमी होने पर मुख्य सिरा एवं पत्तियों के मध्य पीले या पूर्ण रूप से सफ़ेद धब्बे नज़र आते हैं। अत्यधिक कमी की अवस्था में सफ़ेद कलिका रोग के नाम से बीमारी जानी जाती है, जिसमें नवीन पत्तियां सफ़ेद या पीली हो जाती हैं। ज्वार की खेती दाने के लिए अथवा चारे के लिए की जाती है। ज्वार की उन्नत किस्मों में CSH9 105 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म के पौधे 180 से 190 सेंटीमीटर ऊंचे एवं दाने की उपज 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म साधारणतया हेड मोल्ड रोग व माइट्स के लिए प्रतिरोधी है। CSV17 किस्म कम समय में 85 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। कम समय में पकने के कारण सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए यह उपयुक्त है। पौधों की ऊंचाई 140 से 150 सेंटीमीटर व उपज 25 से 30 क्विंटल दाना व 55 से 60 क्विंटल सूखा चारा प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। यह किस्म तना मक्खी, तना छेदक व शीर्ष मक्खी कीटों के प्रति सहनशील तथा एंथ्रेक्नोज, पत्ती झुलसा, भूरा पत्ती धब्बा, अंगमारी रोगों के लिए प्रतिरोधी व जोनेट पत्ती धब्बा के लिए अधिक प्रतिरोधी है। प्रताप ज्वार 1430 द्वे उद्देश्य किस्म सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अनुमोदित, 90 से 95 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। पौधे की ऊंचाई 180 से 200 सेंटीमीटर व उपज 30 से 35 क्विंटल दाना तथा 100 से 115 क्विंटल चारा प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। तना छेदक व शीर्ष सिट्टा मक्खी के प्रति सहनशील किस्म है। प्रताप चरी 1080 एक कटाई वाली चारे के लिए उपयुक्त किस्म, 60 से 65 दिन में कटाई के लिए तैयार होकर 350 से 400 क्विंटल हरा चारा प्राप्त होता है। 125 से 135 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सूखा चारा प्राप्त हो सकता है। चारा उच्च गुणवत्ता वाला जिसमें 6.8% प्रोटीन तथा पचने योग्य शुष्क पदार्थ 54.8% होता है। CSV23 द्वे उद्देश्य किस्म 110 से 115 दिन में पककर 25 से 30 क्विंटल दाना एवं 150 से 160 क्विंटल चारा प्राप्त होता है। पौधे की ऊंचाई 215 से 225 सेंटीमीटर होती है तथा तना मक्खी, तना छेदक एवं पत्ती रोगों के लिए प्रतिरोधक किस्म है। SPH 837 द्वे उद्देश्य संकर किस्म 85 से 90 दिन में पकने वाली अगेती किस्म है। यह कम एवं मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसके पौधे की ऊंचाई 190 से 200 सेंटीमीटर तथा दाने की पैदावार 35 से 40 क्विंटल एवं चारे की पैदावार 100 से 110 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
1: बाजरा, ज्वार, मक्का में उन्नत प्रजातियां तथा बुवाई।

0: भैया ले रहे हैं जा विषय पे जानकारी और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर खजान सिंह भैया। जा समय ब्रज परिक्रमा चल रही है तो हमू अपने कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं जी एक लोकगीत सरस कौल और सखियन के स्वर में
1: एमपी चरी।

सरस कौल और सखियन के स्वर में भैयान ने अभी सुनो जी लोक गीत। अब जानकारी मौसम की। भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के कारण स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश, गरज और बिजली गिरवे के संग तेज हवाएं चलने की संभावना है। किसान भैयान को सलाह दी जाए है कि वे खड़ी फसल में सिंचाई को कार्य स्थगित रखें, कीटनाशक, फफूंदनाशक तथा खरपतवारन को छिड़काव हवा शांत हैवे पे, आसमान साफ हैवे पे ही करें। तो भैया जी ही जानकारी मौसम की और जाई के संग समापन करें हैं आज के जा कार्यक्रम को। सब भैयान को हमारी राम राम।

अभी किसान भाई और बहनें सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे मृदुल पांडे। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। कार्यक्रम का ये गीत फिल्म केदारनाथ से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म केदारनाथ से ये गीत सुमेधा कर्माहे और साथियों को, और आइए सुनते हैं दुर्गा माँ फिल्म से ये गीत, आवाज़ें इस गीत में हेमलता और साथियों की।

0: अभी आप सुन रहे थे अदनान सामी को फिल्म बजरंगी भाईजान में, और इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। अजय कुमार शर्मा संतोष से सुनिए ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज नवकथा बली बनी बतासु प्रधान।
1: गांव नगरिया में पिछले 2-3 दिनांते दाऊजी के मेला में जैसे चहल पहल रौनक होवे है, वैसे ही कछु रौनक है रही ही। तंबू लग रहे है लाउड स्पीकरन पे, पहले तो हलो हलो और फिर भूसा बिका लाए दो मलटकन, और न जाने कौन कौन से रसिया बज रहे है। बीच में नए छोरा छपारे अपनी पसंद के फिल्मी गीतन को बजवाए रहे है। बहुत ही जबरदस्त पंडाल की एक लंग स्टेज सज रही है। सुनने में आ रही बतासु को गांव के प्रधान बने 1 साल पूरी है गई है। वाने जो गांव के विकास के काजे काम किए हैं उनके लिए एक मंत्री जी गांव में पधारे।

हर रहे हैं बाकी पीटन को थपथपावे के काजे। गांव नगरिया अच्छे विकास के काम के काजे पूरे प्रदेश में अव्वल नंबर पे जो आयो है, जाके लिए गांव पंचायत नगरिया को पुरस्कार राशि मिलनी है व पुरस्कार राशि के चेक को देवे के काजे मंत्री जी आए रहे हैं। आज आयोजन को दिन आयो गयो, स्टेज पे मंत्री जी पधार चुके हैं। उनके बगल में एक लंग बतासु प्रधान ही तो दूसरी लंग प्रधान प्रतिनिधि उनके पति हरिया बैठे। गांव के आसपास के लोग जब इकट्ठे है गए, जब लोगों की भीड़ इकट्ठी है रही, वही समय बतासु प्रधान ने गांव के विकास के कामन की फहरिस्त मंत्री जी को थमाई देनी। मंच को संचालन राम सेवक हेतराम ने सवन से आशीर्वाद लेवत हुए जैसे ही आरंभ कीनो तो जो अभी तक लोगन की आवाजन ते कान फटे जा रहे एकदम सन्नाटो छाएगो। हेतराम ने गांव की प्रधान बतासु को मंत्री जी के स्वागत में दो शब्द कहवे के काजे बुलायो। ग्राम प्रधान बतासु घूंघट काट वही माइक पे आई और सबसे पहले गांव के सब बड़े बूढ़ेन को हाथ जोड़ कर राम राम सा कर फिर बोली, हमारी मंत्री जी ने गांव में पधार के जो हिम्मत बढ़ाई है, बाकी काजे में अपने गांव के आसपास के गांवन के जो हमारे पंचायत से जुड़े हुए हैं कि सब लोगों को और मंत्री जी को आभार प्रकट करूँ हूँ। जहाँ तक गांव विकास के गांव की बात है, बाकी फहरिस्त मैंने मंत्री जी को दे दी है, वो आपको बताए देंगे। और फिर एक बार हाथ जोड़ते हुए राम राम सा कह के अपनी कुर्सी पे आए के बैठ गई। बतासु प्रधान को यह पहला अवसर मिला हो जब काऊ मंत्री जी के मंच पे हैवी पे बोली तो आते ही अपनी कुर्सी पे ऐसी हड़बड़ाहट में एक गिलास पानी जल्दी से जल्दी गटक गई। अब बारी मंत्री जी की माइक संभालने पे आई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ भय मंच के चारों लंग निगाह फैलावत भय सबको अभिवादन कीनो फिर बोलनो शुरू कीनो, बोले मैंने गांव की विकास की फहरिस्त देखी है तो दंग रह गयो। इतनो विकास तो मैं जब अपने गांव को प्रधान हो बात समय न कर पायो, पर बाकी वजह जेना आई मैं गांव कामना करनो चाहवत हूँ। बाकी वजह ही सरकार को वांछित सहयोग न मिल पातो, पर अब ऐसी बात ना है, अब हर सरकार को गांव के विकास पर पूरा ध्यान हुए है। जाकि एकमात्र वजह ये हुआ है कि गांव के विकास से देश की विकास की राह चले है। गांव मजबूत देश मजबूत, गांव कमजोर देश कमजोर। अब वो देश की ज़्यादातर आबादी गांव में ही रह हुए है। मंत्री जी को कहनो पंडाल तालीन की गड़गड़ाहट से गूंज उठ्यो। अब आई बारी फहरिस्त पर निगाह डारवे की। गाँव में शौचालय को निर्माण भयो है, गलीन में खरंजा बने हैं, गांव की महिलाओं के काजे खाली समय को लाभ आमदनी में उठाए सकें, कुटीर उद्योगों को संचालन भयो है, घर घर में मीठ और पानी पाइपलाइन से उपलब्ध कराया गया है, गली गली में प्रकाश की व्यवस्था की नहीं गई है। काम औरू भय हैं, पर इतनी सभी लिस्ट है कि बाकी ऊपर चर्चा करनो बड़ो मुश्किल काम है। प्रधान बतासु बधाई की पात्र हैं गाँव की विकास की गंगा बहावे के काजे। अनुशंसा में गांव के विकास की शासन सो एक राशि को चेक उपलब्ध कराया गया है, जाकू मैं प्रधान महोदय को देवूं। जैसे ही प्रधान बतासु को चेक मंत्री जी ने दियो, खुशी से पंडाल में लोग झूम उठे। तभी एक बूढ़ी अम्मा चीखत वही बोली, मेरी बात सुनो। अम्मा की आवाज़ को सुनकर मंत्री जी ने मंच पर बुलाया, बोले कछु कहनो है। अम्मा गर्दन हलावत वही बोली, हाँ। मंत्री जी माइक पे आए के बोले, सब लोगों ते आग्रह है अम्मा की बात को ध्यान ते सुनियो, को हल्ला ना करियो। हमारा देश लोकतंत्र पे चले है, या में सबको अपनी बात रखने को अधिकार है। बात चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, दोनों ही हितकर हुए हैं। हमें अम्मा जी की बात को पूरा तवज्जो देना है। अम्मा जी की माइक दियो और मंत्री जी अपनी कुर्सी पे बैठ गए। अम्मा बुदबुदावत वही बोली, भली बनी बतासु प्रधान, जाने गांव को खूब समारोह है, जाने हर जाति धर्म को पूरा सम्मान दियो है, पर सच बात तो जो मैं महीनन तो कह चाह रही वो कह रही हूँ। जो घरन घरन में शौचालय बने हैं ठीक है, बहन बेटीन की आवरू बचाएवे को अच्छो प्रयास है, पर हम गांव की बैयरवानी बड़ी बूढ़ी जंगल झाड़ू में बैठ के दुख सुख की बतराए लेती, अब बापे तो बिजली गिर गई है। घर में को आए के बात करे तो भाव छोरा छपारे देखत रहे हैं, कहूँ हमारी चुगली तो नहीं कर रही। जब तक वो नहीं चली जाए घर से निकस के, तब तक आसपास मर रावत रहेंगे।

0: अब तुम ही बताओ कब और कहाँ कौन ती बात करके निकासे मन की भड़ास। शहरन में तो लुगाइन की टोलन की टोल मंदिर में बैठ के मन हल्को करले में है बातचीत करके। जहाँ तक कुटीर उद्योगन की बात है तो हमारी बहू बेटी कहें कछु काम करे आओ अपना खर्चा तो निकास ले। दोनों हाथन ने घुमावत वे अम्मा ये कैसो विकास है। और यह कह के मंच से उतरन लगी। जैसे ही उतरन लगी बतासु प्रधान कुर्सी से उठी अम्मा को हाथ थामत वह मंच फैलाई और बोली मेरे गांव की हर बड़ी बूढ़ी माँ है के समान है तो हर बड़े बूढ़े मेरे पिता समान है। जो भावना सो आज मैं अम्मा जी के दर्द सुन के घोषणा कर रही हूँ मोकू आज जो चेक की राशि मिली है बासों गांव में एक भवन बनवाऊंगी जहाँ मैं बैठ के व्यवस्था होगी जहाँ मैं पानी ठंडे पीवे की व्यवस्था होगी कूलरू होगो टीवी होगी और यहाँ मैं बैठ के गांव की बैयरवानी लोग बाग अपने जीए की बात करके मन हल कर सकेंगे। इतनो ही ना गांव के बड़े बूढ़े के काजे बिना काम किए मान दिए देवे की व्यवस्था करूंगी जासे उनको काऊ के आगे अपनो खर्चा के पैसा के काजे हाथ न पसारने पड़े। जब ये सब बातन को प्रधान माइक पे घोषणा कर रही ही अम्मा ने दोनों हाथ उठाए के बतासु प्रधान के मूड पे रख दीने और बोली हमारे देश के सब गांवों में प्रधान हो तो बतासु जैसी जो सगजन के दर्दन को अपनो दर्द समझे है। यह कहते भाई दूसरे ही क्षण अम्मा मंत्री जी लंग बढ़ गई। पास में जाए के बोली धन्य बेटा तेने मोकू बोलवे को मौको दे दिनो जाते मेरो मन को गुबार निकस गयो। अब मेरो जो चैन में है धोती के एक पल्लू ते नम आंखन को पहुंचत वे बोली बुढ़ापो जाने क्यों घुमड़ घुमड़ के रुआवत है।
1: अभी आप सुन रहे थे ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत अजय कुमार शर्मा संतोष से ब्रज नवकथा भली बनी बतासो प्रधान। इसी के साथ आज का ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 8 जून को अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता एवं उपलब्धता। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुशील कुमार, प्रभारी आपातकालीन सेवाएं जिला अस्पताल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135, जी हाँ 2530135 पर फ़ोन करके या मोबाइल नंबर 9412225575 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता एवं उपलब्धता से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता एवं उपलब्धता। श्रोताओं, यदि आप जिला स्तरीय आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर सुशील कुमार, प्रभारी आपातकालीन सेवाएं जिला अस्पताल मथुरा से। ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा 8 जून और समय अपराह्न 1:15 से। सूचना समाप्त हुई।

0: के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम महाभियान का किया आगाज, कहा पौधरोपण और जल संरक्षण कर जनता भी निभाए जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में वायुयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ, कहा वायु प्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक का आज हुआ समापन, अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया बल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बृहद पौधरोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम महाअभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम पौधरोपण महाअभियान 2026 के लोगों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लें।
1: 5 संकल्प हम सबको इस अवसर पर लेने होंगे। एक, हर नागरिक एक पेड़ मां के नाम पर अवश्य लगाएगा, कम से कम एक पेड़, यह हर नागरिक का दायित्व है। दूसरा, पेड़ लगाना ही नहीं उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेना है, हर एक ओर से उसे बचाना है। तीसरा, जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। चौथा संकल्प होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोके, उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें वो करना पड़ेगा। और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना।
0: कार्यक्रम में विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंध परियोजना का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही श्रावस्ती स्थित गुलेरा केन नाला को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विश्व बैंक और प्रदेश सरकार के बीच MOU का हस्तांतरण हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ की कुकरेल रेंज में पौधरोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधि वन की भी स्थापना की। यहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने वायुयुग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। ये पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को

0: हवा देने के लिए की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ने के मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की गई है और बायो इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जब हम गन्ने से बायो प्लास्टिक बनाएंगे तो हमारी निर्भरता विदेशों पर कम होगी और हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनेंगे। साथियों, पीएलए दुनिया के सबसे सस्ते बायो प्लास्टिक में से एक है और जब यह डिस्पोज होगा तो यह कचरा नहीं खाद बनेगा, फर्टिलाइजर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएगा, यानी कि हर तरीके से फायदा ही फायदा, कहीं से कोई नुकसान नहीं।
0: बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्रभूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और आर्द्रभूमि सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री योगी ने कहा कि ये उपलब्धि विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुराहताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट है। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने सुराहताल के रामसर साइट बनने का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की पहचान निवेश और सुरक्षा के माहौल के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आज हर जनपद के समग्र विकास के लिए काम कर रही है।
2: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज समापन हो गया। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत 11 देशों ने हिस्सा लिया। संस्कृति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई ने बताया कि आज बैठक में भारत की मूल्यवान धरोहरों को वापस लाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, विकास और संस्कृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ने को लेकर भी चर्चा की गई।
3: हमेशा यही कोशिश रही है सरकार की और स्पेशली संस्कृति मंत्रालय की कि जो हमारे जो भी स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं या जो स्मगल करके ले गए जाए गए या उसके पहले कॉलोनियल टाइम्स में ले जाए गए उनको कैसे वापस लाया जाए क्योंकि वो हमारी धरोहर, तो उसी के ऊपर चर्चा हुई है और कैसे डेवलपमेंट और कल्चर साथ साथ हो, विरोधाभास ना हो उसमें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज से विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत प्रदेश में भी आज से 21 जून तक जनपदों के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में वृक्षारोपण कर समेकित जन कल्याण और जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कि प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने 5 जून से 21 जून के बीच में कार्यक्रम निर्धारित किया है। आज एक पेड़ माँ के नाम, तो आज यही कहूंगा 12 वर्ष नहीं, इसी तरह 2047 जो उनका सपना है कि 2047 में हमारा विश्व में देश हमारा बहुत आगे रहे, पूरी दुनिया को दिशा दे और आगे बढ़े और गरीबों की सेवा करते रहें।

0: बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पूर्वी जनपदों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का किया आगाज। कहा पौधरोपण और जल संरक्षण कर जनता भी निभाए जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा बायो प्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहताल प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज हुआ समापन। अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया बल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शाम सुहानी। कार्यक्रम में आप भी सुन सकते हैं अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा। करें हमें व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94 122 25 575।

जी हाँ, आप भी सुन सकते हैं अपनी फरमाइश का फिल्मी गीत कार्यक्रम शाम सुहानी में, और जुड़े हैं श्रोता व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे। लेते हैं श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेश, आप जुड़े कार्यक्रम में। सोनाली दुबे, मोनिका तिवारी, रानू मैडम, ये सभी हमें महाकौशल जबलपुर मध्य प्रदेश से संदेश भेजते हैं और आप जुड़े कार्यक्रम में। संदेश के साथ में सागर लखना दौन मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडली जी रिमझिम सक्षम चौबे, और अगले फरमाइश के साथ हैं आप देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय का ये संदेश। कार्यक्रम में जुड़े हैं श्रोता साथी, आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, नाम नहीं लिखा है, आप हैं डॉक्टर के मिश्रा, वेटनरी कॉलेज मथुरा के श्रोता साथी हैं, और मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिला जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजीन परवीन, बिट्टू भैया, सजदा और हिना कौसर का मिला संदेश कार्यक्रम है।

अगले कुछ संदेश और भी आप जुड़े। मोरटका माफी जिला खंडवा से हैं किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और करिका पटेल का संदेश मिला और आप जुड़े कार्यक्रम में। पर जी हाँ, भोपालगढ़ राजस्थान के श्रोता साथी हैं धर्मेंद्र, छिम्पा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार। कार्यक्रम में संदेश के साथ में हैं आप अनवर अजीज नाजा, जी हाँ लिसनर्स ग्रुप मगनपुर से हैं अब्बास आलम, अमजद अली लाडली, बेबी निशा और सभी इनके परिवारी जन। और आइए सुनते हैं शुद्ध साथियों की पसंद पर ये नगमा। इस गीत को लिया फिल्म, जी फिल्म कुर्बानी से ये गीत।

इसे सुनना चाहा श्रोता साथियों ने, कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, श्रोता साथियों की पसंद पर ममता ढींगिया, कुणाल ढींगिया बागपत से संदेश भेजते हैं। आइए सुनते हैं फिल्म कुर्बान से ये नगमा। आवाज़ें इस गीत में विशाल ददलानी की, संगीत सलीम सुलेमान का।

विशाल ददलानी को सुना अभी आपने फिल्म कुर्बान में, और आइए सुनते हैं श्रोता साथियों की पसंद पर अगला गीत। उससे पहले लेते हैं ये व्हाट्सएप संदेश, जुड़े हैं श्रोता साथी व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे।

और जो संदेश के साथ में है आप सिद्धार्थ नगर दरियापुर भावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, सुशील येले, शेरी बडनेर अकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर का संदेश मिला। कार्यक्रम में जुड़े हैं श्रोता साथी बेबी शालिया डाबर, बेबी हलीमा डाबर, बेबी जिक्रा डाबर, आयशा खत्री, बापू कॉलोनी से अब्दुल्ला मस्जिद मध्य प्रदेश के श्रोता साथी हैं। और लेते हैं ये एक संदेश दुर्गा कॉलोनी हंसी से राजू मेघलानी, बबीता सुभाष और बब्बू डब्बू संदेश भेजा इन्होंने। और अगला संदेश के साथ में आप मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला, आरती गौरी, ओम कुमार सुरलकर का ये बहुत सा संदेश। आप जुड़े कार्यक्रम में अपने संदेश के साथ में दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा गांव पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ के श्रोता साथी हैं। और दरियापुर भावली से जाना नीले, नवदीप अशोक येले, श्री बडनेर अकुला से अरुणा दामोदर और आदित्य दामोदर का संदेश मिला। ओम प्रकाश राय, उषा राय, हैप्पी दुबिहा निवाला जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया के श्रोता साथी हैं। दतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र लोकलाल वर्मा का संदेश मिला है। और कार्यक्रम में जुड़े श्रोता साथी व्हाट्सएप संदेश के साथ में भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव और गर्मा शर्मा, मोताला जी हाँ, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, जिन भी श्रोता साथियों का व्हाट्सएप संदेश कार्यक्रम में शामिल हो चुका है दोबारा व्हाट्सएप न करें। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से है पप्पू राजा, खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता आरजू, हसमुख लाल, बुलबुल, संजीव बंटी, ये सभी श्रोता साथी है कार्यक्रम में। और आप भी जुड़े कार्यक्रम में सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तंदी बोट, एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से ये सभी श्रोता साथी हैं। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ भी जुड़े हैं कार्यक्रम में। और सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद और तरुण यादव ने ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ से जेल रोड से हमें संदेश भेजा है। बालकरण वर्मा, अंजलि ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, उमेश, प्रमिला बंछोर, गांव पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से ये श्रोता साथी है। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे भी जुड़े हैं कार्यक्रम में। और आप भी जुड़े कार्यक्रम में अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सभी, अनस और रियान खान संदेश के साथ में है। आप ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेहरा जहां, आजाद नगर अक्सर हरिद्वार के श्रोता साथी, नेहरू चौक पैटर्न से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता, आरती प्रसाद, सोना बेबी, सिया सिया यादव, जाला शहर से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता यादव भी जुड़े कार्यक्रम में। आप जुड़े तेलंगाना जिले निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम और दानिश आसिफ शेख जुड़े कार्यक्रम में। संदेश के साथ में है आप विजय महोबिया, कविता विशाल, सोनू मोनू, सपना शिवी सलोनी और पेंटर बाबू, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश के श्रोता साथी हैं। आप जुड़े कार्यक्रम में नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज पी आर जैन का संदेश मिला। उत्तम कुमार, भगत, श्वेता, किसुतासु, अणव, सत्यमानंद, पाकुड़ झारखंड के श्रोता साथी, ये सभी श्रोता साथियों की पसंद पर आइए सुने फिल्म कुर्बानी से ये नगमा कंचन और मनहर उदास के स्वर में, गीत हिंदी वर्ग का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

अभी आप सुन रहे थे कंचन और मनोज दास को फिल्म कुर्बानी में। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी।

लेते हैं श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेश जो जुड़े हैं कार्यक्रम में। आपने संदेश भेजा कार्यक्रम में चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, और इन्होंने एक संदेश भी भेजा कि पर्यावरण का ध्यान और महफूज रखना हमारा नैतिक फर्ज है, क्योंकि हमारी सांसों के लिए ये अहम है। अगर संभव हो जाए तो घर के पास पेड़ जरूर लगाएं, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे पर्यावरण की रक्षा करके सार्थक बनाएं, दिल को सुकून मिलेगा। जी हाँ, बहुत प्यारा संदेश श्रोता साथियों। कर लेते हैं अगला संदेश, बोरखेड़ा पीतरामल से है, विनोद मूर्त, नेहा जैन, मयंक मूर्त और चेतन नाहटा। अगला संदेश श्रोता साथियों का है कड़कताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से, कानगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रवालिका, विष्णुवर्धन, विघ्नेश का संदेश मिला। श्रोता साथी नियमित है। वरुण बकाल बुलढाणा से है, नारायण हागे, कमल, दिव्या और जया हागे का ये संदेश मिला। आप भी जुड़े, कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़ और बेगम अफजल, रामगढ़ कैंट झारखंड के श्रोता साथी हैं। निप्पी साहनी और सुनीता साहनी भी जुड़े कार्यक्रम में। आप जुड़े कार्यक्रम में कोहिनूर रेडियो श्रोता संघ के श्रोता साथी हैं, गुगावा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से उस्मान खत्री, रिजवान और अब्दुल गफ्फार कार्यक्रम में। आप जुड़े कासम कॉलोनी सनावत से, यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरिश और नूर मीना, इरफान मीना कासिफ संदेश के साथ में कार्यक्रम में मैसेज किया। तेलीपारा बिलासपुर से गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष विवेक और बेबी आयुषी का मैसेज मिला। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा का ये संदेश मिला। और कार्यक्रम में जुड़े आप भी, पटियाली रोड गंडूडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाज कुरैशी और बेबी अरीबा हबीबा, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव जुड़े हैं, खड़ग सिंह छोकर जुड़े हैं कार्यक्रम में, सुधी श्रोता। और आप जुड़े कार्यक्रम में राधा सिटी मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, चौधरी महेंद्र सिंह नगला, राणा सिहोरा के श्रोता साथी, पांडर अनिल बुराड़े, उषा बुराड़े, अनुश्री और धनुश्री बुराड़े, बलहार से सूरज लोड़े और प्राची लोड़े का संदेश।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक को फिल्म राज में। गीत समीर का था, संगीत नदीम श्रवण का। इसी के साथ आज का कार्यक्रम शाम सुहानी यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए। विशेष श्रृंखला कार्यक्रम संस्कार, जी हाँ, सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वर में देशगान। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में सोमवार 8 जून को अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता एवं उपलब्धता। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुशील कुमार, प्रभारी आपातकालीन सेवाएं जिला अस्पताल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फ़ोन करके या मोबाइल नंबर 94 122 25 575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता एवं उपलब्धता से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता एवं उपलब्धता। यदि आप जिला स्तरीय आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर सुशील कुमार, प्रभारी आपातकालीन सेवाएं जिला अस्पताल मथुरा से। ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा 8 जून 2026 और समय अपराह्न 1:15 से। सूचना समाप्त हुई। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज 8:09, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था। आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति

0: नीत को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहरा

0: कार्रवाई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
1: The negotiating team which came from
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था। आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: Surat sirf swachhta aur circular economy tak hi simit nahi hai, balki green growth ke dusre madhyamon ka bhi abhutpurva gati se vistar ho raha hai. Surat aisi vyavastha banane mein juta hai jahan sadkon par chalne wali sari basein electric hongi. Saath hi yahan Surat metro ka bhi vistar ho raha hai. ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Later in the evening, Mr. Modi launched various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. These projects include major healthcare and aviation infrastructure.
2: आज भी यहाँ कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। विकास के ये काम दमन और पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए यहाँ के लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। इनसे युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे।
1: Prime Minister Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis.
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7

नवरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी सुधी श्रोताओं को अनुराग पांडे का प्यार भरा नमस्कार। आप भी सुन सकते हैं अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा, करें हमें व्हाट्सएप। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94 122 25 575, और लेते हैं श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेश।

आप जुड़े कार्यक्रम में व्हाट्सएप संदेश के साथ में। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा जुड़े कार्यक्रम में और संदेश के साथ में आप भी हैं। कार्यक्रम नवरंग में कोयते बस्ती पूरा वाले से अजय सोनवणे करिश्मा, अविका सोनवणे, साइशा सोनवणे का ये संदेश मिला है। मजनू का टीला से कमल बलूजा, मधु बलूजा सागर, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक जुड़े हैं कार्यक्रम में। नवरंग कार्यक्रम में कुमारगली श्रीरामपुर से जुड़े हैं अशोक दले, सविता अनिकेत, रोहिणी ऋषिकेश, ऋषिकेश दले, जीविका सारिका पुनवले पुणे से अजय सोनवणे, करिश्मा अविका विशाखा सोनवणे। अगला संदेश होता साथियों का है मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप येमेकर का संदेश है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर आई, मेहरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से नवरंग कार्यक्रम में जुड़े हैं। मोताला महाराष्ट्र से जुड़े हैं नवरंग कार्यक्रम में विजय सुरलकर, रतन माला आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर, अकरम हुसैन, प्रिंस डाक बाबू बेगम, इशरत अकरम, वसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी और पूनम कुमारी शर्मा, ये सभी नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल मैसौल सीतामढ़ी के श्रोता साथी हैं। ब्रजमाधुरी गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र डूडी जुड़े हैं कार्यक्रम में। शाम सुहानी कार्यक्रम में और मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, ओम प्रकाश सुरलकर का संदेश मिला। नवरंग कार्यक्रम में जुड़े हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर शाह, कुशल, नीति सुरभि और अश्विन शाह, मंगला बेन, राजेंद्र शाह, पद्मा टॉकीज नेपा नगर से, गोगामा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से है उस्मान खत्री, रिजवान और अब्दुल गफ्फार खत्री। नवरंग कार्यक्रम में जुड़े हैं सिद्धार्थ नगर दरियापुर भावली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और सुशील, शेरी बडने रघुला से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर जुड़े हैं कार्यक्रम में। कभी रेडियो श्रोता संघ डूडी लोहारा बलोच छत्तीसगढ़ के श्रोता साथी देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा, मास्टर अल कबीर का ही संदेश। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना और हर्षित और खुशी गोस्वामी रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से।

करके मैं गांव गोपी नगरिया से मिट्ठन लाल सारस्वत नेहा नीरज जैन निकिता और इनके मम्मी पापा, गांव नगला पोला से विजय सिंह भानु प्रताप सिंह अनुराधा रामानुज राधिका पवन करण भोला नमन और इनके परिवारजन, गांव नोगरा से हैं कोमल मास्टर जशोदा सूरज रोहित चंचल संजना शिवानी और इनके परिवारजन, को मोदवन से रमेश सुनील रचना गब्बर, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत सोनिया शिवम चुन्ना और इनके परिवारजन।

अगले श्रोता है आनंद लोक कॉलोनी गोवर्धन रोड मथुरा से अशोक जसवत और सुधीर चौधरी और सूरज पाल चौधरी का ये संदेश मिला। आइए सुनते हैं श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म नगीना से ये गीत आवाज़। इस गीत में मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की, गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल मोहम्मद अजीज को फिल्म नगीना में। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नवरंग। लेते हैं श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेश। आप जुड़े कार्यक्रम में संदेश के साथ में संतोष नामदेव, अभय, अजीत ज्योति, अनीता, अभय, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लवकुश व नामदेव परवार, मेन मार्केट पोस्ट सोरई जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश के श्रोता साथी और महोली रोड मथुरा से हैं धीरेन्द्र सारस्वत एडवोकेट जनकपुरी महोली रोड मथुरा से, राजू बाबा, इंद्र मोहन वर्मा, चामुंडा माता का मंदिर गोपाल नगर मथुरा जंक्शन से ये श्रोता साथी, राजकिशोर दीक्षित CDS नगर महोली रोड मथुरा से, विष्णु कुमार अग्रवाल नायक तहसीलदार मानक नगर महोली रोड मथुरा से, ये सभी सुधी श्रोता है। और अरविंद कुमार गुड़िया, भव्या निवेश और नियति कुमारी ने संदेश भेजा है हमको बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। अगला संदेश रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। आप भी जुड़े कार्यक्रम में बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव। कार्यक्रम मोहल्ला हलवाइया शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, रोजी, बिट्टू, सजदा और हिना कौसर। नवरंग कार्यक्रम के सुधी श्रोता शिवाजी नगर बड़ाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिव सागर, इंदिरा ताई और छकुली ताई खोबरखेड़े का ये संदेश मिला। नवरंग के सुधी श्रोता जिला कासगंज यूपी से है युगेंद्र नायक, गीता, निहारिका नायक, सुशांत नायक और दोस्त सुरेश चौरसिया का ये संदेश मिला। नवरंग कार्यक्रम को पसंद करने वाले श्रोता हैं पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, पमता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा।

अगला संदेश लेते हैं श्रोता साथियों का, आप जुड़े कार्यक्रम में। मासूम नगर महुली मथुरा से विवेक कुमार गोला, कविता गोला, कंचन गोला, गोपाल और चांदनी गोला का ये संदेश मिला। प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पटन से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल, बेबी सिया, ये सभी परिवारी जन, राम शरण, विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजनू, रंजना, बदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।

नितेश कुमार देवांगन दुर्गा पराग टेलर तनुजा देवांगन ईशान देवांगन है पलारी छत्तीसगढ़ से। सुनते हैं श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म शराबी से गीत, आवाज इस गीत में आशा भोसले और किशोर कुमार की।

अनजान के गीत को संगीत दिया था पप्पी लहरी ने और आवाज़ दे रहे थे इस गीत को आशा भोसले और किशोर कुमार फिल्म शराबी के लिए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नवरंग आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। लेते हैं श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेश जो जुड़े हैं कार्यक्रम में हमसे नवरंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं श्रोता साथियों के इन व्हाट्सएप संदेशों को। जी हाँ, आपने खुर्दी रोड मानपुर से विजय वेद रानी महिमा नीतू वेद वैदिक वेद का ये संदेश मिला। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा गांव लोहारी के ये श्रोता साथी राजेश कुमार धनजे राहुल और विशाल शीला और गायत्री धनजे। अगले संदेश के साथ में है श्रोता साथी डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया गीता रानी जजोरिया गगनदीप आरजू और गुड्डू पटेल नगर मलोट पंजाब के श्रोता साथी हैं और आप जुड़े छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल राजदीप राजेश राशि और शीतल राजेश का ये संदेश मिला। कल्याण मुंबई से किशोर हेवराले सुजाता और प्रतीक हेवराले का संदेश और आप जुड़े मैसेज के साथ मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला आरती गौरी और ओम कुमार कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़ दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़ का संदेश मिला। मैसेज के साथ में सुषमा सरोशे परिधि मायरा मास्टर विठल सुरेशे काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से संदेश भेजते हैं। सौरभ और प्रकाश निषाद मल्लू जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ के श्रोता साथी दतरंगी से भागवत वर्मा शांति लीलावती विनीत और रुद्र वर्मा का मैसेज मिला। आप भी जुड़े गांव राजपुर तहसील मोताला से राज गवई और राजवीर गवई आप जुड़े कार्यक्रम में। छोटी बलिया मुंबई करजत से अहमद भाई फूल वाले नूर आयशा दुखना आमना आसमा और आशु कार्यक्रम में। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परमणि महाराष्ट्र से रूपेश संगई महेश प्रज्ञेश और प्रतेश संगई शिव कुमार चौहान संक्रांति रितेश राजूश्री उत्कर्ष चौहान बाबा कुटीर रायगढ़ के श्रोता साथी हैं। वरवड़ वकल बुलढाणा से नारायण हागे कमल दिव्या और जय गांव हीरा अली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा विमला इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा ने ये संदेश भेजा। गांव आंटी खेड़ा से जिला सिरसा से राधेश श्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा जुड़े। मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान अब्बान ये सभी परिवार ऊपर कोट मोहल्ला चौकंटी बुलंद शहर से मैसेज भेजते हैं। सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन प्रभुजोत और बेबी जानवी का ये संदेश मिला है। गांव पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव प्रशांत संचित प्रथमेश देशमुख फुलाणी से और ये अगला संदेश भेजा हमको उत्तम सिंह जंगेल मोरस जंगेल ने आयुष जंगेल नंदिनी ने आर्य नगर कोका भिलाई से ये संदेश मिला हमको श्रोता साथियों का। और अगले संदेश के साथ में है श्रोता साथी खड़क सिंह छोकर एडवोकेट प्रकाश नगर मथुरा से अपनी फरमाइश भेजते हैं हम तक। और अगला संदेश है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन संदीप गुगलानी जगमोहन प्रजापति जग्गी दुआ का करणवीर हाउस मुचो के चिंचिया से बठिंडा पंजाब से है प्रेम सिंह जोड़ा मंजीत कौर जोड़ा करणवीर दीपेंद्र कुलदीप मोहम्मद बकार फरीदी मोहम्मद इकबाल फरीदी सितारा नसरीन रोजी बिट्टू मोहल्ला अलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर के श्रोता साथी हैं। मैसेज के साथ में नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर निर्मला विशाल सोपान और नारायण आदर्श नगर मरुट पंजाब से राज शर्मा मीना योगेश मैंडी साइना और निवान शर्मा का नवरंग कार्यक्रम में ये संदेश। गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी से मनोज नामदेव मयंक खुशबू और ममता रेखा का संदेश मिला नामदेव परिवार का। नाज मंजिल मैसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन बेगम इशरत अकरम वसीम रूबीना आरिज नदीम शबीम और ममता पूनम का संदेश मिला। नवरंग कार्यक्रम में जुड़े आप भी बोरखेड़ा पीतामल जिला उज्जैन से विनोद मूरत नेता जैन दीपक और चेतन नाटा दिलीप सिंह पवार
सोनू, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, लक्ष्य मोहिनी और ऋतिक बलवीर गांव दूलापुर उत्तर प्रदेश से संदेश भेजते हैं। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावा, संगीता तुषार, रिंकी ने संदेश भेजा। और आई सुने श्रोता साथियों की पसंद पर आदमी खिलौना है इस फिल्म से ये गीत, आवाज अलका याग्निक और साथियों की, गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का।

और लेते हैं श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेश कार्यक्रम में। जी हाँ, आप जुड़े अपने व्हाट्सएप संदेश के साथ में कार्यक्रम में। एम फारूक शेख, क्षमा परवीन, साइमा, सरफराज, गुल फराज और बेबी मुस्कान गणेशपुर गंज जुड़वारा ईटा से। नवरंग कार्यक्रम के श्रोता जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित और बेबी गर्वी। आप भी जुड़े अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, उमर डावर, राजेंद्र कटारे, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, हाजी इसाक लोलमामनी, उमर कासमी और अयूब शेरी, जामा मस्जिद रोड गोगामा से ये है श्रोता साथी, और पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी से है सनावा से मोहम्मद सादिक अहमद शाकिर और अलकमा खत्री। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिप्पा, कपिल ईशान और पूजा परिहार जुड़े कार्यक्रम नवरंग में। राम सिंह जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, पवन और राजेश बब्बर, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू और मधु नायक पहाड़गंज मुल्तानी ढाड़ा के श्रोता साथी हैं। आप जुड़े कार्यक्रम में हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रुद्रा और रामेकर परिवार है राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से। एस एम जावेद, शगुफ्ता अंजुम

0: अजमल हुदा गुमला झारखंड के श्रोता साथी, हर्षा रामेकर, दिलीप अक्षर, उत्तर रामेकर परिवार, राठ गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से, जॉन डिकेस्टो, रोजी पल, विलिस डिकेस्टो, जनकपुरी सहारनपुर से, सुनील पाठक, कमल, दीपिका गव्या, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, अनारकली बाजार, जगराव से। संदेश के साथ में जुड़े हैं श्रोता साथी मुदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी। अगले श्रोता साथी कार्यक्रम में संदेश के साथ में मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा मैसेज के साथ में है श्रोता साथी। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहित कल्पित और बेबी गर्वी, जिन भी श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेश शामिल हैं दोबारा संदेश न भेजें। और प्रकाश जैन लातूर से, संगीता सूर्य जो पीआर जैन का संदेश है, शिव मंदिर चौक दमदम अर्जुनपुर से, बसंतलाल मुन्नी देवी और जयप्रकाश, रिमी तनुश्री गुप्ता, अभय कुमार सनातनी, बी के सिन्हा जुड़े हैं कार्यक्रम में। आप जुड़े कार्यक्रम में सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू, तरुण यादव, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। आइए सुनते हैं श्रोता साथियों की पसंद पर ये गीत फिल्म जॉनी मेरा नाम से, आवाजें किशोर कुमार और उषा खन्ना की, गीत इंदीवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का इस गीत में।
1: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
2: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
1: नहीं।
2: थोड़ा भी नहीं?
1: नहीं।
2: झूठा भी नहीं?
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं।

जुड़े हैं हमसे उनके शामिल करते हैं व्हाट्सएप संदेश। आप जुड़े कार्यक्रम में वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी और आरती अरोड़ा, दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र और नोखे लाल, नवरंग कार्यक्रम में जुड़े महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जुगेश, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, बठिंडा रोड मंडी डबाली से राजेंद्र नारायण, अंजू, मोहित, लकी, तानिया भी जुड़े कार्यक्रम में, रवि कुमार, राहुल, रंजीत, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरु कीरत, गुरु शब्द सिंह राहुल, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा के श्रोता साथी, और अकोट से विनय बांडे, मंगला बेंडे, विजय मंगला बेंडे और शुभम बेंडे, पवन जरिए, संजीव डायरे, बे राव, ये सभी श्रोता साथी जुड़े कार्यक्रम में, नूरनगर गंजुंडवावारा से उस्मा शेख, शिफा और रिफा शेख, लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से हैं रामजी साहू, जीवन लाल, रजक, निम्मी, शिवम और सतीश, मुकेश कुमार साहू का संदेश मिला नवरंग कार्यक्रम में। आप जुड़े कार्यक्रम में मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान और इसरार नरगिस खातून, संजय डिंगे, नमन और अपार डिंगे जुड़े आज के नवरंग कार्यक्रम में। इसी के साथ आज के नवरंग कार्यक्रम को यहीं करते हैं संपन्न। इजाजत दीजिए अपने रेडियो दोस्त अनुराग पांडे को। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए डॉक्टर चंद्रकिशोर पाठक का लिखा रूपक

आज हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन पर तैयार ब्रज कलश रूपक श्रृंखला के अंतर्गत रूपक ब्रज संस्कृति और पर्यावरण। आलेख है डॉक्टर चंद्रकिशोर पाठक का, प्रस्तुत करता है श्री कृष्ण शरद। ये रूपक तैयार किया गया है डॉक्टर उपेंद्र रैना के निर्देशन में। तो आइए सुने रूपक ब्रज संस्कृति और पर्यावरण।

0: अजी सुनते हैं? अरे उठिए भी। अरे उठो ना, गिरिराज की तलहटी में आकर अभी तक सो रहे हैं।
1: क्या हुआ, सोने में नींद दे रही हो? कितनी अच्छी नींद आ रही है, थकान कितनी हो रही है भाभी?
0: देखिए तो सही, ब्रज में प्रातःकालीन वातावरण कितना सुहावना लग रहा है। चारों ओर से अच्छी अच्छी ध्वनियां आ रही हैं। मेरा मन तो मस्त होकर गोपाल के भजन कीर्तन गाने को हो रहा है, और आप है कि सोकर इस आनंद को यूं ही गवा रहे हैं।
1: वाह क्या बात है, मैं यहाँ आते ही बड़ी भावुक हो गई हो तुम तो, समझ में नहीं आ रही क्या कर रही हो।
0: भावुक क्यों ना हो, युग युगों की ब्रज दर्शन की साथ जो पूरी हुई है, पता है ये सुख देवों को भी दुर्लभ है।
1: अच्छा बाबा, उठता हूँ उठता हूँ, ठहरो तो सही ना। लेकिन पहले सुबह की चाय तो पी लें, फिर निकलते हैं बाहर।
2: यही आनंद है प्रातःकालीन ब्रज सुषमा का। ब्रज रज के स्पर्श से ही भक्तिमय प्रेम भाव उदित होने लगता है।
3: ब्रज रज के माथे लगते ही मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। ऐसे ही वातावरण का चमत्कारिक प्रभाव युग युगों से ब्रज की ओर वैष्णव जनों को आकर्षित करता आ रहा है। अपार हरितिमा की चादर ओढ़े प्राकृतिक सौष्ठव की सुषमा विकीर्ण करने वाला ब्रज लौकिक दृष्टि से भारत के मध्य में अवस्थित है। हृदय की भांति संपूर्ण भारत में इसकी प्राणदायिनी शक्ति संचरित होती है।
2: मूलतः गौ संवर्धन वन संरक्षण वाली समता मूलक ब्रज संस्कृति इतनी व्यापक, उदार और पुरातन है जितनी अन्य कोई हो ही नहीं सकती। सभी को आत्मसात कर इसका दिया हुआ नवदीप मानवता के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ।
3: देव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस आज सभी तो जुड़े रहे इस ब्रज संस्कृति से।
2: ब्रज संस्कृति लोक जीवन पर आधारित होने के कारण जनमानस में परिव्याप्त हो आदत, स्वभाव, धर्म, कर्म और आस्थाओं के साथ मुखरित हो उठी। ब्रज की ऐतिहासिक प्रक्रिया अत्यंत विलक्षण है। यहाँ के वैभवशाली बाहरी सौष्ठव से आकर्षित होकर उसे लूटने, खसोटने अथवा ईशावश अनेक बार बाहरी आक्रमण हुए।
3: धन वैभव लूटने के लिए विदेशी आक्रांताओं ने घर द्वार ही नहीं, पूजे जाने वाली मूर्तियां भी तोड़ी, मंदिर भी तोड़े और तोड़ने का प्रयास किया उन आस्थाओं को जिन पर आधारित था मानवीय धर्म। बाह्य शिल्प वैभव कला संस्कृति का ऊपरी आवरण भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन वो सब एक नवीन परिदृश्य में लहलहाने लगा। प्रेम

भाव की रसधारा ने पुनः प्राण फूंक दिए ब्रज संस्कृति में। शुष्क नीरस भग्न हृदय राधा कृष्ण की लीला विहार में रसिक्त होने लगे, क्लांत शांत में बदली और फिर संस्कृति का चतुर्दीप मंगल विकास होने लगा।

0: छलनी तो नहीं गई हो? चलो धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, हाँ पकड़ के चलो उसे। और देखो ये है बरसाने का राधा रानी का मंदिर है, कितनी ऊंची चढ़ाई पर चढ़कर है।
1: अरे नहीं, यहाँ की चढ़ाई चढ़कर तो बस आनंद ही आ गया। ये मंदिर का पीछे का भाग है ना, चारों ओर कितनी हरियाली, कितना मनोहर वातावरण है।
0: देखो देखो वो उधर देखो, वो देखो कितना बढ़िया मोर नाच रहा है। देखो तो,
1: अरे अरे वाह, कैसा थिरक थिरक कर नाच रहा है। मैंने तो अपने जीवन में उन्मुक्त भाव से नाचता हुआ मोर पहली बार ही देखा है। मैं तो यहाँ का दृश्य देखकर धन्य हो गई हूँ, कितना आनंद आ रहा है।
0: यही वातावरण तो ब्रज संस्कृति के कण कण में रमा हुआ है।
1: हाँ। ये क्या, ये धमाका कैसा है, कहीं यहाँ भी आतंकी हमला तो नहीं? अरे
0: नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो पास के पहाड़ों पर का धमाका है।
1: पहाड़ों का धमाका, मैं समझी नहीं। देखो देखो ना, इससे डरकर यहाँ के सभी पक्षी उड़ गए।
0: पर्वतों की कटाई करने के लिए विस्फोट करके पहाड़ तोड़े जाते हैं और फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके गिट्टी आदि बनाई जाती है। यहाँ के पहाड़ काट काट कर पत्थर, गिट्टी और क्रेशर बाहर भेजी जाती है। ये सब उसी की आवाज आ रही है।
1: अच्छा, इससे पहाड़ कट कट कर उजड़ जाएंगे, यहाँ की हरियाली ही उजड़ जाएगी। पेड़ पौधे उजड़ने से तो धीरे धीरे ब्रज की सारी सुंदरता ही समाप्त हो जाएगी ना।
0: वन संपदा नष्ट होने पर ब्रज की सुषमा, पक्षियों का यह उन्मुक्त कलरव और विचरण तथा गौचारण का क्षेत्र सभी तो समाप्त होने लगेगा।
1: उधर देखिए, लकड़ी का गट्ठर सिर पर लाद कर ये महिला इधर ही आ रही है।
0: हाँ हाँ हाँ, आ रही है। पूछो पूछो पूछो, क्या पूछता है?
1: इसी से पूछते हैं कि लकड़ियाँ पेड़ों से काट कर क्यों ला रही है।
0: हाँ पूछो पूछो।
1: बहन, अरे ओ बहन, सुनती हो? हाँ हाँ, तुमसे ही पूछ रही हूँ, जरा सुनो तो।
2: चौं का है, लकड़ियों को बोझ ले जाए गई और टोक दियो। हाँ तो कहिए।
1: बहन तुम लकड़ियों को कहाँ से ला रही हो?
2: चौं कोए तू बूझन हारी, हमते पूछवे वाली कांते ला रही हूँ। अरे लकड़िया हम कहूँ ते लाएं, कैसे उलाएं, ऐसी टोका टोकी करवे वाली तू है को, ये बता दे।
1: अरे बहन तुम तो वैसे ही नाराज हो रही हो, हम लोग तो परदेसी हैं और यहाँ दर्शनों को आए हैं। तुमको इतना बोझ उठाकर लाते देखा तो वैसे ही पूछ लिया, हम कोई सरकारी आदमी थोड़े ही हैं।
0: हाँ बहन जी, हम तो बाहर के यात्री हैं, आपको देखकर कुछ ब्रज के विषय में जानना चाह रहे थे। आप थोड़ा सुस्ता भी लेंगी और हमें बता भी देंगी कुछ है? आप तो यहाँ की ही है ना?
2: हाँ, क्यों ना?
0: तो यहाँ के विषय में आपसे अधिक जानकार कोई हो ही नहीं सकता, ये बात भी सही है ना?
2: साची बात है,
0: इसी कारण पूछ लिया आपको।
2: अच्छा तो जी बात है।
0: हाँ।
2: अब वो
0: अब आइए आपके सामने।
2: तो पहले छोड़ना है, कहीं पहले जे बताए जे सरकारी कर्मचारी है ना, बेकार।

0: आज की टोका टाकी मुख तेरी करें, जाते मुझे झल्लाज आए गई।
1: अच्छा,
0: बुरा मत मानिया, क्षमा करिए। देखो
1: नहीं, बुरी मान नहीं कोई बात,
0: हम तो परदेशी यात्रियों से अच्छी अच्छी बात करें, जो तुम्हारे मेहमान हो है लेकिन अब पूछ लियो, कहा बतराम न हो कहा पूछ हुआ है, पर एक बात ध्यान रखियो, उलायत उलायत कहियो, नहीं तो अभी रह जाएगी वो यहाँ।
2: अरे बहन, तुम्हारी ब्रजभाषा हमें बहुत मीठी लग रही है, ये तो बताओ ये लकड़ी तुम कहाँ से ला रही हो?
0: यहाँ तो जी सब ऐसी ब्रजभाषा में बोले बतरा रहे बहन, ब्रजभाषा तो सब मिठाई अंते मीठी हो, धन्य ब्रजभाषा तोसी दूसरी न भाषा, यानी वाणी के विधाता को बोलवो सिखाया हो।
1: वाह
2: वाह वाह वाह,
1: समझ लो शानी, वाणी के विधाता का मतलब समझी ना?
2: हाँ हाँ,
1: भगवान को बोलना
0: भाषा में सीखो, ब्रजभाषा में तो बोले। और ये बात रही लकड़ियन की, तो लकड़िया तो जंगल से लाए रही हूँ मैं, इनते चौका चूरा जरेगो, रोटी पानी को जुगाड़ बनेगो, तब कहूँ जाके पेट पूजा होगी बहना। तैयारी का है, तैयारी में मत निराली है, सहराती है ना बड़े बड़े सहरन की, गैस को बटन खोलो, सीख दिखाई और बनाए में लगी रोटी, जहाँ तो रात दिन ऐसे ही चौका चूल्हा में मरवो खपवो पड़े बहन।
2: हाँ, यहाँ गैस की सुविधा कहाँ होगी?
0: हमारी काजे तो ये कंडा ऊपरा और लकड़िया ही मुक्तेरी हैं, इनते तो गैस महंगी पड़ेगी ना, कहाँ थी इतने महंगी गैस को जरा मेंगे हम ब्रजवासी।
2: अच्छा, लकड़ी तो तुम पेड़ों से काट कर लाती होंगी?
0: नहीं नहीं बहना, नहीं जी, कहा बात कह दी नी, ब्रज के पौधान पे तो दई देवतान को बास होए, हम ब्रजवासी इन्हन को ही काटेंगे, कैसे पाप ना लगे वो, भगवान भजो भगवान भजो।
1: वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, अरे आप तो धन्य हैं बहन, आप तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद।
0: अरे भैया, यहाँ आए के बस बारे सभी संत महात्मा जी के हैं, जो हमारे यहाँ के लोग लुगाई हरे पेड़न को हाथ ना लगाने भैया।
1: अच्छा?
0: पेड़न को काट वो तो अपनी औलाद पे कुलाड़ी चलाए वो बता में, ये निगोड़ी बाहरते हमें ना, चोरी छिपे पेड़न को काट के बाहर लाद के ले जाएं, हमारे ताई तो सूखी पड़ी लकड़िया ही बीन बेको मुक्ते रही हैं।
1: सही कह रही हैं।
0: हाँ।
1: बाहर से आके यहाँ के हरे भरे पेड़ पौधे काटने वालों को आप लोग रोकते क्यों नहीं है? इसमें हानि तो आपकी भी है ना।
0: अरे रोके तो मुक्तेरे रोके, सरकारी कर्मचारी जो है कहे ना वो भाग दौड़ी करें, पर एक बात बताए दू, साची साची बताए दू, सब मिली भगत है
1: वो तो है,
0: टोका टाकी पे तो कई बेर हम लोगन के सिर फूटे हैं, मूड फुलवाए हैं हमने।
1: अच्छा?
0: इतेक रोका टोकी ना होए तो इतेक हरियाली ना दिखे यहाँ पे।
2: धन्य आप लोग, कितना संघर्ष कर रहे हैं ब्रज को बचाने के लिए।
0: सो तो है, पर बहना मैं तो तुमते बतराए भी मैं जीव बिसर गई कि घर लाए पहुंचना है, चौपा चूल्हा को जुगाड़ बैठानो है। अच्छा तो मैं अब चल रही राधे राधे, जय श्री कृष्ण।

0: जमुना मैया।
1: जय जमुना मैया की देवी जी, शालिनी जी, लीजिए ये आ गया आपका विश्राम घाट। और देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया आरती होती है शाम के वक्त। दिन में दिन भर स्नान, पूजा अर्चना, समझे, चुनरी मनोरथ, न मालूम जिन्हें क्या क्या, बहुत सारे यहाँ पर। आप बड़ी भाग्यशाली है, बड़ी भाग्यशाली। देखिए आप आज आरती भी देखी आप।
0: हाँ जी, भाग्यशाली तो हूँ। आपने ब्रज में लाकर जो आनंद प्रदान किया है वो सबको कहाँ मिलता है। क्यों जी, ये क्या वही स्थान है जहाँ दीपावली के बाद यम द्वितीया का मेला लगता है?
1: हो, यहाँ भैया दोष पर भाई बहन द्वारा पावन स्नान का पर्व मनाया जाता है। हम भी कभी आए थे अपनी बहन को लेकर के यहाँ पर।
0: अच्छा।
1: और इस स्नान के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं।
0: इस स्नान की क्या मान्यता है?
1: एक पौराणिक गाथा है, उसके अनुसार यमुना और यम सूर्य की संतान है।
0: अच्छा,
1: ठीक है ना, दोनों भाई बहन। अब इन दोनों भाई बहनों का विषय हो गया था किसी शाप के कारण।
0: अच्छा।
1: एक दीर्घ अंतराल के उपरांत यम को यही जल रूप में यमुना जी से भेंट हुई।
0: अच्छा।
1: यहीं पर इस भेंट हुई होगी यमुना जी की। दोनों भाई बहन अपने वास्तविक रूप में मिल बहुत प्रसन्न हुए। यम ने उसी समय वरदान दिया कि कार्तिक मास की दौज के दिन जो भाई बहन यमुना में स्नान करेंगे उनको मेरे नरक का कष्ट नहीं मिलेगा। देखो देखो वो चुंडी मनोरथ हो रहा है। देखो वहाँ वो साड़ियाँ एक दूसरे बनी हुई, यमुना के इस पार से उस पार तक और नाव पे लोग
0: आते हैं। देखिए ना,
1: हाँ, वो चुंडी
0: पंडा जी पूजन भी करा रहे हैं।
1: करा रहे
0: पुष्प चढ़वा रहे हैं और एक दीपक भी जलाया हुआ है।
1: अरे छोड़ो, तुम उधर क्या देख रही हो, अब तुम इधर देखो, तुम्हारे पास भी पंडा जी आ रहे हैं। वो तुमसे भी पूजा कराने की पूछेंगे और दान दक्षिणा भी मांगेंगे।
2: दर्शन कर लिए कल है ना? आओ जजमान, जमुना भैया की पूजा करो। जा घाट पे जमुना की पूजा करने को बड़ो महत्तम है, भारी पुण्य की प्राप्ति हो जजमान। जय हो, जय हो, पुण्य कार्य में विलम्ब न करो, हस्त प्रचालन कर, आचमन करो, पूजन सामग्री जे बिक रही है लियो, भैया लाला सामग्री दियो ने
3: लायो, लायो दे भैया, ये लियो, ये लियो।
4: पंडा जी, यहाँ घाट पर यमुना जल थमा हुआ सा है और किनारे पर गंदगी भी बहुत है, आचमन कैसे किया जाएगा?
2: अरे वहना जमुना जल में दोष ना देखे, जो तो परम पवित्र है।
4: पर जीती मक्खी थोड़े ही निकली जाती है, इसका तो मैं आचमन नहीं ले सकती।
1: अरे रुको शालिनी, रुको पंडा जी, इस जल में बहाव नहीं है, क्या इसी कारण ये कूड़ा करकट यहाँ एकत्रित हो गया है?
2: जजमान, अनेक बांध बन गए थे, जमुना में जल बहुत कम है, वह घाटन की सब सोवा ही निकल गई है। सरकार ने यहाँ पे थोड़े अगार गोकुल घाट के जोरे गोकुल बैराज नाम को बांध बनवाए के पानी रोक दियो है, या लिए ही ये जल थमो सो दिख रहा है।
1: लेकिन पंडा जी, ये जो बांध बनाया है ये तो सबकी सुविधा के लिए बनाया गया है।
2: हम्बे जजमान, ये तो है ही, खैर सुविधा तो मिले ही सब बांध से।
4: पंडा जी, शहर का गंदा पानी भी तो इसमें मिलकर इसको और प्रदूषित करता होगा ना?
2: जाते का है, अरे लोग रहेंगे तो पानी प्रयोग होगा ही, उद्योग धंधे को जल ही मिलेगा, ये जल कहाँ निकलेगा?
1: क्यों, शासन ने इस प्रदूषण के लिए कोई प्रयास नहीं किया है?
2: अरे कियो है बाबू जी, मुक्त की है, गंदे नालन को रोक दिए है, गंदे पानी को दूसरी ओर मोड़ के का और काम में ले रहे हैं।
4: ना बाबा ना, मैं तो इस प्रदूषित जल का आचमन नहीं कर पाऊंगी, चाहे मुझे पाप ही लगे, मैं तो दूर से ही प्रणाम करती हूँ।
2: ये तो तर्क कुतर्क कर रही है, मेरे धंधे को समय काय को घोटो कर रहे हो महाराज। अरे मैं कहूँ और जजमान को देखूं।
4: जय जमुना मैया की। पंडा जी, सुना है कभी भगवान कृष्ण ने यमुना में विष का प्रदूषण फैलाने वाले

0: कालिया नाग को नाथ कर यहां से भगाया और यमुना को प्रदूषण मुक्त किया था। अब भी वो ही रक्षा करेंगे इस प्रदूषण से।
1: तुम ठीक कह रही हो शालिनी, यमुना हमारी आस्था की प्रतीक है। अपनी धारणाओं और मान्यताओं के कारण करोड़ों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ के प्रदूषित जल के कारण मर्माहत हो जाते हैं।
0: क्या इसको शुद्ध और पवित्र रखने के लिए कोई सार्थक कार्य योजना नहीं हो सकती?
1: हाँ, योजनाएं तो बहुत बनती हैं, उन पर कार्य भी होता है, लेकिन सर्वाधिक अपेक्षित है मानसिकता और जन सहयोग। ठीक है ना, इसके अभाव में योजना बनेंगी बिगड़ेंगी, पर लोग उसमें गंदगी डाल डालकर प्रदूषित करते ही जाएंगे।
0: ये आप ठीक कह रहे हैं, ये तो यमुना नदी के किनारे बसे सभी लोगों को ही सोचना होगा।
1: और यही नहीं, औद्योगिक विकास के नाम पर बचा हुआ प्रदूषित जल और कचरा भी इसमें मिलकर इसको जहरीला बना रहे हैं। कचरा और गंदगी घाटों पर एकत्रित होकर किनारों की शोभा बिगाड़ रहे हैं।
0: तब तो इस विषैले जल और गंदगी से भारी अनर्थ हो जाएगा। इसके लिए तो सभी को सचेत रहकर सार्थक प्रयास करने ही होंगे।
1: हाँ, और नहीं तो क्या, इस प्रदूषित जल का दुष्प्रभाव सभी पर तो पड़ेगा।
0: ठीक कहते हैं आप। बाजार में तो भारी भीड़ भाड़ है। भैया जरा ये लहंगा ओढ़ने दिखाइए।
2: बिल्कुल दिखाएंगे बहन जी, पहले आप बैठिए तो सही, फिर आप आराम से बताना कि कितने बड़े बच्चे के लिए लहंगा ओढ़नी चाहिए। हमारे यहाँ हर नाप की बहुत सुंदर लहंगा ओढ़नी, टोपी, बगल बंदी सब मिलती है, देखकर खुश हो जाएंगे आप।
0: भैया हमारी 7-8 साल की बिटिया है, उसके लिए लहंगा ओढ़नी दिखाइए, बहुत सुंदर होनी चाहिए, हम बहुत दूर लेकर जाएंगे।
2: बहन जी आप जरा भी चिंता ना कीजिए, हम ऐसे ही लहंगा ओढ़नी आपको दिखाएंगे। देखो ये देखो जरा, इस पर हाथ की कितनी सुंदर कढ़ाई है, जरी का काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है।
1: अच्छी है, अच्छी है। क्यों भैया, क्या ब्रिज में अधिकतर ऐसी पोशाक पहनी जाती है मेले त्योहारों पर?
2: जी साहब।
1: आपका व्यवसाय तो फिर खूब चलता होगा।
2: क्या कहें भाई साहब, जब से आधुनिकता की हवा चली है तब से लहंगा ओढ़नी, टोपी, बगल बंदी के काम पर तो मानो पत्थर ही पड़ गए हैं। आजकल लड़के लड़कियां ये सब पसंद नहीं करते, अरे उन्हें तो जीन्स चाहिए। ब्रज के ऐसे सुहाने और सुंदर कपड़े अब यदा कदा ही बिकते हैं, आप लोग ही खरीदते हैं बस।
0: अच्छा भैया, माखन मिश्री का कलेवी तो खूब करते होंगे ब्रजवासी, गाय का दूध दही तो खूब मिलता ही होगा ना यहाँ?
2: क्यों हंसी उड़ा रही है बहन, हम ब्रजवासियों की माखन मिश्री तो सपना हो गई है। अरे कलेवा होता है जलेबी कचौड़ी का, अब जरा देखिए आगे बढ़कर उधर ढकेल की ओर, चाओ मीन, पाव भाजी, अंडे बिक रहे हैं, लोग आमलेट खा रहे हैं खुले रूप में। इस माखन मिश्री वाली तीर्थ नगरी में पहले तो दूध मिलता ही कितने को है, और फिर उसकी शुद्धता का भी कोई भरोसा नहीं।
1: शालिनी।
0: हाँ जी।
1: तुमने सेट पसंद कर लिया ना?
0: हाँ जी।
1: चलो अभी हमें गाड़ी भी पकड़नी है, तैयारी भी करनी है।
3: गोपाल कृष्ण की ये ब्रज संस्कृति आधुनिकता के अंधानुकरण में एक दूसरा ही परिवर्तित प्रदूषित चित्र प्रस्तुत कर रही है। पोशाक बदली, खान पान बदला और बदल रही है, वह सभी आदत स्वभाव जो ब्रज संस्कृति को महान से महान बना गए थे।
4: सभ्यता शीघ्र नष्ट हुआ करती है, जबकि संस्कृति धीरे धीरे। सभ्यता में परिवर्तन होता है और संस्कृति में संशोधन और परिवर्धन। सभ्यता की आधुनिक चकाचौंध ने अपनी पुरानी पोशाक, खान पान, साज सज्जा, स्वभाव और आदतों पर प्रभाव डालना प्रारंभ कर दिया है।
3: ब्रज संस्कृति की मंगलकारी लोक प्राकृतिक जीवन पर उद्योगों द्वारा निकलने वाले काले धुएं और धुंध का अंबार गहराता जा रहा है, इसकी विनाशकारी आसुरी वृत्ति हरितिमा निकल रही है।
4: वनों का केवल मात्र उल्लेख ही रह गया है।

0: आधुनिक बस्तियों का विस्तार निरंतर तीव्र गति से होने लगा है, जहां 12 बल, 12 उपबल, 12 प्रतिबल, 12 अधिबल, इनके दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं।
1: साहित्य और पुरातन कलाओं की प्रतीकात्मक प्रस्तुति भी प्रदूषित रूप में मिलने लगी है। वस्तुतः बाह्य प्रदूषित वातावरण से आंतरिक प्रदूषण बढ़ता है और उसका संस्कृति पर प्रभाव परिलक्षित होने लगता है।
0: अतः ये विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि औद्योगिक विकास और पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण ने ब्रज की मौलिक संस्कृति को निश्चित रूप से प्रभावित किया है।

ब्रज कलश रूपक श्रृंखला के अंतर्गत अभी आपने रूपक सुना ब्रज संस्कृति और पर्यावरण। आलेख था डॉक्टर चंद्रकिशोर पाठक का, प्रस्तुति श्री कृष्ण शरद की। भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेश कुमार शर्मा, राजेश कुमार श्रीवास्तव, मुकेश कुमार शर्मा, देवराज कृष्ण दीक्षित, श्रीमती अंजू सूद, श्रीमती बिमल अरोड़ा। वाचन स्वर थे श्री कृष्ण शरद और डॉक्टर लिली खन्ना के। आकाशवाणी मथुरा वृंदावन पर तैयार ये रूपक डॉक्टर उपेंद्र रैना के निर्देशन में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुति सहयोग था मोहित कुमार का।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर चंद्रकिशोर पाठक का लिखा रूपक बृह संस्कृति और पर्यावरण, प्रस्तुति श्री कृष्ण शरद की थी। और लीजिए सुनिए कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के कलाकार हैं अजीत सिंह पेंटल, आप सुनिए इनसे ख्याल गायन जो राग बागेश्री में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं तोताराम शर्मा और सारंगी पर हरिबाबू कौशिक।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है।

0: और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।